0: Chillax with Radio Masti.
1: इंतहा होगी इंतजार की और आखिर में हम पहुंच गए हैं संडे तक, यानी कि आज है फुल रीसेट करने का दिन। इसमें मनी और मैं साथ निभाने वाली हूँ 9 बजे तक। तो यही आरएम जो वीडियो मस्ती पर आपके लिए खूबसूरत माहौल सेट करेंगे। अरे सेट तो हो चुका है, आप बस चाय की प्याले लेकर साथ में बैठ जाइए, आपको कराते हैं सैर 70s 80s की म्यूजिक का आरएम जो वीडियो मस्ती पर ही।
0: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: फिर वही फुर्सत के रात।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: प्यारी प्यारे गीत आपके इस मॉर्निंग को स्वीट बनाने के लिए, इट्स योर चिलैक्स शो। 5:18 हुए हैं।

0: Chillax with Radio Musty.
1: आप चाहे घर पर हो, ड्राइव कर रहे हो या फिर काम पर हो, हम आपके साथ हैं और लाते रहेंगे वो सुर जो वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी खास हो जाते हैं। एंड ऐसे ही आपको टाइमलेस सफ़र कराते रहेंगे। आप बस ट्यून इन रहिएगा आरएमचू वीडियो मस्ती के साथ। एंड नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम।
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अभी वक्त हो चला है ये जानने के लिए कि आज के सितारे आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। तो सुनिए आज का राशि फल साथ में एंड जानते हैं कि दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज आपकी ऊर्जा और उत्साह देखने लायक रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन बिल्कुल शुभ है, बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। लकी कलर आज आपका है लाल और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज धैर्य और समझदारी आपको सफलता दिलाएगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। लकी कलर आपका है हरा और नंबर आपका है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज संचार कौशल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। पुराने मित्रों से बात भी हो सकती है। लकी कलर आपका है पीला और लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: भावनाओं में बहने के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं, काम में प्रगति के संकेत है। लकी कलर आपका है सफेद और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आपका आत्मविश्वास आज लोगों को प्रभावित करने वाला है एंड अच्छी खबर भी ऑन द वे है। लकी कलर आपका है सुनहरा और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज व्यवस्थित तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी। सेहत का भी ध्यान रखें। लकी कलर आपका है नीला और नंबर है 7।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में संतुलन बना कर रखें। लकी कलर आपका है गुलाबी और नंबर आपका है 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज आपने अपनी जो योजनाएं हैं उनको गुप्त रखें। मेहनत का फल मिलने के योग्य है और जल्दी आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। लकी कलर आपका है मरून और नंबर आपका है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: यात्रा या फिर नए अनुभव आपको खुशी दे सकते हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति रहेगी। सो ओनली होल्ड ऑन टू द पॉजिटिव वंस। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: अनुशासन और मेहनत आज आपको आगे बढ़ाएगी।

0: आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। लकी कलाव का है ब्लैक और नंबर है 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: नए विचार और रचनात्मकता आपको अलग पहचान दिला सकती है। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। लकी कल आपका है आसमानी और नंबर आपका है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनें। आज का दिन शांति और अरचकमुक्ता कार्यों के लिए उत्तम है। लकी कल आपका है समुद्री हरा और नंबर आपका है 12।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज रविवार 14 जून के पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप से शुरू करते हैं। विश्व फुटबॉल कप 2026 के अंतर्गत कल रात ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड का स्कोर ड्रो रहा, फिर सुबह 2 बजे ब्राजील और मोरक्को आमने सामने आए, ये भी स्कोर ड्रो रहा। अभी फिलहाल एक मैच चल रही है, यानी कि 5 बजे खेले गए ग्रुप सी के मैच हाइटी स्कॉटलैंड जो है अभी खेल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए स्कोर है हाइटी 0 स्कॉटलैंड 1, जहां पर 28वें मिनट पर मागिन ने अपना स्कोर डाला। और बीच बीच में जो स्कोर है विश्व फुटबॉल कप के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आपको याद दिला देते हैं कि ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया तुर्की की जो मैच है वो सुबह 8 बजे, और ग्रुप ई में जर्मनी कुरासाओ जो है रात 9 बजे आज के लिए निर्धारित है। और अन्य खबरों में मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यू में एक हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के सही

कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों की सब्सिडी व्यवस्था में सुधार को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी। और उधर ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। मॉरिशस में विकास दर घटने और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मॉरिशस में

0: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। और आज विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर नियमित रक्तदान के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज बनाने की मांग उठी है। संगोष्ठी में रोजगार, आत्मनिर्भरता और सोशल इंक्लूजन पर भी जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित शांति समझौता जल्द अंतिम रूप ले सकता है। मध्यस्थ देशों और दोनों पक्षों के नेताओं ने वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया है। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: मौसम का हाल, आम हालत, पूर्व से आने वाली अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर दिन के दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात के दौरान साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त आज शाम 5:37 पर। आपको याद दिला देते हैं कि हवा जो है दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 PM.
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

आइए जानते हैं NBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट

0: एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: सुप्रभात, स्वागत है आपका फिर से चिलैक्स शो पर। संडे का दिन है और मूड भी होना चाहिए थोड़ा लाइट और म्यूजिकल। एंड आज थोड़ा सा काम कम, मुस्कुराहट ज़्यादा और गाने सबसे ज़्यादा होने चाहिए। 6:17 हुए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्यूटीफुल गानों की गहराइयों में जाने के लिए, उनके साथ फिर से वाइब करने के लिए। लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट आपके लिए खूबसूरत सा गीत, पेश है आपके नाम ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे।
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: वैसे अजनबी से याद आया कि दोस्तों आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। कहते हैं कि खून का कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता और इसलिए ब्लड डोनेशन किसी की ज़िंदगी बचाने का सबसे अनमोल उपहार माना जाता है। अगर आप योग्य हैं तो एक छोटा सा कदम किसी के लिए नई जिंदगी बन सकता है, तो पुण्य का काम जरूर करिए। अभी के लिए वापस ले चलते हैं आपको म्यूजिकल दुनिया में आपके यार एमजू रेडियो मस्ती पर।
0: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: रेडियो मस्ती
1: मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6:31 हुए हैं। रविवार 14 जून 2026 के प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विश्व फुटबॉल कप 2026 के अंतर्गत कल रात ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड का स्कोर ड्रो रहा। फिर सुबह 2 बजे खेले गए मैच ब्राजील मोरक्को आमने सामने आए जब ये भी स्कोर ड्रो रहा। 5 बजे खेले जा रहे अभी ग्रुप सी में हाइची और स्कॉटलैंड अभी जो है उनका स्कोर है फिलहाल के लिए स्कॉटलैंड 1 हाइची 0। और अन्य सुर्खियों में मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यूआ में हिंसक झड़प ने एक युवक की जान ले ली जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों की सब्सिडी व्यवस्था में सुधार को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी। इसराइल ईरान संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। मॉरिशस में विकास दर घटने और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई है। मॉरिशस की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों का दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों के कौशल को मजबूत करना और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर नियमित रक्तदान के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित शांति समझौता जल्द अंतिम रूप ले सकता है। मध्यस्थ देशों और दोनों पक्षों के नेताओं ने

0: वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत ग्रुप बी कतर स्विट्जरलैंड का जो स्कोर रहा वो है ड्रॉ, यानी कि 1-1। 2 बजे खेली गई मैच में ब्राजील मोरक्को आमने सामने आए और ये भी स्कोर रहा ड्रॉ, यानी कि 1-1। 5 बजे खेले जा रहे फिलहाल ग्रुप सी में हाइटी और स्कॉटलैंड का स्कोर है 0-1, यानी कि हाइची 0 और स्कॉटलैंड 1, जहां पर मगीन ने 1 गोल दागा है। गौरतलब है कि हाइची 52 सालों के बाद विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। 1974 में आखिरी बार इसकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए खेला था। और ज़्यादा विस्तार से आप स्पोर्ट्स संबंधी जानकारियों में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अन्य खबरों में मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यूआ क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प दुखद घटना में बदल गई। बिजटोंबो निवासी 28 वर्षीय गायल सादाल की कल शाम रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट में हुई एक घटना में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। एक संदिग्ध स्थिति की सूचना देने वाली गुमनाम कॉल मिलने पर वालिदिपैत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। उन्हें तुरंत जीतू अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और बाद में पुलिस निगरानी में भर्ती किया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पुलिस अब तक उनका बयान दर्ज नहीं कर सकी। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि इसी घटना में घायल सादाल की घायल भी घायल हुए थे। एक चिकित्सक ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। उनकी मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बीच पोर्ट लुइस नॉर्थ की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन इस दुखद घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है। मंत्रिमंडल ने ग्रांट इन एड स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त निजी प्री प्राइमरी स्कूलों को दी जाने वाली सब्सिडी प्रणाली में सुधार को मंजूरी दे दी है। इस सुधार का उद्देश्य सरकार पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करना, योजना में देखी गई कुछ अनियमितताओं को दूर करना और मौजूदा नौकरियों को सुरक्षित रखना तथा निशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्थाएं जनवरी 2027 से लागू होंगी। इस पर ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट पर टीना बुद्धा के विवरण के साथ।
1: ये सुधार शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया है, जो स्कूल प्रबंधकों, स्टाफ प्रतिनिधियों और संबंधित यूनियनों के साथ कई परामर्शों के बाद तैयार की गई है। मुख्य उपायों के तहत सरकार ग्रांट इन एड प्राप्त करने वाले स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जारी रखेगी। हालांकि जिन संस्थानों में 20 तक विद्यार्थी है, वहां एक नया प्रबंधन मॉडल लागू किया जाएगा। मैनेजर का पद हटाकर टीचर मैनेजर का पद बनाया जाएगा। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को नेशनल रेम्यूनरेशन बोर्ड के नियमों के अनुसार शिक्षक का वेतन मिलेगा। साथ ही प्रबंधन जिम्मेदारियों के लिए प्रति महीना ₹5,000 का अलाउंस भी दिया जाएगा। समिति के वर्तमान में कार्यरत मैनेजरों के लिए धीरे धीरे योग्यता बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही असिस्टेंट टीचर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि शिक्षक छात्र रेशियो धीरे धीरे 1:15 के रेशियो से बढ़ाकर 1:20 का रेशियो किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के मामले में 20 या उससे कम छात्रों वाले 33 स्कूलों के लिए ₹5,000 प्रति महीना तक रेंटल चार्जेस जारी रहेगी, लेकिन 117 स्कूलों में जो इस सीमा से अधिक है, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। संचालन खर्च के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को आधा कर दिया जाएगा और सिस्टम में दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी और नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा। अंत में 106 निजी नर्सरी स्कूलों को दी जाने वाली प्रति छात्र 400

0: रुपये की सब्सिडी भी समाप्त कर दी जाएगी। ये पूरी सुधार योजना लगभग 740 मिलियन रुपये की लागत से जुड़ी है।
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। गुरुवार को ये कहा गया था कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता होने के करीब है, जबकि उससे कुछ घंटे पहले लगातार तीसरी रात होने वाले हमलों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इस संघर्ष का सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मॉरिशस के लिए तस्वीर चिंताजनक बताई जा रही है। MCB की पहली के अनुसार देश की आर्थिक की पहली रिपोर्ट के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर में कमी, महंगाई में बढ़ोतरी और पर्यटन क्षेत्र में सुस्ती देखी जा रही है। इसका असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की क्रय शक्ति, होटलों और घरेलू खर्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी प्रणव विहारी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा के विवरण के साथ।
2: 10 जून को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बैंक ने मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को घटा दिया है। पहले जहां 5.5% वृद्धि की उम्मीद थी, अब उसे घटाकर इस वर्ष 2.9% कर दिया गया है। इस बदलाव का मुख्य कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष बताया गया है, जिसने वैश्विक व्यापार मार्गों को बाधित किया है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ला दी है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पर्यटन है। साल 2025 में लगभग 1.4 मिलियन पर्यटकों के साथ रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद अब रुझान उल्टा हो गया है। मार्च से मई के बीच पर्यटकों के आगमन में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई है। हवाई टिकटों की कीमतों में औसतन 25% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे बुकिंग में भी कमी आ रही है। महंगाई भी फिर से बढ़ने लगी है। ईंधन, गैस, रोटी और बिजली जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। MCB के अनुसार दिसंबर तक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 5.7% तक पहुंच सकती है। ये संकट केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं है। सेशेल्स में मार्च में पर्यटकों के आगमन में 37% की गिरावट दर्ज की गई। मडागास्कर में अप्रैल में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई। वहीं मालदीव्स में इस वर्ष आर्थिक वृद्धि घटकर 2.5% रहने का अनुमान है। ये सभी द्वीपीय यानी टापू अर्थव्यवस्थाएं एक ही चुनौती का सामना कर रही हैं, आयात और पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे वे वैश्विक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
1: हर वर्ष आज 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित करने के लिए समर्पित हैं जो रक्तदान के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचाने में योगदान देते हैं। साथ ही ये अवसर नियमित रक्तदान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, ताकि मरीजों की लगातार बनी रहने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई गंभीर बीमारियों के उपचार और जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। मॉरिशस ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद हुसैन ने अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि जनसंख्या के बढ़ते वृद्धावस्था अनुपात यानी एजिंग पॉपुलेशन को देखते हुए रक्त की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके लिए नए रक्तदाताओं की आवश्यकता है। शबनी जुजिया की रिपोर्ट पर एक बार फिर तीना बुदना का विवरण।
0: आज हम सब का फर्ज है कि इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाएं, ताकि हम रक्तदान करने वालों, ब्लड बैंक के आयोजकों, स्टाफ और उन सभी लोगों का धन्यवाद कर सकें जो इस नेक काम में अपना योगदान देते हैं। उनके सहयोग और मदद के कारण ही जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए रक्त उपलब्ध हो पाता है। साथ ही ये अवसर लोगों को जागरूक करने का भी है आजकल हम जनसंख्या के वृद्ध होने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम युवाओं से विनम्र अपील करते हैं कि वे आगे बढ़कर रक्तदान करें ताकि भविष्य में रक्त की कमी न हो और इस बढ़ती हुई चुनौती का सामना किया जा सके।

0: lié ça à un problème de vieillissement de la population.
1: रक्तदान एक सरल मानवीय और अनमोल सेवा है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित रक्तदाता संजीव बुदन का कहना है कि रक्तदान केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये अपनी सेहत का ध्यान रखने का भी एक अवसर है, क्योंकि प्रत्येक रक्तदान से पहले आवश्यक स्वास्थ्य जाँच की जाती है। संजीव बुदन को सुनते हैं।
2: जब लोग रक्तदान करते हैं तो वे एक नेक काम करते हैं और किसी की जान बचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही उनकी अपनी सेहत को भी लाभ होता है। रक्तदान से पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी सेहत की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा अपने को स्वस्थ महसूस करता हूं। हर बार रक्तदान करने के बाद मुझे बहुत हल्का और अच्छा महसूस होता है।
1: मॉरिशस के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट ने स्वास्थ्य पेशेवरों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने दूसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। डॉक्टर जीतू अस्पताल की गायनेकोलॉजी विशेषज्ञ और संघ की सचिव डॉक्टर वंदना बक्तावो के अनुसार भारत, फ्रांस और अफ्रीका से आए कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रही हैं। वे प्रसूति एवं स्त्री रोग के क्षेत्र में नवीनतम सिफारिशों और सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धतियों को साझा कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मॉरिशस में महिलाओं को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा महिला स्वास्थ्य देखभाल को और बेहतर बनाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के आदान प्रदान के माध्यम से ये सम्मेलन मॉरिशस के स्वास्थ्य पेशेवरों को नई जानकारी और आधुनिक चिकित्सा ज्ञान प्रदान करेगा, जिनका सीधा लाभ महिलाओं के स्वास्थ्य को मिलेगा। निर्मा नारायण रेड्डी की रिपोर्ट पर एक बार फिर तीना बुद्धा को सुनते हैं।
2: हमारी संस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य है, हम मॉरिशस में प्रसूति यानी ऑब्स्टेट्रिक्स और स्त्री रोग यानी गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स आयोजित करते हैं ताकि हम अपना ज्ञान और कौशल बढ़ा सके, अपने करियर में आगे बढ़ सके और गर्भवती महिलाओं तथा स्त्री रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रही महिलाओं की देखभाल को और बेहतर बना सके। हमारे पास गाइडलाइंस है, लेकिन वे अभी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंची है, इसलिए हम अपने दरवाजे खुले रखते हैं ताकि मॉरिशस के सभी गायनेकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग मिल सके, वे अपना करियर आगे बढ़ा सके और पीपल सेंटर्ड मेडिसिन की दिशा में बेहतर काम कर सके।
1: बीस वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देख के असुविधाओं की चुनौतियों पर केंद्रित संगोष्ठी का आयोजन कुदा आउट सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, देखभालकर्ताओं और अधिकारियों ने मिलकर एक अधिक समावेशी मानवीय और आत्मनिर्भर समाज की आवश्यकता पर जोर दिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: किसने कहा कि 20 साल की उम्र के बाद एक विकलांगता के साथ जीने वाला व्यक्ति काम की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सकता। हाँ, मुश्किलें हैं, लेकिन उन्हें भी हर किसी की तरह जीने, काम करने और आगे बढ़ने का अधिकार है। आज लगभग 50 एनजीओ ने इस मजबूत संदेश को आगे बढ़ाया। उनमें से एक है मारी फ्रांस वियोलेट फॉयी डे ला ट्रिनिटी की अध्यक्षता, जो कई सालों से विकलांगता के साथ जीने वाले लोगों का साथ देती आ रही है। हम ऐसे बच्चों को भी लेते हैं जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और जो अब विशेष स्कूलों में नहीं जाते, ताकि उनके आगे के विकास, ट्रेनिंग और कामकाज की तैयारी के लिए कुछ और मदद मिल सके। Jean-Marie Malepa, Fondation Georges Charles के मैनेजर, एक दिल को छू लेने वाली हकीकत की याद दिलाती है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये लोग अपने परिवार के सहारे के बिना रह जाएं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए और उन्हें बिना डर के दुनिया का सामना करने के लिए तैयार किया जाए।

0: Nous, n'est pas normal qu'un élève qui a 20 ans pile nous quitte dans la société comme ça.
1: हमारे लिए ये सही नहीं है कि जैसे ही कोई विद्यार्थी 20 साल का हो जाता है उसे समाज में अकेला छोड़ दिया जाए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास जरूरी व्यक्तिगत कौशल हो ताकि वे जीवन को समझ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और अधिक कर्मचारियों की जरूरत है, खासकर युवाओं की। एसोसिएशन जन इनअडाप्टे दे क्यूपिप की सिंडी पामा बताती है कि एक विकलांग व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर कई सहायकों की मदद की आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ा ज्यादा काम होता है क्योंकि इन बच्चों को ज्यादा देखभाल यानी केयर की जरूरत होती है, लेकिन इस क्षेत्र में और युवाओं को भी नौकरी मिल सकती है क्योंकि यहाँ स्टाफ की कमी है। और हर संघर्ष के पीछे एक सरल सी इच्छा है, सम्मान के साथ जीना, काम करना और समाज में हर किसी की तरह स्वीकार किया जाना, क्योंकि असल में सबसे बड़ा अवरोध अक्सर विकलांगता नहीं बल्कि समाज की सोच, नजरिए और वे रुकावटें हैं जो समाज उनके सामने खड़ी करता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के नेताओं तथा वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित शांति समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। कूटनीतिक वार्ताएं अब एक ऐसे समझौते पर केंद्रित हैं जो दोनों देशों के बीच जारी तनाव व संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के मसौदे के अंतिम पाठ पर सहमति बन चुकी है और अगले चरणों को अंतिम रूप देने पर काम जारी है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि समझौता अभी अंतिम रूप से हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, जबकि दोनों पक्षों ने बातचीत में प्रगति स्वीकार की है। अधिकारियों के अनुसार समझौते को लेकर आशावाद बढ़ा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है। यदि ये समझौता संपन्न होता है तो ये क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाएगा। चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि स्पेस एक्स के शेयर्स में बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद आई भारी तेजी के चलते एलन मस्क की दुनिया के पहले खरबपति यानी ट्रिलियनेयर बनने का दावा किया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक वित्तीय और कारोबारी जगत का ध्यान आकर्षित किया है तथा एक बार फिर एलन मस्क की संपत्ति और उनके व्यावसायिक साम्राज्य को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर। अमहालत पूर्व से आने वाले अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दक्षिण पूर्व सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरेंगे और बारिश होगी। समुद्र प्रवाहरेखा के पास सामान्य रहेगा, 2 मीटर की लहरें उठेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर रात के दौरान न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। चलते चलते हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। कंसल्ट पर हमारे सहयोगी कादर हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। आपको हम याद दिला देते हैं कि फिलहाल हाइची और स्कॉटलैंड के बीच खेले जा रहे मैच का स्कोर अभी 1-0 है, यानी स्कॉटलैंड के मैगिन ने अपना स्कोर 1 किया है और गोल दागा है। और आपको याद दिला देते हैं कि आज ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की खेलेंगे एक दूसरे के साथ सुबह 8 बजे, और रात के 9 बजे जर्मनी और क्यूरासाओ आमने सामने होंगे, और साथ ही रात 12 बजे नेदरलैंड्स का सामना होगा जापान के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और साथ रहिए। कुछ ही देर में बढ़ते हैं हम शोक समाचार।

0: not cured.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रेलवे रोड सेमिशेल बेलिया में रेलवे रोड सेमिशेल बेलिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मपियाल बुदिया मुलिको, श्री धर्मपियाल बुदिया मुलिको जिन्हें लालबो के नाम से हम लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर सेमिशेल बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशोक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टिटी एट 3 PM। ब्रांच रोड मुनाक्योय में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय बुदन जिन्हें ताके के नाम से हम लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती छाया देवी बुदन के घर बोनाकेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टिटी एट 2 PM। बैंक रोड गुडलैंड्स में 26 साल के 26 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिषेक सोमाय जिन्हें अभिषेक के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनकी माँ सुनीता नालहंग के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। कल्पुलेन रॉसबेल में 57 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती सरस्पदी सुंदरम पैदाशी नाम गाया कुचियो जिन्हें राजीन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पिता गोइंसामी गायाकुची के घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रेलवे स्ट्रीट मोगोश में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री राम सजो जिन्हें देवानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर मोगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोतेक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। ड्यूब्रा न्यू ग्रोव में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रीदम धनंजय जिन्हें अजय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1 बजे उनके बेटे केशव श्रीदम के घर न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। इदगो अडोल्फ मोगावियो में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री भुवनेश्वर रामदो और जिन्हें धनंजय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो त्रिवेणी स्टो बोबासें के मालिक थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनके घर मौगावी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। ऋषि दयानंद रोड जुबोय में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गीता रत्नू पैदाशाम गनू और जिन्हें अनीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके बेटे गणेश रत्नू के घर जुबोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमान्यो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडी एट नून। ब्रांच रोड न्यूग्रोव में 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अमिका देवी संपत जिन्हें अमिक के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके बेटे शकील संपत के घर न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियोग शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉय रोड मालेंगा सैंपिया में 62 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश गुरुदयाल जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गुरुदयाल मालिनी के घर मालेंगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैंपिया शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। लिजाले बोंबू मोतायोरी मोका में 69 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेंद्रनाथ जरी जिन्हें देवेंद्रनाथ के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर मोतायोरी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपियक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। केदन लेन फ्लोरियाल में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोहिनी केदन पैदाशाम जगरूप और जिन्हें ज्ञानती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी मंगलवार को दिन के 12:30 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन ट्यूसडे 12:30 PM। रॉय रोड ब्रिजेवेजिया में 91 ईयर्स ओल्ड के श्री देवनंदन रामकिसुन जिन्हें देवनंदन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनकी पत्नी

श्रीमती लीलावती राम की सुन के घर बजे वजह से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोंजी शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। सीते रामफोर कॉन बेतू ब्रिटानिया में, सीते रामफोर कॉन बेतू ब्रिटानिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रमणि भुजावन, श्रीमती चंद्रमणि भुजावन पैदाश्रम बिहारी और जिन्हें दादी लाकोचिन अमृता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके घर ब्रिटानिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तयाग की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ,
4: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट,
4: 96.4,
3: सेंटर,
4: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Good morning. It's 7 a.m.
5: Timeless Tadka.
1: RM2
3: Radio Musti.
5: Timeless Tadka.

0: Express तड़का
1: RM2 Radio Masti।
2: कुछ गाने सिर्फ गीत नहीं होते हैं, वो यादें होते हैं। एक धुन और हम सीधा बचपन, कॉलेज या किसी खास पल में पहुंच जाते हैं। इसलिए तो 70s, 80s एंड 90s के गीत आज भी दिलों पर राज करते हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका वंस अगेन RM2 रेडियो मस्ती पर। अभी सिलसिला जारी हो चुका है आपकी टाइमलेस तड़के का और यहाँ पर आपके लिए ब्यूटीफुल गाने होंगे एक से एक, तो आप बस चुने रहेगा RM2 रेडियो मस्ती के साथ ही।
0: टाइमलेस तड़का,
1: RM2 Radio

0: Podcast तड़का
1: RM2 Radio Mastery।
2: मौसम चाहे जैसा भी हो, धूप हो या बादलों का भंडार, 80s, 90s, 20s के गाने हर पल को खास बना देते हैं, क्योंकि पुराने गीतों का जादू कभी पुराना नहीं होता। एंड लो, यही पर आके मैसेजेस भी आ रहे हैं फुल स्पीड पर, कुछ ही देर में उन्हें पढ़ने वाले हैं, तो आपके डेडिकेशंस को रेडी रखें 5499124 पर।
0: Timeless Tadka
1: RM2
3: Radio Masti
0: Timeless Tadka

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए अभी के लिए सुनते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स आपसे विकास जी. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग नीलमणि एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. फीफा वर्ल्ड कप 2026 पूरे जोश के साथ समूचे फुटबॉल जगत को जकड़ने लगा है. टाइम जोन उल्टा फुल्टा होने के बावजूद कच्चा पक्का रंग बेरंग अच्छा बुरा सभी फुटबॉल राष्ट्रों को फुटबॉल खेलते हुए देखने से मन नहीं भरता, क्योंकि वर्तमान वर्ल्ड कप 48 देशों की एक स्प्रिंट नहीं एक मैराथन है, जिसके पहले राउंड में 32 कंट्रीज क्वालिफाइड होंगे. 12 ग्रुपों की दो दो टीमें प्लस 8 बेस्ट. स्कॉटलैंड ने आज सुबह 36 साल बाद अपनी पहली जीत हासिल की. बोस्टन में जॉन मैकगिन का मात्र गोल रखा स्कॉटलैंड जाग उठा. सो आज का पहला मैच जो आज सुबह 7 बजे समाप्त हुआ, उसमें स्कॉटलैंड ने हेटी को 1-0 से परास्त किया. आज सुबह ही 7 बजे ये मैच समाप्त हुआ, किंतु तड़के 2 बजे से ब्राजील के ला सेलेसाओ की जान निकाली जा रही थी मोरक्को, और फाइनली मैच ड्रॉ गया. सबसे पहले स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद अपनी ये मैच जीता है हेइटी के विरुद्ध आज सुबह 7 बजे 1-0 से. और मोरक्को 1-1 यहाँ पर भी बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी ब्राजील के ला सेलेसाओ से, जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, लेकिन पिछली बार साल 2002 में ही. उसके बाद ब्राजील भी अभी एक छठे वर्ल्ड कप की तलाश में है, और तलाश क्या इस बार जाकर समाप्त होगी, क्योंकि ये एक स्प्रिंट नहीं एक मैराथन है. भूलेगा नहीं कि पिछले वर्ल्ड कप 2022 में कतर में अर्जेंटीना अपना पहला मैच हार गया था सऊदी अरब के विरुद्ध, लेकिन अंत में अर्जेंटीना ही वर्ल्ड कप चैंपियन बना था. सो ब्राजील 1-1 इस्माइल सैबारी ने मोरक्को को आगे किया फर्स्ट हाफ में ही, और कुछ ही एक डोमिनेशन के बाद मोरक्को ने ये मैच डोमिनेट किया और सबको हक्का बक्का कर दिया एक डोमिनेटिंग शुरुआत के बाद. किंतु रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर विनिशियस जूनियर ने कुछ ही मिनट बाद एक स्पेक्टेक्युलर गोल स्कोर कर ब्राजील को बचाया. उल्लेखनीय है कि अब कोई टीम छोटी या बड़ी नहीं रही. ब्राजील यदि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है तो मोरक्को अफ्रीका का चैंपियन है, इसलिए राजा का ही बेटा इस बार राजा नहीं बनेगा. देखते रहिए ब्राजील 1-1. कल रात कतर ने भी अपना पहला अंक हासिल किया विश्व कप के इतिहास में. कतर 1-1. ब्रिल एम्बोलो ने फर्स्ट हाफ में पेनाल्टी पर स्विट्जरलैंड को आगे किया और एक ड्रामेटिक स्टॉपेज टाइम इक्वलाइजर किया कतर ने खेल के 94th minute पर जाकर बुआलू खुकी का हेडर, और कतर 1-1. ऐसे में कतर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक हासिल किया. हार्दिक बधाई. फुटबॉल इज एवरीवेयर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सुबह शाम और रात को भी. आज के फिक्स्चर्स इस प्रकार हैं. सो आज सुबह 8 बजे ही, आज संडे है इसलिए सुबह 8 बजे अभी से लगभग 25 मिनट बाद ये मैच शुरू होगा ग्रुप डी में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की. सो गेट रेडी ये मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की आज सुबह 8 बजे. फिर आज ही रात 9 बजे ग्रुप ई में जर्मनी के द नेशनल मैनचाफ खेलेंगे क्यूरासाओ के विरुद्ध आज रात 9 बजे. आज ही मध्यरात्रि के 12 बजे मिडनाइट नेदरलैंड्स वर्सेस जापान, और कल सुबह 3 बजे मंडे की सुबह

0: 3 बजे आइवरी कोस्ट का मुकाबला इक्वाडो से होगा। कल ही सुबह 6 बजे एक और मैच रखा गया है जिसमें स्वीडन का मुकाबला चुनिसिया से होगा। सो इतना सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सारे मैच खेले जा रहे हैं एक के बाद एक। तीन देशों में यूएसए ने कल पराग्वे को 4-1 से परास्त कर अपना दबदबा दिखाया। सो आज कई अन्य मैच खेले जाएंगे और इस प्रकार अगले 19 जुलाई तक ये वर्ल्ड कप आपको चकमा नहीं देगा। बहुत सारे फुटबॉल मैच एमबीसी टीवी पर और रेडियो पर हर सुबह और शाम आपको हम खबरें देते रहेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन बाजार ट्रांसफर बाजार में भी अभी बताएंगे आपको कि लिवरपूल को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि कुछ खिलाड़ी जा रहे हैं तो कुछ आ भी सकते हैं। अभी बाकोला पेरिस सेंट जर्मेन से उसका नाम लिवरपूल में गुनगुनाया जा रहा है, ब्रैडली बाकोला, जो केवल 23 साल का है। और खबरों के मुताबिक लिवरपूल और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है लेकिन आर्सेनल भी ब्रैडली बाकोला के पीछे पड़ा हुआ है। कई सारी साइनिंग की बात हो रही है वर्ल्ड कप के दौरान और वर्ल्ड कप के बाद, इन सब के बारे में सुनते रहिए। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में के बार्सिलोना एंड कतालोनिया ग्रां प्री में आज जॉर्ज रसेल रेस पोल पोजीशन से शुरू करेगा। कल के स्प्रिंट के आखिर में रसेल ने लेविस हैमिल्टन को पार किया एन मौके पे। पर बता दें कि जनरल स्टैंडिंग में किमी एंटोनेली अभी तक पहले स्थान पर है 156 पॉइंट्स के साथ। लेविस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर है 90 अंक लिए 90 पॉइंट्स और 2 अंक पीछे जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर आ रहा है 88 पॉइंट्स के साथ। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे मुकाबले में कोई मुकाबला ही नहीं था। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 24वें 24th ओवर में ही ढेर कर दिया 194 एंड ऑल आउट। जवाब में भारतीय टीम ने केवल 3 विकेट के नुकसान पर ये लक्ष्य पूरा किया। शुभमन गिल 84 पर 84 नॉट आउट रहा। अब दोनों के बीच एक और वनडे मैच खेला जाएगा। क्रिकेट में ही वुमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज इंडियन लेडीज का मुकाबला पाकिस्तानी लेडीज से होगा। ये मैच एजबेस्टन बर्मिंगम में खेला जाएगा और आज ही इसी आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वुमेन का मुकाबला नेदरलैंड लेडीज से है। एक बार फिर बता दें कि कल ब्राजील और मोरक्को ने मैच ड्रॉ किया 1-1। कतर भी 1, स्विट्जरलैंड 1 और स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद अपनी जीत हासिल की आज सुबह ही हेती को 1-0 से हराकर। आज के मैच इस प्रकार हैं, आज सुबह 8 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तुर्की, रात 9 बजे जर्मनी का मुकाबला क्यूरासाओ से, रात 12 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस जापान और आज सुबह कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट टक्कर लेगी इक्वाडो से, कल ही सुबह 6 बजे स्वीडन वर्सेस चुनिसिया। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपीए सेल्स लो ग्रानिट एंड क्वार्ट्ज, रिकासे लो लावो, ला लुमिएर मॉडर्न प्री शॉक।

0: Express Tadka.
1: RM2
2: Radio Masti.
3: रास्ता तो आप रोजाना देखते हो एंड इसलिए आप हमारे फेवरेट हो तो पढ़ते हैं आपके प्यार प्यारे मैसेजेस। आप है बदवाग विदेशी जी गाना डेडिकेट कर रहे हैं प्यारी अनुषा जी के लिए। हेलो जयशन जी आपने गुड मॉर्निंग विशेस भेजे हैं सबके लिए। गुडलैंड से सरिता जी भी कनेक्टेड है बोल रही है वेरी नाइस सिलेक्शन थैंक यू जी आपके लिए सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही लाते रहेंगे। एंड आज है रानी जी का बर्थडे आपके पुपू रानी का साधना मुकेश और इमरिट फैमिली की तरफ से जो एपिने के रहने वाले हैं बेस्ट विशेस गोज आउट टू रानी जी एंड हैप्पी बर्थडे जी। आप रानी की तरह कभी जीना मत छोड़ना। एंड धनेश्वर जी भी साथ है बॉम्बू से साथ दे रहे हैं प्यारा गाना मांग रहे हैं सुनीता जी संजीव निशा रेखा के लिए जरूर जी गाना चिल्लाएंगे आपके लिए। टाइमलेस हिट्स ऑन गोइंग है आपके लिए 9 बजे तक तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
0: RM2
1: Radio Musti.
4: La FIFA World Cup 2026 chez McDonald's est officiellement lancée et elle arrive avec 6 gobelets de collection. Et quel line-up ! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Song Heung-min, sans oublier notre capitaine adoré, l'incontournable Grimace. À l'achat d'un large meal, gagnez un gobelet en cadeau grâce à la FIFA World Cup 2026 chez McDonald's. À vous de jouer !
5: Dans tous les restaurants McDonald's pour une durée limitée jusqu'à épuisement des stocks. Tout droit réservé à McDonald's 2026, FIFA World Cup 2026.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: यस ये प्यारा सा गाना जाता है आप सभी सुनने वालों के नाम जो कनेक्टेड है अभी हमारे साथ RM2 रेडियो मस्ती पर।

0: तड़का
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
0: टाइमलेस तड़का
3: ना ना ना ना ना।

मिला ले जा खजूर के 8 बजे वाटे बजे के भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करा जाता है। सब लोग की नमस्ते, आप प्रणाम। सबसे आगे हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बतियाओ। अब जा फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेला गया मैच के स्कोर इस प्रकार बाटे। ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड के स्कोर हल 1-1 यानी कि ड्रो। आज फजीर के 2 बजे ब्राजील के सामना भयल मोको के संगे आर हियो परी स्कोर हल 1-1 आर 5 बजे फजीर के खेला गया ग्रुप सी में हाइची स्कॉटलैंड मैच के स्कोर रहल बाटे। हाइची 0 स्कॉटलैंड 1 गोल डाले हुला रलन खिलाड़ी मागिन। आपके ये भी बता दे बिलाजा कि 52 बरिस बाद यानी कि 1974 के बाद 2026 में हाइची विश्व कप खातिर क्वालिफाई होल रहल। और अभी ग्रुप डी में यानी कि 8 बजे से ऑस्ट्रेलिया के सामना हुआ था तुर्की के खिलाफ। ग्रुप ई में जर्मनी खेली क्यूरोसाओ के संगे आर ई एगो दिलचस्प मैच रही। आज रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान रही और ग्रुप ई में काल फजीर के 3 बजे आइवरी कोस्ट खेली इक्वाडोर के खिलाफ। दूसरा समाचार में मंत्रिमंडल ग्रांट इन स्कीम के अंतर्गत निजी प्री प्राइमरी स्कूल के जिकरा सहायता मिलेला ओ लोग के देवल जाए होला सब्सिडी प्रणाली में सुधार आने के मंजूरी दिली बाटे। इस सुधार के उद्देश्य सरकार व पड़े होला वित्तीय दबाव के कमती करे के योजना में दिखलगत कुछ अनियमितता के दूर करे के और मौजूदा नौकरी के सुरक्षित करे के संगे संगे निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा के निरंतरता सुनिश्चित करे के हम नवा व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू हो। मौशस के रेजिडेंस लाकिया क्षेत्र में भयल एगो हिंसक झड़प दुखद घटना में बदल गल। बिजितोंबो के रहे होला 28 बरिस के गायल सादाल काल सांझ के रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट में भयल एगो घटना में ओकरा बहुत घाव लगल आ जेकर बाद ओकर मृत्यु हो गल। एगो संदिग्ध स्थिति के सूचना मिलला के बाद वालिदीपत पुलिस मौका यानी कि स्थल पर पहुंचल जहां पर ही 22 बरिस के मोहम्मद शेख बुलाकी भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सीमा पर पड़ रहल। ओकरा तुरंत जीतू अस्पताल ले जावल गल जहां ओकर सर्जरी भयल आर बाद में पुलिस निगरानी में ओकरा भर्ती करल गल। ओकर स्वास्थ्य स्थिति के देखत पुलिस अभी ओकर कोनो बयान नहीं लेली बाटे। जांच के बखत पुलिस के ई भी पता चलल कि इही घटना में गायल सादाल भी घायल हो रहल। ई एगो चिकित्सक ओकर मृत्यु के पुष्टि करलन। उन ओकर मृत्यु के सटीक कारण के पता लगाए खातिर राज फजीर के पोस्टमार्टम करल जाए। ई बीच पोर्ट लुइस नॉर्थ के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन

डिवीजन ई दुखद घटना के सब पहलू के जांच करी और मामला के वास्तविक परिस्थिति के पता लगाए में उ लोग जुटल हवन जा। बीफे के ई बोला गल रहल कि ईरान के संगे युद्ध समाप्त करे खातिर एगो समझौता हो के करीब बाटे, जबकि उससे कुछ घंटा आगे लगातार तीसरका रात के होई होला हमला के रद्द करल गल रहल। हालांकि इस संघर्ष के सीधा असर दुनिया भर के अर्थव्यवस्था

0: सागर क्षेत्र भी इस अछूता नहीं बाटे। मॉरिशस खाती तस्वीर एकदम ही चिंताजनक बाटे। एमसीबी के पहला रिपोर्ट के अनुसार देश के आर्थिक वृद्धि दर में कमी, महंगाई बहुत बढ़ल बा और पर्यटन क्षेत्र में सुस्ती देखल गल। एकर असर खाली आंकड़ा ले सीमित नहीं बा, बल्कि आम आदमी के क्रय शक्ति यानी कि किने के जो शक्ति रहेला, होटल और घरेलू खर्चा पर भी पड़ता। हर बरिस आज 14 जून के विश्व रक्तदान दिवस मनावल जाला, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनावल जाला। ई दिन सब महिला और पुरुष लोग के सम्मानित करे के है जे रक्तदान करे में समर्पित हवन जा और रक्तदान के माध्यम से कई गो आदमी के जान बचैले हवन जा। एकर संगे ई अवसर नियमित रक्तदान के आवश्यकता पर भी रेखांकित करेला, जेकर से मरीज लोग के लगातार बनल सब जरूरत के पूरा करल जा सकेला। रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई गो गंभीर बीमारी के उपचार और जटिल चिकित्सा प्रक्रिया खातिर बहुत आवश्यक है। ब्लड डोनर्स मॉरिशस ब्लड डोनर एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद हुसैन जस्ती से जस्ती आदमी के रक्तदान करे खातिर आगे आए के मांग कर ली हवन। वो बोला थवन कि जनसंख्या के बढ़त वृद्धावस्था यानी कि हमनी के जो बढ़जना के बढ़त संख्या बाटे, आई जन पॉपुलेशन बाटे, ओकरा देखत रक्त के मांग लगातार बढ़ती जाता और एकर खातिर नवा रक्तदाता के भी आवश्यकता पड़ता। मॉरिशस के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्ट्रिशन और स्वास्थ्य पेशेवर की दक्षता बढ़ाए के उद्देश्य से अपन दूसर का वार्षिक सम्मेलन के आयोजन कर ले बाटे। डॉक्टर जीतू अस्पताल के गायनेकोलॉजी विशेषज्ञ संघ के सचिव डॉक्टर वंदना बक्तावा के अनुसार भारत, फ्रांस और अफ्रीका से आए हुआ कई गो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग लिहन जा, जो प्रसूति और महिला लोग के रोग के क्षेत्र में हाल की जो सिफारिश और सर्वोच्च चिकित्सा पद्धति के साझा करियन जा। 20 वर्ष से कमती आयु के दिव्यांग व्यक्ति लोग खातिर डे केयर सुविधा के चुनौती पर केंद्रित एगो संगोष्ठी के आयोजन कुदा और सेंटर में कर रगल। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन देखभाल करे होला और अधिकारी लोग मिल के एगो जस्ती समावेशी मानवीय और आत्मनिर्भर समाज के आवश्यकता पर जोर देलन जा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हवन कि अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करे खातिर समझौता पर आज दिमास के हस्ताक्षर होए की उम्मीद बाटे। हालांकि अभी ले ईरान इस समझौता के बखत के लेके सतर्क रुख अपनाए ले बाटे और बोले बाटे कि अंतिम तारीख के अभी पुष्टि नहीं होल बाटे। और चलते चलते हमने ई भी बोल देवी लाजा कि स्पेस एक्स के शेयर में बाजार में सूचीबद्ध होइला के बाद आल भारी तेजी के चलत एलन मस्क दुनिया के पहला खरबपति यानी ट्रिलियनेयर बन गल हवन अभी। और ये घटना वैश्विक वित्तीय कारोबार जगत के ध्यान आकर्षित कर ले बाती और एक बार फिर उसे एलन मस्क के जो संपत्ति बाती और उकर व्यवसायिक साम्राज्य के मुद्दा के केंद्र में अनले बाटे। तो यही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से साथ दे लौका खाती धन्यवाद। संगे रह अभी बढ़ब जा।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: बचपन के वो दिन याद आ गए ना, क्या बात। आज बचकर 13 मिनट हुए हैं, चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: मौसम का हाल, आम हालत, पूर्व से आने वाली अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्रांतों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर दिन के दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात के दौरान साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त आज शाम 5:37 पर।
6: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés et retrouvez tous vos indispensables pour vivre le match à petit prix chez Winners. La gamme de Red Bull de 250 ml à 64,95 € et toute la gamme de barres de chocolat Cadbury de 150 grammes à 105,95 €. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
7: On est tous
1: RM2
4: Radio Musti. RM2
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.

0: Shameless तड़का
1: RM2 Radio Musti.
2: क्या आपने कभी महसूस किया है बस एक गाना और हम तुरंत किसी खास याद में खो जाते हैं? शायद इसलिए म्यूजिक को यादों की जुबान कहा जाता है क्योंकि ये हमें मेमोरीज की उन गलियों में ले जाती है जहां पर हमारा एक जरूरी हिस्सा अभी तक वहां पर है। तो स्वागत करते हैं आपका वंस अगेन टाइमलेस तड़का में, जहां पर लिटरली तड़का तो नहीं लेकिन हो रहा है मिक्स गानों का। एंड थोड़ी ही देर में फिर से आपके मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं। सो 5491-1294 पर अपने डेडिकेशन विशेज और नाम लिखना ना भूलें।
3: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
4: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: défi The Long Shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: संडे का मंत्रा है दिल को आराम, दिमाग को सुकून और जिंदगी को थोड़ा सा म्यूजिक देना। हर संडे एक नई शुरुआत का वादा लेकर आती है, तो मुस्कुराइए क्योंकि आने वाला हफ्ता आपका हो सकता है।
0: Avant le défi, the long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2 Radio Musti.

0: Express Tadka.
1: RM2
2: Radio Masti.
3: And yes, Timeless Vibes आपके नाम dedicated है 9 बजे तक. जी हाँ, इस नमनी और आप सुन रहे हैं अपना Timeless तड़का. And as promised, कुछ देर में पढ़ने वाले हैं आपके messages. लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि World Cup में कौन-कौन से updates हैं.
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
4: Get ready for the biggest World Cup ever.
5: 2026 FIFA World Cup.
4: पहली बार होगी 48 टीम्स, 104 मैचेस. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
5: रेडियो मस्ती के साथ
4: वर्ल्ड कप मैगजीन.
6: FIFA World Cup 2026 में कभी मैच इधर तो कभी मैच उधर, मैचों के बाद हर एक मैच. कल 11 बजे मैच था, सुबह

0: दो बजे मैच था, चार बजे मैच था, अभी भी मैच खेले जा रहे हैं। ऐसे ही इस संडे को भी कई ऐसे फिक्स्चर्स हैं। सो फीफा वर्ल्ड कप इन फुल स्विंग। कल के मैचों में दो ड्रॉ एक जीत, स्कॉटलैंड 36 साल बाद एक मैच जीत पाया वर्ल्ड कप फाइनल्स में, 1-0 की जीत आईसी पर मैकगीन का गोल। ऐसे में स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में आगे निकल गया ब्राजील और मोरक्को से ऊपर। इस समय ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला टर्की से हो रहा है और ग्रुप ई के लिए आज रात 9 बजे जर्मनी वर्सेस क्रोएशिया, मिडनाइट नेदरलैंड्स वर्सेस जापान। कुछ और खबरें, ऑस्ट्रिया के मैनेजर राल्फ रग्निक के कॉन्ट्रैक्ट को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ है। और कल के मैचों पर ज्यादा जानकारियां हमें दे रहे हैं हमारे वर्ल्ड कप एनालिस्ट सरजू गारुशंकर, उनको सुनते हैं।
1: नमस्कार अरविंद, मैच कतर वर्सेस स्विस ब्लब को ये मैच ट्रेडिशन बोरिंग रहल फर्स्ट हाफ में झलै एगो अटैक डिफेंस रहल को ला स्विस क्रिएट करते लोकेशन एगो लेकिन ब्लॉक डिफेंसिव ट्रे बार रहल और सेकंड हाफ में देखा कि कैसे हम बोले सब फुटबॉल में कब ढेर लोकेशन क्रिएट कर ने स्कोर करबा तो पाँच ओपोनेंट ओके एगो लोकेशन मिली तो उसको और सेकंड हाफ में कतर एगो चमत्कार एक्शन मिलल बोलब से कि वो हेडिंग कैप्टन के हेडिंग को गोल इक्वलाइज करलक तब बुझला कि कतर हिस्ट्री लिखलक अपन फर्स्ट पॉइंट वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में दिलक तो ई मैच बोलब एगो वेकअप कॉल हल लेकिन प्लास्टिक खातिर। हाँ अभी और दूसर मैच, हाँ अरविंद अब दूसर मैच को ब्राजील वर्सेस पाहब बोलब से कि वेरी एंटरटेनिंग मैच रहल और ये मैच में बोलब से कि बेस्ट टीम रहल मारोक कहे कि मारोक में सब इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहल लोग प्रिपेयर कर ले वन से खूबे अपन डीएनए कुप दाफ्री के और ये वर्ल्ड कप ले प्रिपरेशन ज़्यादा निमन रहल लोग और देखा कि लेकिन अग्रेसिव रहल कंपोजर रहल ट्रांजिशन में खूबे अपन एप्लीकेशन अप्लीके करते रहन से और ये सब कंपार्टमेंट दे जो में लोग खूबे बैलेंस रहल और लेकिन ब्राजील बोलब से कि अभी एंसेलोटी अपन लेकिन चिप अभी ले खोजते बा कहे कि कब संसमान देखनी सर आना था कि देखा कि लेकिन और ही लिमन प्लेयर्स बा मगर लेकिन चिप नहीं मिला था कंस्ट्रक्शन कहा कि मिडफील्ड में उतना ओकर प्रेजेंस नहीं रहल और देखा कि ये लेकिन ब्राजील दुश्मन से केला गते गते अपन एगो मेयर लेकिन बने ये टूर्नामेंट में गहरा अब अभी देखब सा मगर बोलब कि मारोक एगो बढ़िया लेकिन है।
2: FIFA World Cup 2026, 11 June से 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: без търка.
1: RM2
2: Radio Masti.
3: मस्ती तो फील हो ही रही है, ऊपर से आपके वार्म मैसेजेस से तो हल जी ने गुड मॉर्निंग विशेस भेजे हैं आप सभी के नाम। प्रेमिला जी भी साथ दे रही है, हेलो आप कह रही है नाइस सिलेक्शन, फुल वॉल्यूम पर आप कनेक्टेड हो। अगला गाना मांग रहे हैं अपनी बेटी नुतिश्ता के लिए, दामाद आश्विन के लिए, हर्षी निवानशी दिगंबर फैमिली, मम्मी मोहिनी ब्रो गिरीश गणेश फैमिली, सुरेखा दीदी विक्की निखिल तीशा यानिश रंजयन सीताराम फैमिली के लिए क्या बात है, पूरे परिवार के लिए जरूर चलाएंगे गाना। अंजू जी के लिए गाना समझावा, अरे चला दिया आपके बोलने से पहले ही। किशन रघुनाथ जी सोगे नाम से कनेक्टेड है, नेक्स्ट सॉन्ग मांग रहे हैं अपनी वाइफ और दो बच्चों के लिए रिया और जिया के नाम। रविना दर्शन जी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फैमिली के साथ, गर्म चाय गातो पीमा, क्या बात है आप तो मुंह में पानी ला रहे हो, अब तो मुझे भी गाना है वैसे बना बेची टू यू एंड ऐसे ही स्टे कनेक्टेड। एंड मैं नमन यही पर आपसे इजाजत लेती हूँ, होप यू हैव ए ग्रेट संडे वाइल लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती। RM2 रेडियो।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: वेलकम टू RM2
0: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
2: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेले गए मैचों का स्कोर रहा। ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड ड्रॉ, आज सुबह 2 बजे ब्राजील का सामना हुआ मोरक्को के साथ, स्कोर रहा 1-1, यानी कि ये भी ड्रॉ। और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में हाइची स्कॉटलैंड मैच का स्कोर रहा हाइची 0 स्कॉटलैंड 1, गोल डालने वाला रहा मैकिन। गौरतलब है कि हाइची 52 सालों यानी 1974 के बाद 2026 में ये विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ था। और अभी ग्रुप डी में 8 बजे से ऑस्ट्रेलिया का सामना हो रहा था तुर्की के खिलाफ। ग्रुप ई में जर्मनी खेलेगा क्यूरासाओ के साथ, ये कह सकते हैं एक दिलचस्प मैच होगा। और रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान, तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। मंत्रिमंडल ने ग्रांट इन एड स्कीम के तहत सहायता प्राप्त निजी प्री प्राइमरी स्कूलों को दी जाने वाली सब्सिडी प्रणाली में सुधार को मंजूरी दे दी है। इस सुधार का उद्देश्य सरकार पर पड़ रही वित्तीय दबाव को कम करना, योजना में देखी गई कुछ अनियमितताओं को दूर करना और मौजूदा नौकरियों को सुरक्षित रखना, तथा निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्थाएँ 1 जनवरी 2027 से लागू होंगी। मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यूर क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प पर दुखद घटना में बदल गई। बिजतोंबो निवासी 28 वर्षीय गायल सदाल की कल शाम रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट पर हुई एक घटना में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। एक संदिग्ध स्थिति की सूचना देने वाली गुमनाम कॉल मिलने पर वाली दिप्रत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। उन्हें तुरंत जीतू अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी सर्जरी की गई और बाद में पुलिस निगरानी में भर्ती किया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पुलिस अब तक उनका बयान दर्ज नहीं कर सकी। को ये भी बता देते हैं कि जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि इसी घटना में घायल सादाल भी घायल हुए थे। एक चिकित्सक ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। उनकी मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बीच पोर्टवेस नॉर्थ की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन इस दुखद घटना के सभी पहलुओं की जाँच कर रही है और मामले की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर होने, यानी कि आज हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हालांकि ईरान ने समझौते के समय को लेकर सतर्क रुख अपनाते हुए कहा कि अंतिम तारीख की अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। राय रोड लावंतुआ में, राय रोड लावंतुआ में 83 साल की 43 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रामेश्वरी सीतल, श्रीमती रामेश्वरी सीतल पैदाश्रम जोहरा, जिन्हें मनीषा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनके पति मदन सीतल के घर लावंचा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिट कौंदे मास के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। आवेनी लातानी कैट्रोबोन में, आवेनी लातानी कैट्रोबोन में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्री मिथिलेश्वर बानीमांडब, श्री मिथिलेश्वर बानीमांडब जिन्हें मिथिल सीनियो लेक्चर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो MGI में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके घर कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: गुड मॉर्निंग. एक आंख टीवी पर ऑस्ट्रेलिया और टर्की के लिए और एक आंख यहाँ मल्टीटास्किंग करो. दोस्त फीफा भी है और बॉलीवुड भी. मैं हूँ आपके साथ पूनम आरएम टू रेडियो मस्ती पर. चले शुरू करते हैं अपना बॉली ब्रंच
0: आरएम टू रेडियो मस्ती.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti
1: 9:16 हो चुके हैं और संडे का दिन और 14 तारीख भाई आ गई। क्या बात है फीफा वर्ल्ड कप का जादू चारों तरफ छाया हुआ है। रात को स्कॉटलैंड ने हेटीज को 1-0 से हराया और अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की का मैच चल रहा है, देखते हैं कौन जीता। और सुनिए आज शाम 9 बजे जर्मनी वर्सेस क्रोएशिया को, मिडनाइट को नीदरलैंड और फिर जापान का धमाकेदार मैच होने वाला है। तो अपनी टीम को अगर जिताना है तो काम तो करना है और मुझे पता है आपको रेस्ट भी चाहिए। पर एक बिग शाउट से पहले मैं आपको एक कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक MBC प्ले जो हमारी एप्लीकेशन है अगर उसको डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें सारे मैचेस देखने को मिलेंगे और बहुत ही नॉमिनल प्राइस यानी कि ओनली 300 रुपीज़ में आप देख सकेंगे। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने तो डाउनलोड कर लिया, पर जिन्होंने नहीं किया है और जो अभी भी एक्साइटेड हो रहे हैं कि मैच देखना है तो चलो भाई एक्साइटेड होते हैं। और आपको ये सिर्फ MBC प्ले 1.0 डाउनलोड करना है एप्लीकेशन में। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं हमें 5499-1294 पर। इंजॉय कीजिए क्योंकि जो आप नेक्स्ट मैसेज सुनेंगे विकास की तरफ से वो पूरी डिटेल में है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करते जाइए। इंजॉय कीजिए अपना ये नेक्स्ट गाना।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप 1, सब्सक्राइबर को पहले MBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा TV सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप 2, अब आपके सामने होंगी 2 पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड 1-time पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को

0: डायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर on 5944-6800.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: ऑली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या बात है भाई, धूम मचा ली है हमारे सारे लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर जो है फीफा वर्ल्ड कप का जो मस्ती छाई हुई है पूरे मॉरिशस में, और मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में इस टाइम तो सबकी बस आंखें नजर हैं टीवी के ऊपर। पर कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं हमने टीवी भी ऑन किया हुआ और साथ में हमने रेडियो भी ऑन किया, हम मिस नहीं करना था, चाहते कि हमारा बॉली ब्रंच मिस हो जाए। और ये जो गाने हैं ना, ये हमारा दिन मॉर्निंग मॉर्निंग तो बनाते हैं क्योंकि उसके साथ में हमारी मस्ती जुड़ी होती है। तो चलिए भाई, मस्ती के साथ साथ आपको मॉर्निंग से ही नीलमणि ने मस्ती कराई है, उन्होंने ऐसा फील जगाया कि बस क्या बात करें। तो नीलमणि जो कि बहुत ही अच्छी आरजे हैं और हमारे साथ दे रही थी सुबह से 5 बजे से, और मैं आ गई हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद आपको साथ मिलेगा विदिता का, जो कि होंगी फ्लाक में, और फ्लाक में से हमारे को देंगी बहुत सारी प्यारी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों की। तो बस आप देखते रहिए फीफा वर्ल्ड कप, और मैं यही कहूँगी कि जो भी आपकी टीम हो, अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है तो आप इंजॉय कीजिए, अभी तो सिर्फ मैच देखिए और बस देखिए कि कौन जीतता है कौन हारता है, फाइनल में देखेंगे हमारी टीम कौन सी और कौन सी आपकी है। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये वाला गाना और मॉर्निंग को भी इंजॉय करते हैं साथ साथ।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: नमस्ते, आपका राशिफल आज देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जानते हैं आपका पहला सबसे पहले राशिफल।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, किसी से मुलाकात आपका मूड अच्छा कर सकती है, पुराना काम आगे बढ़ेगा, दिन उम्मीदों से भरा रहेगा, लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 3।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज खुद को थोड़ा सा ट्रीट देने का मन करेगा, मन पसंदीदा चीजों के लिए समय निकालेंगे आप, घर का माहौल अच्छा लगेगा, दिन आराम से गुजरेगा, लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज फोन या मैसेज से कोई खुशी मिल सकती है, नई जानकारी आपके काम आएगी, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, लकी कलर बनेगा येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज दिल से जुड़े लोग याद कर सकते हैं, किसी अपने का साथ आपको मिलेगा, छोटी बात भी मुस्कान दे सकती है, तो दिन ओवरऑल प्यारा रहने वाला है, लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आप जहां जाएंगे नोटिस किए जाएंगे, किसी की तारीफ सुनने को मिल सकती है, मन में उत्साह बना रहेगा, दिन शानदार रहेगा, लकी कलर बनेगा गोल्ड एंड लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज अधूरे काम पूरे करने की ये इच्छा करेगी आपकी, चीजें आपकी प्लानिंग के अनुसार चलेगी, मन ओवरऑल संतुष्ट रहेगा, आप बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं, दिन अच्छा गुजरेगा, लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला,

0: फैशन। आज हंसी मजाक के पल मिलेंगे, दोस्त या परिवार मूड फ्रेश कर सकते हैं, दिल हल्का महसूस होगा और आपको दिन में ऐसा लगेगा कि जैसे कि मतलब सारी खुशियां मिल चुकी हैं। तो लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 4।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी काम आ सकती है आपके और आपको लगेगा कि हाँ ये अगर अपॉर्चुनिटी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सवर सकती है। तो अपने आइडियाज़ पर भरोसा रखिए, नई शुरुआत का संकेत मिल रहा है, दिन यादगार रहेगा। लकी कलर बनेगा मेहरून, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज बाहर निकलने या घूमने का मन करेगा, नए लोगों से मिलना अच्छा लग सकता है, एनर्जी बनी रहेगी, दिन मजेदार रहने वाला है आपका। तो लकी कलर बनेगा पर्पल, लकी नंबर है 9।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज किसी काम की तारीफ मिल सकती है, आपकी मेहनत नोटिस की जा रही है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर, मन में संतोष रहेगा, दिन बढ़िया रहने वाला है। लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है, क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में आएंगे, अपनी सोच खुलकर बताइए किसी को, दिन अलग और अच्छा रहने वाला है। तो बस अगर आपके ऐसा कोई दोस्त है जो आपके दिन को तो बनाएगा बट आपके आइडियाज को भी नोटिस करे, लकी कलर बनेगा इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज म्यूजिक मेमोरीज एंड फैमिली अच्छा फील करा सकते हैं, दिल खुश रहेगा, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना मूड रिफ्रेश कर सकते हैं, दिन सुकून भरा रहने वाला है। लकी कलर है सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो ये था आज का राशिफल, बस इंजॉय कीजिए, चाहे मेरे साथ आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ और साथ में ही फीफा वर्ल्ड कप।
2: योर डेली हॉरोस्कोप आरएम टू रेडियो मस्ती,
3: बॉडी ब्रांच आरएम टू रेडियो मस्ती।

0: ऑली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:54 हो चुके हैं दोस्तों और हम आप जुड़े हैं एक दूसरे के साथ सिर्फ आप ही के रेडियो मस्ती प्रोग्राम के साथ। इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम। तो यहां पर इस समय हमारे साथ ललित जी जुड़े हुए हैं यूएसए से और कह रहे हैं हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं साथ में फीफा वर्ल्ड कप और साथ में हमारा रेडियो मस्ती। कह रहे हैं कि

15 लोग हैं हम लोग यहाँ पर यूएसए में रह रहे हैं इंडिया से, और यहाँ पर जब मोस्टली हम उदास होते हैं तो सिर्फ RM2 रेडियो मस्ती लगाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग तो हमारी बहुत अच्छी आप बना ही देते हैं। थैंक यू सो मच आपका। हरविंदर जी भी जुड़े हुए हैं इंडिया से, कमलेश रानी जी भी साथ दे रही हैं इंडिया से, प्रिया, वनीषा, सुमित, रवीना, विपिन, ग्लेन पार्क से राधा जी, कविता जी, आशा जी, एन हेमलता, एन विनीता जी बोल रही हैं कि आज हमें टाइम मिला है मैसेज करने का, क्योंकि आज है फीफा वर्ल्ड कप और सारे हस्बैंड्स और हमारे बेटे सारे टीवी के सामने बैठे हैं और हम घर के काम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं उन सब के लिए, पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा मॉर्निंग आप बना रहे हैं पूनम जी, तो थैंक यू। तो मैं तो आपको कहूँगी थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, इतना इंपॉर्टेंट डे है सभी के लिए, पर आपने एक आंख हमारी तरफ रखी हुई है, तो बस ऐसे ही हमारे साथ चलते रहिए, इंजॉय करते रहिए। इसके बाद आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। RM2 Radio Masti.

0: time to Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
2: टाइम चेक सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं आशिता से संक्षिप्त समाचार। आशिता आपको नमस्कार।
3: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। हर वर्ष आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो रक्तदान के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचाने में योगदान देते हैं। साथ ही ये अवसर नियमित रक्तदान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है ताकि मरीजों की लगातार बनी रहने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। रक्त ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई गंभीर बीमारियों के उपचार और जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मॉरिशस की एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी ने स्वास्थ्य पेशेवरों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने दूसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। डॉक्टर जीतू अस्पताल की गायनेकोलॉजी विशेषज्ञ और संघ की सचिव डॉक्टर वंदना बक्तावा के अनुसार भारत, फ्रांस और अफ्रीका से आए कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे प्रसूति एवं स्त्री रोग के क्षेत्र में नवीनतम सिफारिशें और सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धतियों को साझा कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मॉरिशस में महिलाओं को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार करना तथा महिला स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के आदान प्रदान के माध्यम से ये सम्मेलन मॉरिशस के स्वास्थ्य पेशेवरों को नई जानकारी और आधुनिक चिकित्सा ज्ञान प्रदान करेगा जिसका सीधा लाभ महिलाओं के स्वास्थ्य को मिलेगा। और एक बार फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। आपको हम बता देते हैं कि सुबह 8 बजे ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ तुर्की के खिलाफ के साथ और स्कोर रहा 2-0, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल दागे और तुर्की 0 रहा। ग्रुप बी में हम आपको याद दिला देते हैं कि जर्मनी खेलेगा क्यूरासाओ के साथ। ये कह सकते हैं कि दिलचस्प मैच होने वाला है। और रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका, ईरान और मध्यस्थ देशों के नेताओं तथा वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित शांति समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये आश्वासन दिया है कि आज रविवार को इस शांति वार्ता पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कूटनीतिक वार्ताएं अब एक ऐसे समझौते पर केंद्रित हैं जो दोनों देशों के बीच जारी तनाव व संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि समझौता अभी अंतिम रूप से हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, जबकि दोनों पक्षों ने बातचीत में प्रगति स्वीकार की है। और स्पेस एक्स के शेयर्स में बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद आई भारी तेजी के चलते एलन मस्क के दुनिया के पहले खरबपति यानी कि ट्रिलियनेयर बनने का दावा किया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक वित्तीय और कारोबारी जगत का ध्यान आकर्षित किया है तथा एक बार फिर एलन मस्क की संपत्ति और उनके व्यावसायिक साम्राज्य को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। साथ रहिए, हम सुन पाएंगे शुभ समाचार। शुभ समाचार सुनिए। अवनी लतानी कैट्रोबोन में 74 साल के 74 के श्री मिथिलेश्वर बनी मांडव, श्री मिथिलेश्वर बेनी मांडव जिन्हें मिथिल सीनियर लेक्चरर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे जो एमजीआर में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके घर कैट्रोपोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे हाफ पॉ 3 PM। टेम्पल रोड रिविया जोरांपा में 73 साल के 73 के जनाब अब्दुल असलम भोला, जिन्हें असलम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान रिविया जोरांपा से उठाकर दफनाने के लिए का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: ओली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:10 हो चुके हैं और फीफा वर्ल्ड कप की ताज़ा खबर ये है कि जो मैच सुबह 8 बजे शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया बीच में हुआ था टर्की के, वो अब ख़त्म हो चुका है और जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से, शानदार जीत, और ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन

0: ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जादू अभी जारी है और हम इंजॉय कर रहे हैं ये सभी लोग, सारे पूरे वर्ल्ड में ये लोग इंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम भी और साथ साथ में फीफा वर्ल्ड कप। और सबको स्कोर की कहते हैं ना कि वो चाहत होती है कि कौन हमारी टीम जीते और कौन किसकी हारे, तो ये चलता रहेगा। अभी तो सालों ने अभी तो शुरू किया है बस। और अब हम इतना ही कहेंगे आपको कि आज जो रात को प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने गाने, और जो जो काम करने हैं उसको पेंडिंग मत छोड़िएगा, साथ साथ करते रहिए, क्योंकि यही तो है जादू।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: 10:19 हो चुके हैं और हम हैं आपके साथ RM2 रेडियो मस्ती के साथ में और ये है आपका ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच। मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो भाई हम भी सोच रहे थे स्क्रीन पे क्यों नहीं इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रोज तो धड़ाधड़ आते रहते हैं, पर आज क्या हो गया। पर हमें फिर बाद में याद आया, अरे हाँ फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है भाई सारे लड़कों की। तो और आज में तो मुझे ये भी लग रहा है कि लड़कियों को भी इंटरेस्ट आ रहा है, पहले इतनी चीज़ें नहीं समझ आ पाती थी, अब हम खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि एक तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और वैसे भी मज़ा आता है भाई, वर्ल्ड कप चलता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए भाई हम भी आपके मैसेजेस जो आप लोगों ने इतनी देर के बाद भेजे हैं मुझे उनको भी दो तीन पढ़ लेते हैं। दिशा है जो कि अपने हस्बैंड पुष्कर को सिर्फ जो कि पुलिस ऑफिसर हैं उनको बस ये कहना चाहती हैं कि ऑफिस में तो तुम बड़े स्ट्रिक्ट लगते हो पर घर में जब आते हो तो तुम्हारा दिल मोम का हो जाता है, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। सो नाइस ब्यूटीफुल मैसेज दिशा, मैं तो कहती हूँ आप दोनों को नजर ना लगे, हमेशा खुश रहो। तो धनवेश्वर जी जुड़े हुए हैं अपनी वाइफ सुनीता जी के साथ में, संजीव, निशा, मीना, ऋषि, रानी और सभी के साथ में इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। आशवंती जी जो कि बेल्जियम से हैं वो कह रही हैं जब भी मेरे घर में RM2 रेडियो मस्ती चलता है मुझे फिर काम करने की टेंशन नहीं होती है, काम अपने आप होते हैं। ये मुझे भी पता है, जब गाने चलते हैं तो ऐसे ही होता है। मैम थैंक यू सो मच आपका जुड़ने का। और साथ में अब्दुल और सायरा

0: भी हैं वो भी इंजॉय करें, और साथ में ये कह रहे हैं अब्दुल जी कि सायरा तुम बहुत खास हो। एक इंडस्ट्री में मैंने सायरा बानो सुनी थी और एक तुम मेरी जिंदगी में आई हो। कहते हैं मैं दिलीप कुमार जैसा फील करता हूँ। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। आपको दिलीप कुमार जैसा ही लगना चाहिए, तभी तो सायरा बानो देखो कितना प्यार करती थी उनको। तो हैप्पी संडे भी विश कर रहे हैं, और मनीषा अपनी बेटी अवनी को और हस्बैंड रोशन को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि भैया दिल में सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में चाहिए होती हैं, बट बेटी जैसी कोई नहीं।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
0: Bolly Brunch, RM2, a Radio Masti.
2: चलो जी, फैशन की बात करें तो हमें बस बहुत ही छोटी छोटी कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में जो पड़ी होती हैं, बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसको भी यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि फ़ैशन ये नहीं कि बाहर से ख़रीदा और लेटेस्ट है तो ही यूज़ करना है या पहनना है। तो हम कई बार ऐसे करते हैं कि पुरानी चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने मम्मी के पास जाना है, उनको पटाना है, उनको कहना है कि आपके पास क्या पुरानी कोई एंकलेट यानी कि पाजेब है। अगर उनके पास कोई पाजेब है जिसमें घुंघरू लगे हैं या कोई भी डिज़ाइन है, आपने उनसे लेना है, उस पाजेब के दोनों साइड्स जो है उसके जो हुक होते हैं उसमें से वो हुक्स निकाल देने हैं, उसमें सिर्फ होल्स होने चाहिए। उसमें आपके दोनों पाजेबों को इकट्ठा कीजिए, उसके साथ में दोनों होल्स जो साइड में होंगे लेफ्ट एंड राइट पे, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल मार्केट से थ्रेड लेकर आइए, उसको थ्रेड लगाइए। कई बार आजकल हुक्स वाले भी थ्रेड्स आते हैं, तो बस आपको थ्रेड लगाना है दोनों तरफ और आपको वो रेडी हो जाएगा आपका चोकर। यानी कि आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी भी जगह जाना है, तो बस वो चोकर डालिए, देखिएगा साथ में एक सिल्वर के प्यारे से टॉप्स या हैंगिंग्स कुछ डाल लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पाजेब पहनी है या आपने, कई बार लोगों को गिफ्ट्स भी मिलते हैं वेडिंग्स पे पाजेब, तो बस आपने निकालनी है, पुरानी चीज़ें ढूंढो और पहन लो। इंजॉय कीजिए आपका ये फैशन टिप और साथ में आपके गाने।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: RM2 Radio Musti.
1: आरव, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है, आपने दरखास्त की थी, ये

0: ऑलिव ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या बात है, अरिजीत सिंह की आवाज और सुनीता चौहान की, सुनिधि चौहान की आवाज में तो मस्त हो जाता है ये गाना। ये पसंद थी आरव की, आरव ने कहा प्लीज ये गाना जरूर चलाइएगा, तो चलो भाई हमने भी चला दिया। साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय ललिता जीतन जी, जो सभी कलीग्स को कह रही है सोना नहीं, और रीमा, सोनी, लीना, पिंक, स्मिता, राहुल एंड सिनिका एंड आश्ले को ये कह रही है कि बस अब जो है काम करना है, घर के कोई नहीं सोएगा, और सब एक दूसरे को मैसेज करके बताएंगे कि किसने किसने क्या क्या काम कर लिया। क्या बात है, ये बहुत अच्छा मैसेज था। बस ऐसे ही मैं कहती जा रही हूँ, जो भी फुटबॉल लवर्स हैं ना, जो अभी सोने के प्लान में हैं, बिल्कुल मत सोइएगा, काम कीजिएगा। साथ में ऋषि विदेशी जी हैं और कह रहे हैं एक रॉकिंग सा गाना चला दीजिए मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए और सभी की मूडी गर्लफ्रेंड्स के लिए और फुटबॉल लवर्स के लिए। क्या बात है भाई, सबकी मूडी गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, कभी भी मूडी नहीं होती हैं। चलो फिर भी हम आपके लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाएंगे ऋषि जी। साथ में निशिका है और केशव। निशिका ऑस्ट्रेलिया से आई हैं और केशव फिजी से आए हैं और दोनों मॉरिशस में शादी करने के लिए आए हैं। ऑलरेडी वो एक कपल हैं, ब्यूटीफुल कपल हैं, उनको भी हम सभी विश कर रहे हैं। सारा परिवार कह रहे हैं कि ये दोनों इतने अच्छे हैं ना, इनको देख के ऐसा लगता है कि शायद सारी ज़िंदगी का जो प्यार है ना, इन दोनों में भर दिया है। तो हम सभी जने इनको विश कर रहे हैं, उनका परिवार विश कर रहा है, सब स्पेशली उनकी मम्मा कह रही हैं कि ये हमेशा खुश रहें और बहुत प्यार मिले इनको, कोई भी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ ना आए। तो भाई ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। तो हम भी विश करेंगे पूरी MBC की टीम की तरफ से निशिका और केशव को, शव को, कि भाई आप इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को और खुश रहिए। मॉरिशस बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर जो हनीमून है ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलो इंजॉय करते हैं आपके गानों के साथ, ये आपका प्यारा कहते हैं ना मस्ती वाला गाना, चलो चलाते हैं ये वाला।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: का संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। गुरुवार को ये कहा गया था कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता होने के करीब है, जबकि उससे कुछ घंटे पहले लगातार तीसरी रात होने वाली हमलों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इस संघर्ष का सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मॉरिशस के लिए तस्वीर चिंताजनक बताई जा रही है। एमसीबी की पहली रिपोर्ट के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर में कमी, महंगाई में बढ़ोतरी और पर्यटन क्षेत्र में सुस्ती देखी जा रही है। इसका असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि आम लोगों की क्रय शक्ति, होटलों और घरेलू खर्चों पर भी पड़ रहा है। हम आपको याद दिला देते हैं कि सबसे अधिक असर पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है। वर्ष 2025 में लगभग 14 लाख पर्यटकों के रिकॉर्ड आगमन के बाद अब रुझान बदलता दिखाई दे रहा है। मार्च से मई के बीच पर्यटकों की संख्या में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई है। हवाई टिकटों की कीमतों में औसतन 25% की बढ़ोतरी हुई है और बुकिंग में भी कमी दिखी जा रही है। महंगाई भी फिर से बढ़ने लगी है। ईंधन, गैस, ब्रेड, बिजली जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। एमसीबी का अनुमान है कि दिसंबर तक महंगाई दर 5.7% तक पहुंच सकती है। इस संकट का सामना केवल मॉरिशस ही नहीं कर रहा है। सेशल्स में मार्च के दौरान पर्यटकों की संख्या में 37% की गिरावट दर्ज की गई। मेलागास्कर में अप्रैल में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करना पड़ा, जबकि मालदीव्स की आर्थिक वृद्धि इस वर्ष घटकर 2.5% रहने का अनुमान है। 20 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डेकेयर सुविधाओं की चुनौतियों पर केंद्रित एक संगोष्ठी का आयोजन कुदो आर्ट्स सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, देखभालकर्ताओं और अधिकारियों ने मिलकर एक अधिक समावेशी, मानवीय तथा आत्मनिर्भर समाज की आवश्यकता पर जोर डाला। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं, अमेरिका और ईरान तथा मध्यस्थ देशों के नेताओं तथा वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित शांति समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। कूटनीतिक वार्ताएं अब एक ऐसे समझौते पर केंद्रित हैं जो दोनों देशों के बीच जारी तनाव और संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के मसौदे के अंतिम पाठ पर सहमति बन चुकी है और अगले चरणों की अंतिम रूप देने पर काम जारी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रायरो लावंतुआ में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रामेश्वरी सितल पैताश्याम जोहरा, जिन्हें मनीषा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनके पति मदन सितल के घर लावंचा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदेमास की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप 1, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप 2, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आप

आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन।

0: ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: दिन काम करना है तो हम ऐसे गाने चलाते हैं जिसके अंदर आपके दिल में कहते हैं ना कि एक जोश सा भर दे, और काम भी करने को बहुत सारे होंगे क्योंकि भैया संडे है और फिर कल मॉर्निंग में हो जाएगा मंडे। सबको तो छुट्टी नहीं मिलती, सब लोग तो कहते हैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को जाना है, साथ में अपना फीफा वर्ल्ड कप भी इंजॉय करना है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट करते रहिए, साथ में देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। चलिए भैया थोड़ा सा हम एक प्यारा सा टिप दे देते हैं। किसी ने बोला कि हमको मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं तो उसका क्या कर सकती हैं, तो भैया हम तो आपको एक सिंपल सा आइडिया देते हैं और आपको भी बड़ा मजा आएगा, और जो इस समय हमें लिसनर्स सुन रहे हैं उनको भी ये ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी पसंद की साड़ी है, जो बहुत ही सुंदर साड़ी हो, जिसको आपने पहननी नहीं है, कभी नहीं पहननी और किसी का देने का भी दिल नहीं कर रहा, उसको बिल्कुल मत फेंकिए, उसको बिल्कुल मत खराब कीजिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसे डाइनिंग टेबल का रनर बना सकते हैं। जैसे आपने उसमें डाइनिंग टेबल के ऊपर एक क्लॉथ बिछाते हैं, एक तो नॉर्मल होता है, एक सिंपल सा बीच में एक लंबा सा रनर होता है, तो उसको एक शेप दीजिए, अच्छी सी शेप दीजिए, जहाँ से भी आपको एक प्यारी सी, जैसे भी आपको शेप पसंद है उसको कट कीजिए। उसके पीछे जो है एक आपको हैवी क्लॉथ लगाना है, मतलब सिंपल सा बाय कीजिएगा उसी मतलब क्या कहते हैं साइज का, और उसको स्टिच कर दो साइड से, और बस वो आपका रेडी हो जाएगा टेबल रनर। और जो भी घर आएगा ना आपसे बस यही पूछेगा, अरे भैया ये कहाँ से लेकर आए, और आपने सिर्फ मुस्कुरा के बस इतना ही कहना है, अरे घर से ही निकाला। और कभी कभी कहते हैं ना कि लड़कियाँ तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो इन्जॉय कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा है तो अपने दोस्तों को भी बांटो बना बना के।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:11 हो चुके हैं दोस्तों, और ये जो गाने होते हैं ना, ये आपको बूस्ट तो देते हैं, क्योंकि आपको पूरे

0: प्रॉब्लम।
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: RM2 Radio Musti.
1: जुबिन की आवाज़ हो और मस्त गाना हो और ऐसा सुहाना मौसम हो बाहर, तो और क्या चाहिए। इंजॉय कीजिए आपका ये गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में।

0: रेडियो मस्ती।
1: और अब चलते हैं स्टूडियो से बाहर, जहाँ है हमारी वेदिता और वो है इस समय फ्लैक में। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। वेदिता आपके लिए क्या लेकर आई है। हाय वेदिता।
2: हेलो पूनम एंड हेलो टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, आप सोच रहे हैं कि वेदिता अभी स्टूडियो से बाहर निकल कर कहाँ गई हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस कि इस समय हम लोग हैं आर्ट के द्वील, यहाँ पर जो मॉल है बिल्कुल यहाँ पर एंट्री के पास है। एंड अगर आप लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रहे हैं तो आप लोगों को दिख जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक पूरी टीम बैठी हुई है। एंड हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको पता है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इतने सारे मैचेस हैं। आप सारे मैचेस तो आप टीवी पे देख नहीं सकते, तो क्या होगा, इसे आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, एमबीसी प्ले 1.0। हमने पहले ही आपको बताया था कि इसे, इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। वंस आपने डाउनलोड कर दिया, फिर उसके बाद आपको अपने ईमेल के साथ एक अकाउंट खोलना होता है, और फिर उसके बाद आप जो है वो बाकी के जो काम है, यानी कि पेमेंट करना, और सिर्फ 300 रुपीज में आप सारे के सारे मैचेस कभी भी देख सकते हैं, यानी कि एक मैच भी आप मिस नहीं करेंगे। तो इसके सारी डिटेल्स आपको देने के लिए, कई सारे लोग हैं जो क्या होता है ना कि उनको आता नहीं है कि भाई मैच तो देखना है लेकिन हमें नहीं आता, कैसे रजिस्टर करें। इसीलिए हमारी एमबीसी की पूरी टीम, एक्सपेशली हमारी जो मार्केटिंग टीम है, आज हमारे साथ है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। वैसे भी आज संडे है, और संडे जो होता है घर बैठे फंडे नहीं होता है, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है।
1: क्या बात है।
2: All you have to do is to come to meet us at Kedavil Flag, जहां पर हम पूरी रेडियो मस्ती और रेडियो मस्ती टीम और साथ में यहां पर जो हमारी मार्केटिंग टीम है आपके लिए बैठे हैं। तो यहां पर आप आ सकते हैं, ये लोग आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे भी कि कैसे होता है ये रजिस्टर, और फिर उसके बाद आप अपने मोबाइल पे ये मैचेस देख सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम यहां पर होगी 2:30 तक, सो यू हैव टाइम। घर का काम काज हो गया, लंच वंच हो गया, या तो फिर आप बाहर लंच करने आए हैं, या तो फिर आप इधर मॉल में हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, या तो आप फ्लैग के आसपास में हैं, प्लीज कम एंड मीट अस। हम ज्यादा दूर नहीं है, वी आर केदवील। तो म्यूजिक भी होगा, मस्ती भी होगी, और यहां पर वर्ल्ड कप के लिए जो मैचेस आपके लिए रखे गए हैं जिसे आप मिस नहीं करना चाहते, तो उसके लिए किस तरह से आप एमबीसी प्ले 1.0 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये इसके लिए हेल्प करने के लिए हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। तो चलिए म्यूजिक के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं।
1: Right, thank you. Radio Masti. You're

Jay.

0: आपका स्वागत
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Yes, my dear friends, welcome to Radio Masti. हम है live Radio Masti पर, लेकिन कहाँ से हम live है? हम है live from Kyodhuville, जहाँ यहाँ पे जो बड़ा सा मॉल है, इसमें इतने सारे लोग आते हैं संडे के दिन enjoy करने आते हैं, भाई क्यों नहीं? Weekdays में तो काम होता है, बस एक Saturday Sunday मिलता है, Saturday में भी half day काम करना पड़ता है, तो Sunday को fun day बनाने के लिए आपके पास कई सारे मौके आते हैं, तो आप लोग घूमने निकल जाते हैं। अब एक काम अगर हम ये करें कि एक से दो निशाने हो जाए, तो आप लोगों को घबराहट हो रही थी, आप परेशान हो रहे थे कि भाई हमें वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे मैचेस हमें देखने हैं। अब वो मैचेस आप सारे के सारे देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन इसके लिए MBC की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेटर ऑप्शन। आप देख सकते हैं हमने लॉन्च किया है MBC प्ले 1.0, और इसके चलते आप यहां पर जितने भी मैचेस हैं सारे के सारे देख सकते हैं, एक मैच भी आप मिस नहीं करेंगे। करना क्या है आपको, हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, और आपको पता ही है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपका ईमेल, आपका पासवर्ड लगा के आप जाएंगे, इसको आप डाउनलोड करेंगे, फिर अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ये देखिए हमारी मार्केटिंग की पूरी टीम यहाँ पर हुई है, बैठी है, आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं, तो इनका काम ही है कि आपको बताएं कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आप सारे मैचेस एंजॉय कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारे दोस्त हैं मार्केटिंग से चेतन, और हाय चेतन, से हाय टू हेलो टू एवरीवन। ऑलराइट, और साथ में हमारे हैं हमारे एक और दोस्त, हाय अपना नाम बताइए।
4: मुजाकिया, हेलो एवरीवन।
3: ऑलराइट, देखो एक और दोस्त बैठे हैं, नाम

0: दादू भाई
1: धावन।
0: और राइट, तो देख सकते हैं ना कि आप यहाँ पर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है और आपकी मदद कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्ते, आपका नाम?
2: मितिदेश।
0: कहाँ रहते हैं आप?
2: जिदोरोज।
0: जिदोरोज, और आप भी यहाँ पर जो ऐप है उसके बारे में जानना चाहते हैं, है ना?
2: हाँ।
0: तो आप फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे?
2: मैं पसंद हूँ।
0: तो सारे के सारे मैचेस देखने, आपको एक भी मिस नहीं करना?
2: आई लाइक।
0: ओके, यू लाइक फुटबॉल। चलिए इनसे भी बात करते हैं। हेलो सर, नाम क्या है आपका?
3: फुली सुजात।
0: अच्छा जी, तो आपने अभी पूरी जानकारी ले ली आपने कि क्या करना है?
3: हाँ, हो गया हो गया हो गया, सब पूरा हो गया।
0: सब पूरा हो गया। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
3: फ्रांस।
0: फ्रांस, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
2: फ्रांस।
0: फ्रांस वालों, ओह माय गॉड। चले तो यहाँ पर देखते हैं बाकी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तो टीम है ही यहाँ पर। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, हम हैं आर्क द विल मॉल। अगर आप लोग आसपास में हैं तो आप आ सकते हैं और आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आपको MBC प्ले जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ आप सारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं देख सकते हैं। तो मिलते हैं गाने के बाद। वेटिंग फॉर यू।
4: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: बन जाएगी ये बन जाएगी रे तेरी दुल्हनिया।
2: ऑलराइट गाइस, सो अब भूलिएगा नहीं कि हम लोग हैं इस समय लाइव फ्रॉम केडविल सेंटर फ्लैग। मिलते हैं थोड़ी देर में समाचारों के बाद।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: आप सभी को नमस्कार है. चेक योर टाइम. दिन के ठीक 12 बजे हैं. सुनते हैं समाचार अर्शिता के साथ. आपको नमस्कार अर्शिता.
6: नमस्कार हंसिनी. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. गजीदा उस्लाकिया में कल शाम हुई हिंसक घटना में 28 वर्षीय गायल सदाल की जान चली गई. उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं. बिजतोंबो के रहने वाले गायल सदाल पर रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट में कथित हमला किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. पुलिस द्वारा जुटाई गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि

मी में गुरुवार को हुआ एक विवाद बताया जा रहा है। जांचकर्ताओं के मुताबिक गायसादाल एक गली में अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहे थे, तभी कथित रूप से मोहम्मद शेख बुलाकी की मां से उनका संपर्क हुआ और उन्हें धक्का लग गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि अगले दिन यानी कल ये तनाव गंभीर झड़प में बदल गया। उसके चलते इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। घटना में घायल हुए 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी का ऑपरेशन किया गया और उन्हें पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती रखा गया है। पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। पोर्टरिस के M1 राजमार्ग पर आज तड़के हुए एक सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय योहान पासों की मृत्यु हो गई। पिटरविया के रहने वाले योहान पासों का शव सड़क पर अचेत अवस्था में मिला, जबकि उनकी मोटरसाइकिल उनसे लगभग 30 मीटर दूर पड़ी हुई थी। सूचना मिलने पर लाइन बैरक्स पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। जांचकर्ताओं द्वारा सेफ सिटी निगरानी प्रणाली के फुटेज का अवलोकन करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल चालक ने अपने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे लोहे के सुरक्षा बल बैरियर से टकरा गई। फ्रांस के सैंडोनी कोरेक्शनल ट्राइब्यूनल ने रेनियन और मॉरिशस के बीच संचालित बड़े पैमाने के कैनाबिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मॉरिशस के कुछ नागरिकों सहित कुल 12 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। आरोपियों पर रेनियन से मॉरिशस तक सैकड़ों किलोग्राम कैनाबिस की तस्करी करने का आरोप था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत कई मिलियन यूरो बताई गई है। ये मामला वर्ष 2022 में की गई एक बड़ी जब्ती कार्रवाई के बाद सामने आया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थों की खेप को बरामद किया था। अदालत के फैसले के साथ इस बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। एक बार फिर हम इसको बात करते हैं फुटबॉल के स्कोर के बारे में। फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेली गई मैचों का स्कोर रहा। ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड का ड्रॉ रहा 1-1। आज सुबह 2 बजे ब्राजील का सामना हुआ मोरक्को के साथ, स्कोर रहा 1-1, ये भी ड्रॉ। और आज सुबह 5 बजे खेली गई ग्रुप सी में हाइची स्कॉटलैंड का स्कोर रहा हाइची 0-1। और ग्रुप डी में 8 बजे आज सुबह ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ तुर्की से, और स्कोर रहा ऑस्ट्रेलिया 2-0। आज रात 9 बजे हम आपको याद दिला देते हैं कि ग्रुप ई में जर्मनी खेलेगा क्यूरासाओ के साथ, और ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान रहेगा रात के 12 बजे, और कल सुबह 3 बजे आइवोरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टर्मर ने बताया कि ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने रविवार की इंग्लिश चैनल में रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर को रोककर उस पर कार्रवाई की। लगभग 6 घंटे तक चले इस अभियान में रॉयल मैरीन्स के कमांडो, नेशनल क्राइम्स एजेंसी के विशेष रूप से प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन अधिकारियों तथा रॉयल एयरफोर्स के सहयोग से जहाज पर चढ़े। ब्रिटेन की सुरक्षा के रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्मिथस नामक इस जहाज को इंग्लैंड के दक्षिण तट के निकट निगरानी में रखा गया है, जबकि मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि ये फैसला अभियान रूस के खिलाफ एक और बड़ा झटका है और उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो यूक्रेन युद्ध को समर्थन देने में भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें छिपने नहीं दिया जाएगा। ब्रिटेन का आरोप है कि रूस अपने तेल निर्यात पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए शैडो फ्लीट नामक टैंकरों के नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ में सुन पाएंगे शोक समाचार। कॉम्बानान ग्रांबोआ में 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वरनाथ सिंह सुंदर जिन्हें सचिन के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी मां लीलावती सुंदर के घर ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्राणमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 10 AM कश्मीर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के

59 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश बिहारी जिन्हें चिंग के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉबर्ट कैनेडी स्ट्रीट रेनियो मोरेल पोटी राफ्रेमे 81 ईयर्स

0: पर चगाफर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to Radio Masti.
2: RM2
1: Radio Masti.
2: Feel the Masti. RM2
1: Radio Masti.
3: All right, my dear friends, welcome to Radio Masti. Once again, मैं आपको बता दूं, मैं हूं वेदिता और मैं हूं live from Kyodivil Mall. और आप सोच रहे होंगे कि Radio Masti की टीम बाहर क्या कर रही है? तो हम लोग यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आपको details देना है हमारे MBC Play के बारे में. MBC Play, अब आप सोचेंगे कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी चल रही है World Cup के matches. Matches शुरू हो गए हैं और आप अगर miss नहीं करना चाहते हैं एक भी मैच, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमारा जो MBC Play है, आपको इसे डाउनलोड करना चाहिए. हमारा जो पुराना MBC Play है वो आपके पास होगा, लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अभी हमारा नया MBC Play 1.0. इसके चलते क्या होगा कि ये जो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आप को करना क्या है, आपको अपना एक अकाउंट खोलना है, फिर उसके बाद आपको रजिस्टर करना है. आपको आपका ईमेल होगा, आपका पासवर्ड होगा, आप डालेंगे, फिर उसके बाद आप टीवी ऑप्शंस पे जा सकते हैं. एंड हमारे लिए तो बहुत ही आसान है आपके लिए ये काम करना, इसीलिए हमारी टीम जो है आज MBC से हम लोग स्टूडियो से निकल कर आए हैं आर्ट क्योदिवील, ताकि यहाँ पर आपको अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही है ना, ये हम चुटकी में इसका हल निकाल लेंगे. यानी कि आप बस आओ, आपके मोबाइल से हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा. एंड आई कैन सी यहाँ पर काफी सारे लोग हैं. हेलो जी, नमस्ते.
4: नमस्ते.
3: आपका नाम?
4: फजाना.
3: आप अभी नौकरी से आ रही हैं या?
4: नौकरी से.
3: और आपको फुटबॉल पसंद है?
4: थोड़ा थोड़ा.
3: लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर दोनों लड़कियाँ यहाँ पर, वो ये कौन है?
4: मेरे बेटी.
3: Oh my God, इनको फुटबॉल इतना पसंद है. हाय, व्हाट्स योर नेम?
5: आलिया.
3: आलिया भट्ट? नहीं, आलिया भट्ट से ज्यादा खूबसूरत हो आप. आपका नाम?
5: अश्मीरा.
3: अश्मीरा, सो यू गर्ल्स लाइक फुटबॉल?
5: नॉट रियली.
3: लेकिन आप यहाँ पर सीख रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, किसके लिए? पापा के लिए?
5: नहीं, नाना के लिए.
3: नाना? नाना का क्या नाम है भाई?
5: मामूद.
3: नाना मामू, देखो आपकी नातिन यहाँ पर आपके लिए MBC Play डाउनलोड कर रहे हैं ताकि आप घर पे मैच देख सके. और नाना का फेवरेट
4: कौन? अर्जेंटीना.
3: नाना को अर्जेंटीना पसंद है? ओ माय गॉड. चलिए, तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, अपने अपने फेवरेट टीम के बारे में बता रहे हैं हमें. एंड लगता है नाना के साथ बैठे बैठे आपको भी थोड़ा सा फुटबॉल का
5: थोड़ा सा.
3: और आप किसको सपोर्ट करोगे? नाना को?
5: नहीं, मैनचेस्टर.
3: मैनचेस्टर के लिए? ये तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो यहाँ पर तो. हाँ, नहीं, अच्छा आप मैनचेस्टर हो. इन्होंने लिवरपूल बोला था.
5: नाना लिवरपूल है.
3: अच्छा, नाना लिवरपूल है, आप मैनचेस्टर हो. क्या यार, घर में इतने सारे. चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें तो आपको पता है कि जो देश है उनके जितने भी फुटबॉलर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को. एंड अर्जेंटीना नाना को पसंद है तो ठीक है. सो आपको समझ में आया, इन्होंने बताया आपको क्या करना है?
5: हाँ हाँ,
3: आसान से सब हो गया ना?
5: या आसान है.
3: आसान है, सी, बहुत इजी है. करना क्या है, आपको बस हमसे मिलने आना है. और हम हैं एट क्योदिवील मॉल, बिल्कुल एंट्रेंस के पास में है. हमारी टीम यहाँ पर है, हम म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पर हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं अपना जो MBC Play है 1.0, तो किस तरह से आप MBC Play डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको पेमेंट करना होता है. सिर्फ 300 रुपए में आप सारे के सारे जो मैचेस हैं वो एंजॉय कर सकते हैं. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू रेडियो Masti. हमारे जो पूनम जी हैं उनको धन्यवाद देंगे. अभी हमारे साथ हंसिनी जुड़ गई हैं एंड सारी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें. अगर आप फ्लैक में कहीं भी आसपास में हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, प्लीज़ कम एंड हमसे पूछिए भाई क्या करना है. हम बैठे यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भी देंगे और आपके लिए डाउनलोड भी करेंगे. ठीक है, लेट्स गेट गोइंग विद सम गुड म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो Masti.
1: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: वेलकम टू रेडियो मस्ती. हम है लाइव फ्रॉम कैदुविल. यस माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल कैदुविल मॉल जो है यहाँ पर एंट्रेंस के बिल्कुल हम लोग पास में हैं. और आप लोग अगर आज शॉपिंग के लिए आ रहे हैं या तो फिर आप लोग ऐसे ही निकले हैं बाहर घूमने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप लोग आकर जो हमारा MBC प्ले का ऐप है 1.0, इसको डाउनलोड करके आप वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं अगर आप एक भी मिस नहीं करना चाहते, उसको देखना चाहते हैं, सो यू कैन कम एंड मीट अस. काफी सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं. ओह माय गॉड, वाओ, यहां तो पार्टी चल रही है. यस, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहां पर आज फ्लैग में घूम रहे हैं. अब अगर आप ऐसे ही प्यार करते हैं म्यूजिक के साथ, तो म्यूजिक तो हमारे पास है ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको देने के लिए सारी डिटेल्स भी हैं कंसर्निंग द MBC प्ले 1.0 ऐप. तो इसके साथ आप सारे मैचेस देख सकते हैं. सिर्फ 300 रुपये में आप सारे के सारे मैचेस देख सकते हैं. एक भी मैच आप मिस नहीं करेंगे. और उसके लिए अगर आपको लगता है कि भाई हमें जो है हम नहीं जानते कि कैसे हमें इसको डाउनलोड करना है, कैसे पेमेंट करना है, तो आप आ जाइए. अगर आप फ्लैग के आसपास में हैं, वैसे तो आप MBC भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लैग के आसपास में रहते हैं तो आज संडे है भाई, संडे में लोग फ्री होते हैं. यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं आपकी मदद के लिए, और ये आपके लिए ये जो ऐप है डाउनलोड भी कर लेंगे और साथ ही साथ आपको बता देंगे कि कैसे आप इसको अपने TV के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. यानी कि घर बैठे आप हमारे MBC ऐप जो है MBC प्ले 1.0, इसके चलते आप सारे के सारे मैच देख सकते हैं. अब आप किसको सपोर्ट करते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन डेफिनेटली आप अपने मैचेस मिस नहीं करना चाहते. इसके लिए क्या करना है, आपको चाहिए कि आप डाउनलोड करें MBC प्ले 1.0. और हम आपकी मदद के लिए आए हैं आज स्टूडियो से बाहर अपने पूरी MBC टीम के साथ टू एक्सप्लेन टू यू कि आप अपने मोबाइल पे कैसे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इस ऐप के साथ आप जो है एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट हो गया, पेमेंट कैसे करनी है. हाय, ऑलराइट, तो यहाँ पर काफी सारे लोग चल रहे हैं, गाड़ी में हैं, थैंक यू सो मच. क्या बात है, हमारे जो MBC है ना, रेडियो मस्ती के बहुत सारे फैंस हैं. हाय बाय, तो आप लोग भी अगर चाहे तो हमसे मिलने आ सकते हैं जैसे बाकी लोग मिलने आते हैं. हाय, ओह माय गॉड, फ्लाइंग किस भी दिया, थैंक यू. वो रेडियो में भी रेडियो मस्ती सुनते हैं भाई, तो यहाँ पर आप भी आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं. और अगर आपको MBC प्ले 1.0 इसको डाउनलोड कर दिया है और कैसे आप लोग ये वर्ल्ड कप के मैचेस देख सकते हैं, इसके बारे में हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं. आइएगा जरूर, हमसे मिलिएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं जी. आप आइए, हम आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड भी कर देंगे आपके लिए, सब कुछ कर देंगे. बस घर जाना है आपको और इसे कनेक्ट करना है अपने TV के साथ और देखना है अपनी फेवरेट टीम को मैच खेलते हुए. म्यूजिक के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.
3: We are the sounds of the streets.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: रेडियो मस्ती लाइव फ्रॉम फ्लैक क्योदेविल. बिल्कुल हम हैं यहाँ पर आपके साथ आज स्टूडियो से बाहर, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वर्ल्ड कप के कोई भी मैच को मिस ना करें. एमबीसी प्ले, यस, सब एमबीसी ने लॉन्च किया है अपना एमबीसी प्ले 1.0, जहाँ पर आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आप सिर्फ 300 रुपये में देख सकते हैं वर्ल्ड कप के सारे मैचेस. अब कोई नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा, कोई नहीं बोलेगा कि अरे मैंने ये वाला मैच मिस कर दिया. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. जब हम हैं आपके साथ तो फिर डरने की क्या बात. जी बिल्कुल, आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए फ्लैक क्योदेविल. और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर रोटेरी क्लब जो है, ब्लड डोनेशन उन्होंने आयोजन किया है, तो 2 बजे तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं. अगर आप यूज हैं टू गिव ब्लड, आप आकर यहाँ पर अपना खून दे सकते हैं. क्या पता आपका जो खून है वो किसी की जान बचा दे. और आपको तो पता ही है कि आजकल खून की कितनी कमी है, तो अगर आप ब्लड देते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर फ्लैक क्योदेविल. 2 बजे तक ये टीम, रोटरी टीम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही है ब्लड डोनेशन. आप आकर अपना खून दे सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आप वर्ल्ड कप के मैचेस मिस नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि इसे आप कहीं भी देखें, देखो भाई हमारा टीवी जो है, अब हम अपने टीवी को अपने साथ तो हर जगह अपने बैग में लेके घूम नहीं सकते. बहुत ही आसान है, यू हैव योर मोबाइल, यू डोंट नीड अ टीवी. तो आप अपने मोबाइल पर भी अपना मैच देख सकते हैं, यानी कि आप कभी भी उसको मिस नहीं कर सकते. तो ऐसा है कि आपको क्या करना है, आपका ये जो ऐप है आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस 300 रुपये में पेमेंट करके आप अपने सारे मैचेस कहीं भी कभी भी देख सकते हैं विदाउट मिसिंग वन मैच. जी हाँ, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, अपने कमरे में देख सकते हैं, अपने लिविंग रूम में देख सकते हैं. अगर मम्मी अपनी सीरियल देख रही हैं अनुपमा और आपका मैच चल रहा है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. तो चलिए इसी के साथ मैं कहूंगी हमारे साथ जुड़े रहिए. आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कम एंड मीट अस एट क्योदेविल मॉल. और बिल्कुल एंट्रेंस के पास हैं हम. आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट में काफी सारे लोग आपको मिलेंगे, उस पर लिखा होगा एमबीसी प्ले. ओके, तो आपको आना है यहाँ पर, हमसे मिलना है. सारे लोग हैं आपकी मदद करने के लिए. तो आइए, बेझिझक आइए और अपना जो ऐप है इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे पेमेंट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको पूरी डिटेल्स दी जा रही हैं. सो सी यू गाइस, मैं वेरिता आपके साथ हूँ. हम लोग 2:30 बजे तक आपके साथ रहेंगे. आइए, आपके पास मौका है, अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए और वर्ल्ड कप के सारे मैच एंजॉय कीजिए. म्यूजिक टाइम.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: माय डियर लिसनर्स, वेलकम टू मस्ती रेडियो मस्ती. आपके साथ हम लोग हैं, जुड़े हुए हैं लाइव फ्रॉम केदवील. और जैसा हमने कहा आपसे कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं, यहाँ पर आने का भी एक कारण है. हम लोग वैसे जब भी स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आप तक पहुँचानी है वो हम पहुँचाएं. और आज हम आए हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि MBC प्ले का जो हम लोगों ने अभी नया ऐप लॉन्च किया है, MBC प्ले 1.0, इसके चलते आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको बताएं. अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के इतने सारे मैचेस हैं, आपका भी कोई फेवरेट होगा, इतने सारे देश यहाँ पर खेल रहे हैं, तो आपका कौन सा फेवरेट टीम है, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं. अब अगर आपका फेवरेट टीम मैच खेल रहा है एंड आप उसको मिस कर दें, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अच्छी बात नहीं है. हम जानते हैं कि MBC पर आपको सारे मैचेस नहीं लेकिन बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे. लेकिन गाइस, ये भी तो है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे मैचेस भी हैं जो कि आप काम पर हैं, या तो फिर काम से घर जा रहे हैं, या तो फिर घर पे आपका कोई काम चल रहा है, या तो फिर आप किचन में खाना बना रहे हैं, या तो फिर आपके पास जो TV है, पापा अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, मम्मी अपना प्रोग्राम देख रही हैं, और आपको पता है फुटबॉल जो है, हो सकता है कि मम्मी उसमें दिलचस्पी ना दिखाए, लेकिन मम्मी को भी तो पता चलना चाहिए ना मैचेस के बारे में. तो आप उनको अपने साथ बिठा कर मैचेस जो है एंजॉय कर सकते हैं. मम्मी को बोलना, देखो मम्मा अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, कुछ मिर्ची पकौड़े बना दो, कुछ समोसे बना दो, और साथ में थोड़ा ग्रीन टी भी ले आओ. अब कैलोरीज इतने अंदर जाएगी तो बाहर निकालने के लिए उसको ग्रीन टी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना. तो ऐसे करके मम्मी के साथ बिठ जाओ आप, बट कहीं पे मम्मी को बिठा लो अपने पास, और साथ ही साथ पापा को भी बिठा लो, मैच देखो, उनको एक्सप्लेन करो. इंसान को फुटबॉल तभी समझ में आता है, तभी पसंद आता है जब वो फुटबॉल समझने लगे. तो यही मौका है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का. मम्मी भी गुस्सा करती हैं जब देखो फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, क्या रखा है फुटबॉल में, एक बॉल होता है, इतने सारे लोग उसके पीछे भागते हैं. लेकिन मम्मी को नहीं पता ना ये गेम क्या होता है, कैसे होता है. तो मम्मी को सिखाना पड़ता है कि मम्मी दो टीम होते हैं, फिर वो गेंद जो है उसको गोल डालना पड़ता है, तो कैसे पॉइंट्स होते हैं. तो मम्मी भी धीरे धीरे सीखने लगेगी. जब तक मम्मी की इंटरेस्ट नहीं पड़ेगी ना फुटबॉल में, तो आपको भी चैन नहीं मिलेगा. फिर देखना जब भी फुटबॉल होगा, मम्मी कहेगी बेटा फुटबॉल है क्या बनाऊं. तो ऐसे मम्मी भी पसंद करती है ना, तो मम्मी को भी तो थोड़ा बताना चाहिए कि मम्मी फुटबॉल है, आप जाओ यहाँ से. अरे नहीं नहीं, मम्मी को बिठाओ अपने पास और फुटबॉल कैसे क्या चलता है इसमें उनको सिखाओ. मुझे भी कहाँ फुटबॉल पता था इसके बारे में, अभी देखो मुझसे ज़्यादा तो और कोई फुटबॉल देखता ही नहीं है. तो आपका भी कोई फेवरेट होगा, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में आपका फेवरेट कौन है, अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं अपना कोई भी मैच, अपने फेवरेट टीम का मैच, तो आप यहां आकर MBC प्ले 1.0 इस ऐप को डाउनलोड करके, आप अपना अकाउंट क्रिएट करके 300 रुपये में ये सारे मैचेस देख सकते हैं. आप करना क्या है, आपको नहीं आता, आपको नहीं आता भाई, हमें तो नहीं आता मैचेस देखना है, क्या करना है, हमसे नहीं हो रहा, तो हम इसीलिए तो बाहर आए हैं. वी आर एट केदवील मॉल. RM2 की जो टीम है आपके साथ है, और हम आपके लिए लेकर आए हैं सारी डिटेल्स. तो मिलते हैं थोड़ी देर में.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती। हम हैं इस समय लाइव फ्रॉम क्योदुबील मॉल और मैं आप सबों का यहां पर वेलकम करने के लिए हूं और साथ ही साथ मैं यहां पर इसलिए हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पे आप लोग हमारा MBC प्ले जो है उसका जो 1.0 MBC प्ले का ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके चलते आप कोई भी मैच मिस नहीं करेंगे। तो हम यहां पर आपकी मदद के लिए ही आए हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू किस तरह से आप ये जो ऐप है इसको आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप इसके चलते अपने सारे मैचेस देख सकते हैं। करना क्या है, नया ऐप है हमारा MBC Play 1.0, इसको आप जाकर डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर पे एंड गूगल प्ले ऐप गैलरी एंड्रॉइड, आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, बस इसके चलते आपको यहाँ पर एक मेल द्वारा, जी हाँ, आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके साथ आपको रजिस्टर करना पड़ता है और बाकी जो है आप MBC वो जो TV सेक्शन है वहाँ पर जाकर आपको वो जो भी सवाल करेंगे उसके हिसाब से ही आप अपना काम कीजिए। लेकिन याद रखिए कितने सारे लोग हैं जो पेमेंट करते हैं फिर उसके बाद वो वेट नहीं करते, जब तक कि वो आपको बताए ना ओके, जब तक आप ओके पे प्रेस नहीं करोगे आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। सो यू हैव टू वेट, जैसे आपने पेमेंट कर दिया यू हैव टू वेट फॉर सम सेकंड्स, फिर उसके बाद आपको आएगा ओके, जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम आपको कुछ और डिटेल्स देंगे और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो आए हैं रजिस्टर करने के लिए। नमस्ते जी, आपका नाम है? आपका नाम
1: दानिश सुकन।
0: दानिश जी कहाँ रहते हैं आप?
1: बेगोज क्लेमोशा।
0: क्लेमोशा से आए हैं, तो शॉपिंग के लिए आए थे आप?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, तो आप अभी फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, आपकी वाइफ देखती है फुटबॉल?
1: हाँ देखते हैं।
0: देखती है, क्या बात है। हेलो जी नमस्ते, आपका नाम?
2: मेरा नाम है आरती।
0: आरती जी आप फुटबॉल पसंद करती है?
2: हाँ।
0: आपका कोई फेवरेट प्लेयर है? किसको? नेमा? अरे बाप रे बाप, डर रही है। पहले मैंने बोला आपका कोई फेवरेट प्लेयर है, अपने पति को देख रही थी ऐसे, पति ने बोला नेमा है, अच्छा ठीक है नेमा है। आप किसको अभी सपोर्ट कर रहे हैं?
1: ब्राजील।
0: ब्राजील, ला ला ला ला ला ला ला, ब्राजील। एक्चुअली मेरा भी फेवरेट ब्राजील ही है, लेकिन मैच जब हम देख रहे हैं जिस तरह से मैच चल रहा है, जब मैं किसी से पूछ रही हूँ कि आपका फेवरेट, अपना फेवरेट बता रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कौन जीत सकता है तो सब बोल रहे हैं फ्रांस। अब देखना है कौन जीतता है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दूँ अगले गाने

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Wish you all a very good afternoon. Check your time. It's already 1 p.m. भैया अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार याचना
4: नमस्कार हंसिनी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार रेजिडेंस लाक्रिया में कल शाम हुई हिंसक घटना में 28 वर्ष घायल सादाल्ला की जान चली गई और उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं बेटू तोंबू के रहने वाले गाय सादल पर रोबेस कट स्ट्रीट में कथित हमला किया गया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई पुलिस द्वारा जुटाई गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि में गुरुवार को हुआ एक विवाद बताया जा रहा है जांचकर्ताओं के मुताबिक गाय सादल एक गली में अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहा था तब भी कथित रूप से मोहम्मद शेख बुलाकी की मां ने उसका संपर्क हुआ और उन्हें धक्का लग गया इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई पुलिस का कहना है कि अगले दिन यानी कल ये तनाव गंभीर झड़प में बदल गया जिसके चलते इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा घटना में घायल हुए 22 वर्ष मोहम्मद शेख बुलाकी का ऑपरेशन किया गया और उन्हें पुलिस गिरफ्तारी निगरानी में अस्पताल में भर्ती किया गया है पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है और घटना के सभी पहलुओं की जाँच पड़ताल कर रही है पोटली के M1 राजमार्ग पर आज तड़के सुबह एक सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय युआन पर्सन की मृत्यु हो गई पिछथविया के रहने वाले युआन पर्सन का शव सड़क पर अचेत अवस्था में मिली जबकि उनकी मोटरसाइकिल

0: लाउंज से लगभग 30 मीटर दूर पड़ी हुई थी। सूचना मिलने पर लाइन बैराक्स पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। जांचकर्ताओं द्वारा सेफ सिटी निगरानी प्रणाली के फुटेज का अवलोकन करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल चालक ने अपने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे लोहे के सुरक्षा बैरियर से टकरा गई। फ्रांस के सैंडनी क्रैक्शनल ट्राइब्यूनल ने रियूनियन और मॉरिशस के बीच संचालित बड़े पैमाने के कैनाबिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मॉरिशस के कुछ नागरिकों सहित कुल 12 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया है। आरोपियों पर रियूनियन से मॉरिशस तक सैकड़ों किलोग्राम कैनाबिस की तस्करी करने का आरोप था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत कई मिलियन यूरो की बताई गई है। ये मामला वर्ष 2022 में की गई एक बड़ी जब्ती कार्रवाई के बाद सामने आया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने नेशनल नशीले पदार्थों की खेप को बरामद किया था। वैश्विक स्तर पर फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेले गए मैचों का स्कोर रहा। ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड ड्रॉ 1-1। आज सुबह 2 बजे ब्राजील का सामना हुआ मोरक्को के साथ, स्कोर रहा 1-1, ये भी ड्रॉ। और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में हाइटी स्कॉटलैंड मैच का स्कोर रहा हाइटी 0 स्कॉटलैंड 1। गौरतलब है कि हाइटी 52 सालों यानी 1974 के बाद 2026 में ये विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। और ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया 2 का सामना हुआ और तुर्की 0, मैच 2-0 पर समाप्त हुआ। ग्रुप ई में जर्मनी खेलेगा कुराकाओ के साथ, ये कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मैच होगा। और रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड वर्सेस जापान तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वेडोर के खिलाफ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: रॉयल रोड कोची मिलिटिया में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णदत्त सांदुराम जो शोफेयर टैक्सी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके रिश्तेदार सरवन सिंह सांदुराम के मकान रॉयल रोड कोची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए व्हील में कोची मिलिटिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। कश्मीर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश बिहारी जो चिंग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके मकान कश्मीर रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: You're listening to Radio Masti.
3: RM2.
4: Radio Masti.
5: Le ministère de l'Agro-Industrie, de la Sécurité Alimentaire, de l'Économie Bleue et de la Pêche informe le public que conformément à l'Animal Diseases Act, toutes les fermes, les centres d'élevage, les abattoirs et les centres de quarantaine qui élèvent, manipulent ou détiennent des bovins, caprins, ovins, porcins, volailles, cervidés et abeilles doivent s'inscrire au Système National d'Information sur l'Élevage, NLIS. Pour s'inscrire, veuillez vous rendre sur le site web du ministère agriculture.govmu.org ou télécharger l'application NLIS sur Google Play ou App Store. Pour toute assistance, veuillez appeler le 463 3107 ou envoyer un message WhatsApp au 55 00 1000.
3: RM2
4: Radio Musty. RM2
2: Radio Musty.
4: Feel the Musty. Feel the Musty.
6: And yes, welcome to Radio Masti. हमारी जो टीम है काफी मस्ती कर रही है यहाँ पे, सबकी नजर सब पे है, सब देख रहे हैं कि भाई आज का मौसम बहुत सुहाना है। इट्स अ लवली डे, ऑफकोर्स इट्स अ लवली डे। और वैसे भी आज संडे है, संडे को फंडे कैसे बनाया जाता है ये किसको पता, ये उनको पता है जो आज हमारे साथ है। और हम हैं लाइव फ्रॉम केदेविल मॉल। मैं आपको बताऊँ, मैं हूँ विरिता और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है।

जो यहाँ पर आए हैं सिर्फ आपके लिए। स्टूडियो से बाहर हम इसलिए आते हैं ताकि हमें जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने हैं वो हम पहुँचा पाए, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग अपना वर्ल्ड कप का जो मैच है अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो इसीलिए हम लोग आपके लिए यहाँ आए हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें कि आप जो MBC Play 1.0 हैं वो कैसे डाउनलोड होता है, कैसे

0: 2-0 win over South Africa, taking the early lead in Group A. और वहीं पे बहुत सारी टीम ने खेला, जैसे साउथ कोरिया ने डिफीट किया चेजिया को 2-1 से, मेकिंग ग्रुप ए वेरी कंपिटिटिव विद बोथ मेक्सिको एंड साउथ कोरिया ऑन 3 points. और वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने इम्प्रेस किया, 4-1 विक्ट्री ओवर पराग्वे, करंटली टॉपिंग ग्रुप डी ऑन गोल डिफरेंस. ऑस्ट्रेलिया ने भी अर्न किया वन ऑफ द स्टैंड आउट विन सो फार, बीटिंग टर्की 2-0 डिस्पाइट हैविंग मच लेस पोसेशन. वहीं पे टूर्नामेंट फेवरेट्स ब्राजील वर हेल्ड टू अ 1-1 ड्रॉ बाय मोरक्को इन ग्रुप सी. स्कॉटलैंड ने रिकॉर्ड किया द फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री सिंस 1990, डिफीटिंग हाइटी 1-0 से एंड मूविंग टू द टॉप ऑफ ग्रुप सी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं. अगर आप चाहें तो हमारी पूरी टीम के साथ मिलने भी आ सकते हैं. यहाँ पर हमारे रेडियो मस्ती के कितने सारे फैंस हैं जो हमें सुनते हैं रेडियो पर, मिलने का मौका नहीं मिलता. तो आज हमारी टीम कैदविल में है. अगर आप आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारी जो मार्केटिंग है, फाइनेंस की जो टीम है, यहाँ पर हमारे साथ है. घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आइए, अपने मोबाइल के साथ सारा काम हम करते हैं. फिर घर बैठे आप चाहे अपने मोबाइल पे, चाहे अपने मोबाइल को आप लिंक कर सकते हैं टीवी के साथ, और वहां पर भी आप देख सकते हैं अपना फेवरेट मैच. और रोटरी क्लब जो है यहां पर ब्लड डोनेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी को ब्लड देना चाहते हैं, यहां पर 2 बजे तक पूरी टीम रहेगी. आप आकर यहां पर अपना जो MBC प्ले है इसको आप अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं. तो आइएगा जरूर, रेडियो मस्ती के साथ मस्ती जारी है.
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.
3: It's a unisex song.

0: रेडियो मस्ती,
1: रेडियो मस्ती पर आपका स्वागत करती है वेदिता। यस के डिबिल मॉल जो है हम लोग यहाँ पर हैं और हम हैं लाइव। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि ये जो मेक्सिको है अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मैचेस जो हैं आज के, मैं आपको बता दूं कि वी हैव जर्मनी वर्सेस कुराकाओ ग्रुप ई में, नेदरलैंड्स वर्सेस जापान ग्रुप एफ, आइवरी कोस्ट वर्सेस इक्वाडोर ग्रुप ई एंड स्वीडन वर्सेस ट्यूनिशिया ग्रुप एफ। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर आप

0: आपको नहीं आता है डाउनलोड करना हमारा एमबीसी प्ले, क्रिएट करना नहीं आता है अकाउंट, क्या करना है? अब ऐसे तो नहीं हम बैठे रह सकते हैं, तो हम आए हैं आपकी मदद के लिए एंड वी आर एट क्योदेविल मॉल एट फ्लैक, जी हाँ सेंटर फ्लैक में है। जो लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हैं, मैं जानती हूँ काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उठा रहे हो, थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप सामान गाड़ी में रख दो, फिर उसके बाद आप आ जाओ। यहाँ पर हमारी एमबीसी टीम जो है आपकी मदद के लिए है, और ये आपको बताएंगे कि बताएंगे क्या, ये आपके लिए काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर बैठे हैं, कहते अरे अंकल क्या थकना, आप मुझे बताओ मोबाइल दो, कर दूँ, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब आप अगर आपको टीवी पे देखना है तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें ये लड़के आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी हमारी एक बड़ी टीम भी है जो हमारे साथ है, और हमारे डीजे डॉम तो हमारे साथ ही है, म्यूज़िक एक के बाद एक, कहता है थोड़ा स्लो लगा दे, नहीं थोड़ा फास्ट लगा दे, तो इनको म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है, और जब भी कोई गाना चलता है तो झूम उठते हैं, तो उनके साथ हम भी झूम रहे हैं, आप भी झूम रहे हैं। अब रेडियो मस्ती पे मस्ती नहीं होगी तो क्या होगी, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो ऐप है एमबीसी प्ले वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर आएगा। हम लोग हैं एट क्योदेविल फ्लैक, और मैं आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पर 2:30 बजे तक हैं। आप कोई भी मदद चाहते हैं, यहाँ पर हम आपकी मदद के लिए हैं, साथ में म्यूज़िक भी है, और हमारे जितने भी फैंस हैं यहाँ से गुजर के हमको हेलो बोलने के लिए आए हैं, उनको एक बार थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, आपसे मिलना हमें अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि आज आप हमें सामने से मिल गए, पहले तो हम आपके रेडियो पर सुनते थे, आज आपको देख भी लिया, तो ऐसा ही होता है। हम बाहर इसीलिए आते हैं कि हमारे लोगों से हम मिले, बात करें। कितने सारे लोगों ने आकर यहाँ पर ये जो हमारा एमबीसी प्ले है 1.0 उसको डाउनलोड किया और उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया, और कहते हैं कि तो बहुत आसान है, तो इसीलिए तो हम आपके इस काम को आसान बनाने के लिए ही आए हैं स्टूडियो से बाहर। तो आप आइएगा जरूर, हम हैं आर्ट क्योदेविल मॉल सेंटर फ्लैक में, आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं, अगर आप आसपास में हैं, फ्लैक में है, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, अभी आप बाज़ार में सब्जी खरीद रहे हैं, तो अगर आपने टमाटर पोटैटो वगैरह खरीद लिया और आप कहते हैं कि भाई क्या करें, ऐसा करो सारा सामान गाड़ी पे रखो और फिर इसके बाद आप ड्राइव करके आ जाओ यहाँ पर क्योदेविल, फिर गाड़ी पार्क करो, हमसे मिलने आओ, और यहाँ पर आपकी मदद के लिए हम लोग हैं। एक भी मैच आप वर्ल्ड कप का मिस नहीं करोगे, आई गारंटी यू। इसी के साथ म्यूजिक।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: वेलकम टू रेडियो मस्ती गाइस, मैं हूं वेदिता आपके साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर लाइव फ्रॉम फ्लैक क्योडविल. और हम लोग यहां पर आए हैं आपको बताने के किस तरह से आप ये जो हमारा MBC Play 1.0 ऐप है कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसके चलते आप अपने मोबाइल पर, जी हां अपने मोबाइल पर सारे मैचेस देख सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेडियो मस्ती के जो टीम है हमारे साथ आए हैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए. कैसे आपको इसे अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है, कैसे आपको पेमेंट करनी है, कैसे आप सारे मैचेस जो हैं देख सकते हैं. तो अभी आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो आप देखना पसंद करेंगे. अब इसको अगर आपको देखना है अपने घर पे, देखो भाई हमारा क्या है कि हमारा जो मोबाइल है वो हमारे साथ 24/7 रहता है. आप कहीं भी जाते हैं आपका मोबाइल आपके साथ होता है. अब आपके मोबाइल पर अगर आपको मौका मिलता है ये सारे मैचेस देखने का तो ये तो हो गया सोने पे सुहागा, है ना. इसीलिए हम यहां पर आए हैं आपकी मदद करने के लिए ताकि कैसे आप इसे डाउनलोड कर सके. जी हाँ, डाउनलोड करने के बाद पेमेंट करना होता है. सिर्फ 300 रुपये में आपको मिल रहा है मौका यहाँ पर सारे मैचेस देखने का. ये मैचेस कुछ इसमें आप टीवी पर भी देखेंगे लेकिन वो क्या है ना कि मैचेस का जो टाइमिंग होता है ज़रा अलग होता है. मॉरिशस में जो टाइम है और आप बाहर देश में जो टाइम है ये सेम नहीं होता. अब इसीलिए अगर आपका मोबाइल आपके पास है तो आप अपने मोबाइल के साथ भी ये मैचेस देख सकते हैं, राइट. यू कैन वॉच इट इन योर रूम, यू कैन वॉच इट इन योर लिविंग रूम. आप इसे किचन में लगा के अगर आप खाना खा रहे हैं तब भी देख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा टीवी लेके तो आप घूम नहीं सकते ना. या तो बस में भी देख सकते हैं. यस ऑफ कोर्स, आप बस में देख सकते हैं. आप टैक्सी में घर जा रहे हैं टैक्सी में देख सकते हैं. या अगर आप अपने फैमिली, अपने कजन्स के साथ या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अगर घर आते जाते हैं तो अगर आप देख रहे हैं तो उसको लाइव स्कोप बता सकते हैं. यानी कि एक 300 रुपये का ये जो आप यहाँ पर हमारे साथ रजिस्टर होते हैं MBC Play 1.0 ऐप के साथ, तो इसके चलते आप अपने घर पे, ऑफिस में, गाड़ी में, बस में, टैक्सी में, कहीं भी, यहाँ तक कि खेत में भी आप अपने मोबाइल के जरिए मैचेस देख सकते हैं. चने के खेत में नहीं, गन्ने का खेत होता है हमारे पास, सब्जी का भी होता है. तो आप कहीं भी कभी भी, आजकल तो ग्रीन हाउस होते हैं भाई, तो आप आराम से ये मैचेस देख सकते हैं. फ्लैक के आसपास में है आप और आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें इसे डाउनलोड करने में, पेमेंट करने में. सिर्फ 300 रुपये में आप सारे मैचेस देख सकते हैं अपने मोबाइल पर. MBC Play 1.0 डाउनलोड करना है, फिर उसके चलते आपको क्या करना है, उसके चलते आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है. फिर उसके बाद वो आपको गाइड करेंगे आगे चल के आपको क्या करना है. फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड टीवी पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद वो आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको क्या करना है. आप गूगल प्ले, ऐप स्टोर, ऐप गैलरी, एंड्रॉयड, यहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं MBC Play 1.0. आसान है. अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो हम हैं यहाँ पर एट क्योडविल फ्लैक ताकि आपकी मदद कर सके कि आप इसे डाउनलोड करके सारे मैचेस जो हैं एंजॉय कर सके. इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो रोटरी क्लब है यहाँ पर ब्लड डोनेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. आप चाहे तो आकर यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए वहाँ पर जाके ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर हमसे मिल भी सकते हैं हमारी पूरी टीम के साथ. एंड उसी के चलते आप यहाँ पर आकर अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैचेस एक के बाद एक हैं, आप मिस नहीं करना चाहते तो एक ही रास्ता है आपके पास, MBC Play 1.0 के साथ जुड़ जाइए. वर्ल्ड कप के सारे मैचेस एंजॉय कीजिए वैसे जैसे हमारा म्यूजिक होता है ऑन रेडियो मस्ती.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: are into
1: Radio Musti.
2: खुशियाँ बटोर लो। वैसे खुशियाँ हम कैसे बटोर सकते हैं? खुशियाँ हम तभी बटोर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं और उसे हम फील कर सके, उसे हम देख सके, उसे हम एंजॉय कर सके, राइट? तो यहाँ पर भी हमारे साथ जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। वी आर लाइव ऑन रेडियो मस्ती फ्रॉम क्योदेविल फ्लैक और बिल्कुल मॉल के सामने हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, जो आपके लिए एक बहुत ही आसान सा काम करने आए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है, आप अगर चाहें तो हमारे साथ यहाँ पर आकर ये जो MBC Play 1.0 है आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। अपने मोबाइल के साथ आइए या तो फिर यहाँ पर हम कागज़ कलम पर भी लिख कर दे सकते हैं। अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग ये जो ऐप है कैसे इसको सबसे पहले तो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं अब मैं बताती हूँ। आपके पास ऑप्शन है गूगल प्ले, ऐप स्टोर, ऐप गैलरी, एंड्रॉयड। आप यहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं MBC Play 1.0। फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल के साथ एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद वो आपको गाइड करेंगे आपको क्या करना है। वर्ल्ड टीवी जो है वहाँ पर जाके क्लिक करना है और वहाँ पे वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको पेमेंट करनी है। याद रखिए कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको तुरंत लीव नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक कि आपको एक मैसेज नहीं आता टू क्लिक ऑन ओके। वंस यू क्लिक ऑन ओके इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फिर निकल जाते हैं उस ऐप से। ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना होता है जब तक आपको एक मैसेज ना आए जिसमें लिखा हो ओके, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना मैच कहीं भी देख सकते हैं, घर में, गाड़ी में, गार्डन में, किचन में, है ना? आप सोते सोते देख सकते हैं, बैठे बैठे देख सकते हैं, नहाते हुए भी देख सकते हैं। हमारे डीजे डोम कहते हैं नहाते हुए, जो पागल होते हैं ना फुटबॉल के, क्या बताऊं मैं। तो आप जरूर आएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। हमारे साथ सारे लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करेंगे। कैसे आपको ये डाउनलोड करना है, पेमेंट करनी है, सारा कुछ वो खुद कर रहे हैं, बेचारे बैठे हुए हैं सारा कुछ कर रहे हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितने सारे लोगों ने आकर यहाँ पर कागज़ पे हमने लिख के उनको दिया, बोला हम घर जाएंगे करेंगे फिर उसके बाद यही के साथ शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पर आके एक फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, हम लोगों ने कागज़ पे लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं जानते हैं कि क्या करना है, तो हम ये जो डिटेल्स हैं ये आपको बता सकते हैं, आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं।

0: लेकिन अगर आप मैच नहीं मिस करना चाहते हैं, रिमेम्बर ₹300 में आपको इतने सारे मैचेस देखने को मिल रहे हैं. आई गेस यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी ऑफ इट, सो डू रजिस्टर. एंड क्या करना है, अगर आप फ्लैक में आसपास में हैं तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं, हम हैं @KDVIL फ्लैक, और नहीं तो आपको हम डिटेल्स देंगे. चलिए थोड़ी देर में आपको फुल डिटेल्स देंगे कि ये कैसे चलता है अगर आपने कहीं मिस कर दिया हो तो. फिलहाल अभी के लिए इट्स म्यूजिक टाइम, म्यूजिक के साथ आगे बढ़ते हैं. एंड यहाँ मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग. हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: संदिनी.
0: संदिनी, यू आर सो क्यूट.
1: थैंक यू.
0: अच्छा आप बताओ, आप फुटबॉल देखते हो?
1: हाँ, नो.
0: आप, आपका कोई फेवरेट फुटबॉलर है?
1: हाँ.
0: कौन?
1: नेमार.
0: माय गुडनेस. और आप वर्ल्ड कप मैचेस देख रहे हो? वैसे इनको देख के तो नहीं लगता कि ये मैचेस देखती है, लेकिन फिर भी हमने पूछा. आप देखते हो? थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता. तो ऐसा करो, नेक्स्ट अभी क्या करना है, आप मम्मी के साथ बैठ के मैच दिखा करो. पापा देखते हैं मैच?
1: हाँ.
0: पापा देखते हैं ना? जब पापा मैच देखते हैं ना, उनके बगल में जाके से चिपक के बैठ जाना. बोला पापा समझाओ मुझे क्या चल रहा है, कैसे चलता है, फिर आप सीख जाओगे. ठीक है, फिर जब आप सीख जाना ना, फिर मम्मी को पकड़ के अपने पास बिठाना. बोला ये क्या, तुम किचन में रहती हो, पापा को स्नैक्स बना दे दो, आओ हम बैठ के, हम लोग बैठ के देखते हैं मैचेस. तो आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के मैच देखना, पापा को किचन में भेज देना स्नैक्स बनाने के लिए. ठीक है, आप देखती हो मैच? मम्मी नहीं. तो मैच इंसान इसीलिए नहीं देखता क्योंकि उसको फुटबॉल समझ में नहीं आता. एक बॉल होता है, दो ग्रुप होते हैं, एक बॉल के लिए लड़ते हैं, ये कोई खेल हुआ. लेकिन जब आप समझने लगते हो ना, जब आप गोल, कोई आपका फेवरेट फुटबॉलर जब गोल डालता है ना, तो जो खुशी होती है ना, आप सोफे से उछल जाते हो क्योंकि आपको गेम समझ में आ जाता है. तो फुटबॉल को पसंद करने के लिए फुटबॉल देखना और समझना जरूरी होता है. तो जब आपके घर में कोई बैठ के फुटबॉल देख रहा है ना, तो ये मत बोलो ये तो बस फुटबॉल देखता है, उनको ही पता है कि मजा कहाँ है. तो जब उनके साथ बैठकर आप सीखोगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा. और जिस दिन आप बैठकर फुटबॉल देखने शुरू कर दोगे ना, तो आपके हस्बैंड किचन में नजर आएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही करना. सारी लेडीज जो है, मैं आपसे यही कहूंगी, घुस जाओ फुटबॉल में, घुस जाओ. और अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए, आ जाओ MBC Play 1.0 जो है, आप डाउनलोड करो अपने मोबाइल पे, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, उसको आप एंजॉय करो. Here we go with some great music right here, आपके अपने रेडियो मस्ती पर.
2: सजन मैनू लुट लै गया है.
3: रेडियो मस्ती.
4: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
3: Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Musti. रेडियो मस्ती पर आपका हम स्वागत करते हैं. वेलकम जी. बिल्कुल, अभी आप सोच रहे होंगे कि बाकी का प्लान क्या है, तो चलिए यहाँ पर अब हम आपका साथ दे ही रहे हैं. वेलकम वेलकम आप लोग हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं. वी आर लाइव ऑन रेडियो मस्ती फ्रॉम क्योदिविल फ्लैक. हमारी पूरी टीम हमारे साथ हैं. यू कैन सी द मार्केटिंग टीम इज़ हियर, द फाइनेंस टीम इज़ हियर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, MBC Play. जी हाँ, MBC Play 1.0 आपको डाउनलोड करना है अगर आप चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं इसको आप मिस ना करें. तो करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू, यू टेक योर मोबाइल एंड आप चाहे तो गूगल प्ले, ऐप स्टोर, ऐप गैलरी, एंड्रॉइड, कहीं पे जाके आप डाउनलोड कीजिए MBC Play 1.0. फिर उसके बाद आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है जहां पर आपको एक ईमेल एड्रेस डालना होता है अपने पासवर्ड के साथ. एंड देन आपको गाइड किया जाता है. यू गो टू वर्ल्ड टीवी, वहां पे क्लिक करें, फिर वहां पे आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे करके अपना 300 रुपये पे करना होता है. 300 रुपये, ओनली 300 रुपीज, एंड यू आर एबल टू वॉच ऑल द मैचेस, वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं. अब आप सोचो, किचन में हो, गाड़ी में हो, टैक्सी में हो, बस में हो, घर पे हो, काम पर हो, गार्डन में हो, कहीं से भी आप. अभी हमारे डीजे डोम कह रहे थे कि शावर लेते लेते यू कैन वॉच. या ऑफ कोर्स मिस नहीं करना चाहते हैं ना अपनी फेवरेट टीम को. आप, मुझे नहीं पता कि आपका फेवरेट कौन है, लेकिन कोई तो होगा. इतने सारे कंट्रीज यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कंट्री है जो आपको पसंद है. कितने सारे लोगों ने यहाँ पर आके हमें कहा कि भाई हम तो इसको सपोर्ट करें, हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. अब अगर उनका मैच चले और आप उसको मिस कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये जो फुटबॉल मैच होता ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैचेस चलते हैं, लेडीज़ हमेशा किचन में रहती हैं और हमारे जो भाई साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैठ के आराम से फुटबॉल देखते हैं. तो यहीं पर वो कहती है कि मुझे अपने सीरियल देखना है, धूम तनना नना नना नना नना. अरे भाई धूम तनना क्यों, उनको बुलाकर बिठाकर मैच के बारे में बताओ, सिखाओ, वो भी सीख जाएगी तो घर में कलेश नहीं होगा. फिर उसके लिए क्या होगा कि आप साथ में बैठकर अपना मैच दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. MBC Play 1.0 भूलिएगा नहीं. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कम टू मीट अस एट क्योदिविल फ्लैक. हम लोग बिल्कुल यहाँ पर जो मॉल है उसके सामने है. सारी डिटेल्स आपको दिए जा रहे हैं. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम खुद डाउनलोड करा के, रजिस्टर करवा के, पेमेंट करवा के आपको आराम से घर भेजते हैं, और घर पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी के साथ, तो बड़े पर्दे पे भी आप उसको देख सकते हैं. मिलते हैं कुछ म्यूजिक के साथ थोड़ी देर में, समाचारों के बाद. सी यू, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. रेजिडेंस लाक्रिया में कल शाम हुई हिंसक घटना में 28 वर्षीय गायल सादल की जान चली गई. उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं. बेजुतोंबो के रहने वाले गायल सादल पर होबेस्कॉट स्ट्रीट में कथित हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत तो हो गई. पुलिस द्वारा जुटाई गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि में गुरुवार को हुआ एक विवाद बताया जा रहा है. जांचकर्ताओं के मुताबिक गायल सादल एक गली में अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहा था, तब कथित रूप से वो मोहम्मद शेख बुलाकी की मां से टकरा गया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. पुलिस का कहना है कि अगले दिन हालात बिगड़ गए. घटना में घायल 22 साल के मोहम्मद शेख बुलाकी का ऑपरेशन किया गया और उन्हें पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती किया गया है. पोटली के अमान मोटरवे पर आज तड़के सुबह एक सड़क दुर्घटना में 21 साल के योहान पर्सन की मृत्यु हो गई. पिचित रिविया के रहने वाले योहान पर्सन का शव सड़क पर मिला, जबकि उनकी मोटरसाइकिल उनसे लगभग 30 मीटर की दूरी पर थी. सूचना मिलने पर लाइन बराक्स पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. जांचकर्ताओं द्वारा सेफ सिटी निगरानी प्रणाली के फुटेज देखे गए. इससे पता चला कि मोटरसाइकिल चालक ने अपने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था, जो वहां पर लोहे के सुरक्षा बैरियर से टकरा गया. विदेश की खबरों में फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेले गए मैचों का स्कोर रहा. ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड ड्रॉ 1-1. आज सुबह 2 बजे ब्राजील का मुकाबला हुआ मोरक्को के साथ. स्कोर रहा 1-1 ड्रॉ. और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में आईटी स्कॉटलैंड मैच का स्कोर रहा आईटी 0

0: स्कॉटलैंड एक और तलब है कि आईटी 52 साल बाद 2026 के इस विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। आज रात 9 बजे ग्रुप ई में जर्मनी खेलेगा कुहाकाओ के साथ और ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। कश्मीर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश बिहारी जो चिंग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनके मकान कश्मीर रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM रा रोड कच्छ मिलितिया में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णदत्त सांडूराम जो शोफेयर टैक्सी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके रिश्तेदार सरवन सिंह सांडूराम के मकान रा रोड कच्छ मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

वर्फ्रेंड्स रेडियो मस्ती की जो टीम है आज एमबीसी टीम साथ में आए हैं हम एट क्योदेविल सेंट्रल फ्लैग, जहां पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से आप ये जो एमबीसी प्ले 1.0 है इसको डाउनलोड करके आप वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं वो आप घर बैठे देख सकते हैं, ऑफिस में देख सकते हैं, आप जहां भी हैं वहां

0: ऐप स्टोर, ऐप गैलरी, एंड्रॉइड पे जाके इसको डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद अपने ईमेल अकाउंट के साथ, पासवर्ड के साथ आप एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद आप जाएंगे वर्ल्ड टीवी पे, वहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है, और आप कैसे पेमेंट करने के बाद कैसे वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। वहाँ पे आपको 300 रुपीज़ पे करना होता है, फिर आपको वेट करना होता है। बहुत सारे लोग हैं जब पेमेंट कर देते हैं तो ऐप से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको वेट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप वेट कीजिए जब तक कि आपको ओके करना नहीं है, यानी कि ओके जैसे आपने कर दिया आपको एक मैसेज आएगा, जैसे आप ओके पे क्लिक करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं ना, थोड़ा मैं कोने में आ जाती हूँ, हाँ, तो जैसे आपको एक मैसेज आएगा उस पर लिखा होगा ओके, जैसे आपने ओके पे क्लिक किया इसका मतलब आपका पेमेंट एक्सेप्टेड है और आप ये जो मैचेस हैं कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। सो इट्स वेरी ईजी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है, आपको आना है यहाँ, हम लोग जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग हैं एट कैदवील सेंट्रल फ्लैग, यहाँ पर आप हमसे मिलने आ सकते हैं। हमारी जो टीम है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी डिटेल्स लेकर आए हैं, ये बैठे ही हैं कि आपके लिए ये सारा काम कर दे। सो डाउनलोड करने से, पेमेंट करने से, आपको सिखाने से आप जो हैं अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टीवी पर कनेक्ट करने के बाद ये जो मैचेस हैं आप देख सकते हैं। याद रहे कि दिस इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड कप विथ 48 टीम्स एंड 104 मैचेस, एंड ये जो टूर्नामेंट है इज जॉइंटली होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको, और फाइनल होने वाला है 19 जुलाई को एट मेट लाइफ स्टेडियम। चलिए इसी के साथ थोड़ा म्यूजिक और फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए हैं, तो बात करते हैं उनसे, मिलते हैं उनसे, देखते हैं कि उनको कोई मदद चाहिए। तो सर आपको कोई मदद चाहिए, आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं एमबीसी प्ले? आपका नाम क्या है?
1: नौबत।
0: कहाँ रहते हैं?
1: एक्वायो।
0: तो आप फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं?
1: जी।
0: आपका फेवरेट प्लेयर?
1: नहीं है,
0: आप बस फुटबॉल पसंद करते हैं। और कोई कंट्री जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो?
1: अर्जेंटीना।
0: ओह माय गॉड, इसलिए क्योंकि इसमें टीना है, अर्जेंटीना। चलो कोई नहीं, और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखो पसंद तो हम सबकी अलग अलग है, किसी को मेक्सिको पसंद है, किसी को अर्जेंटीना पसंद है, किसी को फ्रांस पसंद है, पसंद हम सबको है, हमारी अपनी फेवरेट है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कौन जीत सकता है, पोटेंशियल किस में है, तो आपको क्या लगता है?
1: अर्जेंटीना एंड फ्रांस,
0: दोनों में एक
1: अर्जेंटीना एंड फ्रांस।
0: आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए?
1: अर्जेंटीना।
0: टीना को जीतना चाहिए, अर्जेंटीना। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सर, चलिए आपकी मदद करेंगे ये लोग, आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। और बाकी हमारे जो लिसनर्स हैं, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम डाउनलोड करें, घर पे पापा हैं, घर पे भाई हैं, घर पे कोई फैमिली मेम्बर है, चाचा है, अंकल है, उनको नहीं आता है डाउनलोड करना, तो आप हमसे यहाँ पर आके जो जितने भी एडवाइस हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, हम आपको लिख कर देंगे, आप घर पर जाके उनको बता सकते हैं और उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सम मोर म्यूजिक राइट हियर, आपके लिए लेकर आए हैं लाइव फ्रॉम कैदवील सेंट्रल फ्लैग। हम हैं रेडियो मस्ती पर हमारी पूरी एमबीसी टीम के साथ। चलो भाई, वर्ल्ड कप है, कौन जीतेगा पता नहीं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है ये जानना हम जरूर चाहेंगे, मिलने आएगा जरूर। एंड लेट्स कीप ऑन गोइंग विद सम ग्रेट म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: are into
1: Radio Musti. रेडियो मस्ती पर हम हैं लाइव और आज हम स्टूडियो के बाहर हैं आर्ट क्योदेवील सेंटर फ्लैक. तो यहाँ पर जितने भी लोग वर्ल्ड कप जो हैं मैचेस पसंद करते हैं, उनकी अपनी टीम है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो सारे मैचेस देखना चाहते हैं. अब मैचेस कैसे देखेंगे? अगर आप घर पर हैं तो जाहिर सी बात है आपके घर में एक टीवी होगी, या तो फिर आप चाहे तो अपने कमरे में अगर आपका टीवी है आप अपना मैच देखना चाहते हैं, जबकि आप मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. तो ऐसे में आप जो हैं हमारा जो MBC Play 1.0 का ऐप है इसको आप जल्दी से अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? जी हाँ, गूगल प्ले ऐप स्टोर, ऐप गैलरी, एंड्रॉयड, यहाँ पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए. फिर उसके बाद आप जाइए वर्ल्ड टीवी पे, आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है. अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे मिलने आ सकते हैं. हम फ्लैक में हैं, जाहिर सी बात है आपको शॉपिंग करने का बड़ा शौक़ होता है या तो फिर घूमने का बहुत शौक़ होता है, आप घूम रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, आप बाज़ार आए हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए, आप शादी की शॉपिंग करने आए हो, आप ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए आए हो, तो फिर देखिए यहाँ पर कोई है हमसे. हेलो, नमस्कार.
2: नमस्ते जी,
1: कैसे हैं आप?
2: ठीक.
1: नाम क्या है आपका?
2: पूरन.
1: पूरन, कहाँ से हैं आप?
2: काटकोको से.
1: काटकोको से. तो मुझे, मैं देख रही हूँ मोबाइल हाथ में है और आप बड़े खुश लग रहे हैं.
2: फुटबॉल डाउनलोड हो गया.
1: ला ला ला ला ला, क्या बात है, क्या बात है. आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
2: मेरा टीम तो सेलेक्ट नहीं हुआ इटली, तो मैं पोर्चुगल को सपोर्ट करूँगा.
1: पोर्चुगल को सपोर्ट करोगे? और आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा?
2: बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि मैंने USA को देखा, बहुत जवान खिलाड़ी हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट.
1: ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि फ्रांस वाले काफ़ी काफ़ी तगड़े लग रहे हैं.
2: शायद मैं फ्रांस का बड़ा फैंस नहीं हूँ.
1: या देखो भाई, हम फैन नहीं है, हमसे दूसरे वाले के बारे में पूछो, इनके बारे में मत पूछो, हमसे उनके बारे में पूछो जिसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वही जीते. हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि हम जिसे पसंद करते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो मैच से बाहर भी हो जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारा जो फेवरेट रहता है, हमारा हमेशा फेवरेट होता है. बस हम लोग पूछते हैं लोगों से, आपको लगता है क्या है कि जीतेगा कौन? तो चलिए, यहाँ पर सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके हमसे शेयर कर रहे हैं अपने दिल की बात, आपने शेयर किया. मिस्टर पूरन, थैंक यू सो मच. नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? आइए आइए आइए. आयशा जी कहाँ चली? आयशा जी कहती है हाँ मुझे शर्म आ रही है, लोग मुझे देख लेंगे. अरे रेडियो पे कौन देखता है, टीवी पे देखते हैं, कोई बात नहीं. चलिए, तो यहाँ पर आप लोग भी अगर चाहे तो अपने फेवरेट टीम को प्ले करते हुए कभी भी देख सकते हैं. रात का टाइम होता है और कई सारे लोग हैं, मम्मी कहती है भाई टीवी मत लगाओ, और हम लोगों को तो अच्छा लगता है कि जब हम मैच देख रहे हैं टीवी पे वॉल्यूम हाई होता है. तो ऐसा करो, अगर आपके पास ये ऐप है आपके मोबाइल पे तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपने टीवी के साथ, अपने कमरे में आराम से मम्मी पापा को डिस्टर्ब ना करते हुए अपने अपने मैचेस देख सकते हैं. और मैच देखने के लिए जैसे

ने कहा आपको क्या करना है, MBC Play 1.0 डाउनलोड करना है। पुराने वाले को भूल जाओ, नए वाले को अपनाओ। Google Play, App Store, App Gallery, Android, कहीं जाकर आप जाकर ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और फिर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है।

So, well, friends, आपका warm welcome. दोपहर के 2:30 Sunday afternoon, and it's time for your plug and play. मैं हूँ परी आपके साथ and wishing you all a wonderful Sunday afternoon. I do hope आज का Sunday quite relaxing आपके लिए. It's 14th of June. So everyone जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, wishing you a wonderful time. Good music लेकर आए हैं आपकी इस afternoon को सजाने. साथ में होंगे आपके messages, आपके dedications, आपका प्यार on 54991294. This one goes out for all the fans of KK. A beautiful song. Enjoy this one.

So well friends, it's time for your plug and play Sunday afternoon और आप connected हैं हमारे साथ यानी कि on RM2 Radio मस्ती मैं हूँ परी और साथ रहेगा आपका और मेरा till 4 PM. वैसे दोस्तों संडे जो है इट्स ऑलवेज स्पेशल लगता है कि पूरे हफ्ते जो काम किया है जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है जहां पर आपको भी कुछ आराम की पाई है जिसने सुनते सुनते आपका ये जो टाइम है ये एकदम मस्त तरीके से बीतने वाला है और वेल जैसे हम कहते हैं कि म्यूजिक सिर्फ सुर और ताल नहीं होता है कभी कभी हमारी खामोशी बन जाता है कभी हमारा सहारा और कभी बिना कुछ कहे हमारी दिल की बात बयां कर जाता है कहते हैं ना कि जहां पर वर्ड्स फेल वहां पर म्यूजिक स्पीक्स और हम भी लेकर आए हैं गुड म्यूजिक आपके लिए मैं हूं परी आपके साथ आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों सो टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन यानी कि जैसे हम कहते हैं कि बीट 60s बीट 70s 80s 90s 2000 या फिर हमारे जो लेटेस्ट ट्रैक है हमेशा कुछ ना कुछ खास और स्पेशल आता रहा है जो आपके दिल को हमेशा छू जाता है सो ऐसे ही एक म्यूजिकल जर्नी आपके लिए विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फिर मिलेंगे चलते चलते वैसे हम तो आप ही के साथ है टिल 4 PM और आप भी अगर हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर एंजॉय दिस वन

एग्जैक्टली जैसे आप हमारे साथ हैं तो हमें भी लगता है एवरीथिंग इज ऑलराइट. सो बस इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए और थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. नेक्स्ट ट्रैक और उसके बाद होंगे समाचार, उसके बाद दौड़ कर आएंगे. दैट्स योर प्लग एंड प्ले ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी

0: डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM2 Radio Musti. The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
3: Radio Musti.
4: North. South.
5: 103.5.
4: East. West.
5: 96.4.
4: Center.
5: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
7: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: Time check exactly 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
9: नमस्कार दीप। नमस्कार परी। सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यूक क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प दुखद घटना में बदल गई। बेजुतोंबो निवासी 28 वर्षीय गायल सदल की कल शाम रबस्कोट पर हुई एक घटना में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। इस संदिग्ध स्थिति की सूचना देने वाली गुमनाम कॉल मिलने पर वालिद फैत पुलिस मौके पर पहुंची जहां उन्हें 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। उन्हें तुरंत जितो अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी की गई और बाद में पुलिस निगरानी में भर्ती किया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पुलिस अब तक उनका बयान दर्ज नहीं कर सकी है। फ्रांस के सेंट डेनी करेक्शनल ट्राइब्यूनल ने रियूनियन और मॉरिशस के बीच संचालित बड़े पैमाने के खनविज तस्करी नेटवर्क से जुड़े मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मॉरिशस के कुछ नागरिकों सहित कुल 12 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। आरोपियों पर रियूनियन से मॉरिशस तक सैकड़ों किलोग्राम खनविज की तस्करी करने का आरोप था जिसकी अनुमानित बाजार कीमत कई मिलियन यूरो की बताई गई है। ये मामला साल 2022 में की गई एक बड़ी जब्ती कार्रवाई के बाद सामने आया जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थ की खेप को बरामद किया था। अदालत के फैसले के साथ इस बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है और अभी के लिए क्वालिफिकेशंस राउंड चल रहे हैं। प्रारंभिक क्वालिफिकेशंस में ग्रुप ए, ग्रुप बी और से ग्रुप एफ तक मैच लग रहे हैं और कल तथा परसों के मैच को पार करके कई ग्रुप्स क्वालिफाई हो चुके हैं। फुटबॉल कप के अंतर्गत ग्रुप बी कतर, स्विट्जरलैंड, 2 बजे ब्राज़ील, मोरक्को और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में हाइटी स्कॉटलैंड का स्कोर रहा। और तलब है कि हाइटी 52 सालों के बाद विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। 1974 में आखिरी बार इस टीम ने वर्ल्ड कप के लिए खेला था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC.

0: तो चलिए दोस्तों 3:08 हो गए हैं. आई डू होप यू आर एंजॉयिंग योर संडे आफ्टरनून RM2 रेडियो मस्ती के साथ. मैं हूं परी टिल 4 PM आपका साथ निभाऊंगी और लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. वेल दोस्तों, अगर हम म्यूजिक की बात करें तो क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम खुश होते हैं हम गाने गुनगुनाते हैं, जब हम सैड होते हैं तो हम गानों को सुनते हैं. क्योंकि होता है ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके दर्द पर एक मरहम की तरह होते हैं, और म्यूजिक हमारे इमोशंस का सबसे बड़ा कंपेनियन होता है. और हर पुराना गाना सुनते ही लगता है कि शायद स्कूल की याद आ रही है, शायद बचपन की याद आ रही है. होता है कि कभी कभी आपके जो पेरेंट्स जिन गानों को सुनते थे उनको सुनकर आप अपने बचपन में लौट जाते हैं, और कभी कुछ रोमांटिक मेलोडी सुनते ही हमें कोई स्पेशल इंसान याद आ जाता है. और म्यूजिक के पास कह सकते हैं कि एक सुपर पावर है जो यादों को जिंदा करने की पावर रखता है. अभी के लिए तो हम भी आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान के पास एक प्लेलिस्ट जरूर होती है जो उसे उसकी कहानी सुनाती है. सो आई एम श्योर कि आपके भी कुछ प्यारे गाने होंगे और हमारी ये प्लेलिस्ट शायद आपके दिल के प्लेलिस्ट से भी मैच कर जाए. तो चलिए दोस्तों, साथ रहेगा आपका और मेरा ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती टिल 4 PM. एंड तब तक के लिए हम कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं. हमारे दिल की प्लेलिस्ट से निकला हुआ ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम. That's a beautiful song. Udit Narayan ki awaaz. Unke sabhi fans and goes out hamare sabhi dear listeners ke naam. Enjoy this one.
1: You're listening to Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

सो वेल फ्रेंड्स, 3:22, हाउ इज योर संडे गोइंग? आई एम श्योर कि आप एकदम एंजॉय कर रहे हैं अपने संडे को. और जैसे हम कहते हैं कि एक ही तो दिन मिलता है जहां पर आप पूरी तरह से रिलैक्स हो सकते हैं, ऐसे में कुछ लोगों को भी काम पे जाना पड़ता है. सो आई अंडरस्टैंड दैट, हाउ डू यू फील? लेकिन कहते हैं ना कि म्यूजिक से बेटर कोई और थेरेपी हो नहीं सकती. तो हमारी कोशिश यही है कि आप जहां कहीं से भी कनेक्टेड है, ये म्यूजिक थेरेपी हम अब तक जरूर पहुंचाए. सो मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. यहां पर कहते हैं परी नमस्ते. नमस्ते आपको भी. और आप जाना जी है फ्लैग से. ओके, और इस वक्त आप काम कर रही हैं. देखिए, हमें पता था कि संडे के दिन भी आप आराम नहीं करेंगी और आप काम ही करेंगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालिए. अभी के लिए रेडियो से हम तो आपके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही आपके लिए गुड गुड विशेज हम पहुंचाते रहेंगे. इस वक्त याद कर रही है सभी परिवार को, रीमा, जनता, सेष्टा, अंजनी, सिल्विया, युवी, कृषि, शिव, सरन परिवार, जो इस वक्त हमारे साथ

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं

0: भाई इश्क में तो जीना है और हम तो कहते हैं कि म्यूजिक से बेटर आपका कोई और दोस्त हो नहीं सकता। आजकल दुनिया भर में म्यूजिक थेरेपी को एक साइंटिफिक थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस से कम करता है म्यूजिक, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है म्यूजिक, एंजाइटी को रिड्यूस करता है म्यूजिक और स्लीप इम्प्रूव भी करता है म्यूजिक। तो सोचिए दोस्तों, जब आपका दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहा हो, आप अपना फेवरेट गाना लगा लें और उसके बाद कुछ ही मिनटों में आप देखते हैं कि आपका मूड कैसे चेंज हो जाता है। सो कहते हैं ना कि म्यूजिक हैज अ हीलिंग पावर, और ये तो हम मानते हैं कि म्यूजिक कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन हाँ एट टाइम्स ये मेडिसिन से कम भी नहीं। सो अभी के लिए हम भी लेकर आए हैं गुड म्यूजिक आपके लिए, जिसे सुनते सुनते आपका ये जो संडे है और भी खास एंड स्पेशल हो जाए। एंड ऑफ कोर्स इस वक्त हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन 5499 1294। सो यहाँ पर बरखा जी कहती हैं व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और अगला गाना डेडिकेट करना चाहती हैं आप फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती। थैंक यू जी, धन्यवाद। और साथ ही यहाँ पर सारिका जी हमारा साथ दे रही हैं, आप कहती हैं गाना फॉर समवन वेरी स्पेशल, थोड़े से नाराज है और बस उनके लिए प्यार भेज रही हूँ। एंड थ्री इडियट्स का गाना उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, सो आई विल ट्राई, आई कैन प्ले दिस गाना, वादा नहीं करते लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। साथ ही यहाँ पर हमारे अपारू परिवार जो हमेशा साथ निभाते हैं और रेडियो मस्ती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका मैसेज ना आए। सो थैंक यू सो मच, एंजॉइंग द वंडरफुल ट्रैक्स। एंड इस वक्त आप है बेलमा मी, और अगला गाना डेडिकेट कर रहे हैं हम बहुत ही प्यार से फॉर दारेन, श्वेता, रवीश, प्रीशा, लवशा, अपारू परिवार और फॉशनोआ। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। और कहते हैं दैट मैं भी तो पहुंच चुका हूँ सी साइड, अरे वाजी वाह, वेरी नाइस, एंजॉइंग योर संडे। आप है कुमार देवीचंद और डेडिकेटिंग गाना फॉर पापा श्याम देवीचंद ऑफ फेवे, एंजॉइंग द सॉन्ग्स फुल वॉल्यूम पर। सो एक गाना ऐसा जो बिल्कुल एक थेरेपी की तरह है, सो दिस वन गोज आउट आप सभी के नाम, एंजॉय योर संडे। ये है RM2 रेडियो मस्ती।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
2: You're listening to Radio Masti.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: सो वेल फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं कि म्यूजिक में तो एक पावर होता है जो बिल्कुल आपके दिल को हैप्पी हैप्पी फील करवाता है. और म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन ये एक दोस्त भी है, एक थेरेपिस्ट भी है और एक मेमोरी कीपर है. और जैसे हम कहते हैं कि एक आपका साइलेंट कंपेनियन की तरह होता है. कभी कभार जब जिंदगी का शोर बढ़ जाता है तो ऑल यू हैव टू डू इज आपके म्यूजिक का वॉल्यूम आप थोड़ा सा हाई कर दीजिए और फिर देखिए सब कुछ एकदम ठीक ठाक, एकदम परफेक्ट लगेगा. सो वेल फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. और आ गए हैं संजय इन स्टूडियो आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर. सो एंजॉय योर संडे उनकी कंपनी में. मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड हैव अ वंडरफुल संडे आफ्टरनून.
1: You're listening to Radio Masti.

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: RM2 Radio Musty.
3: The time is brought to you by McDonald's.
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musty.
5: North. South.
6: 103.5.
5: East. West.
6: 96.4.
5: Center.
6: 99.4.
1: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty. Feel the musty.
7: इसमें शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
8: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आज आप संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। एक महीने से कुछ अधिक समय में एल नीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर देगा जो 8 महीने तक चल सकता है और इसका असर मॉरिशस पर भी पड़ेगा। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेनकोपे मुटु के अनुसार इस अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकता है जिसमें लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक भारी बारिश और कृषि, समुद्र व खाद्य सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना का सामना करने की दिशा में हमें अपने संसाधनों को तैयार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही ये दूर ही घटना लगे लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। कुछ ही महीने के भीतर दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशल्स की परिवहन, बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोथ ने पिछले सप्ताह लातुकेनिक स्थित एनटीसी डिपो का दौरा किया। मॉरिशस के आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान माओमेद के साथ उन्होंने जनवरी में अपनी पिछली यात्रा के बाद से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हुई प्रगति का जायजा लिया। ये यात्रा टिकाऊ गतिशीलता के क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभवों से प्रेरणा लेने

0: की सेशल्स की इच्छा का हिस्सा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनके आगमन को लेकर भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि श्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है और विदेशों में भारतीयों को पहले से अधिक सम्मान मिल रहा है। फ्रांस में उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 710 हो गई है। कोंगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इन पुष्ट मामलों में इस बीमारी से जुड़ी 149 मौतें शामिल हैं। कोंगो सरकार ने कहा कि वर्तमान में लगभग 300 लोगों का अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में इलाज चल रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे अब विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: Music, Dr. Gutter. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: Yes, आपकी बेकरारी को दूर करने आ चुके हैं हम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब वेरी वेरी हैप्पी एम आई टू बी हैविंग योर कंपनी आप जहां पर भी से हमारे साथ निभा रहे हैं विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी नाइस लिसनिंग आई वाज ड्राइविंग टू मोका फ्रॉम द नॉर्थ And I was listening to Buddy. Wow. Kya gaane the. And how refreshing the songs were. Aur drive karte hue kitna achha lag raha tha unko sunne ke liye. I do hope ki you'll be scotched to Radio Masti. Hamare sang bhi. Ab ise lekar 7 baje tak. It's going to be nothing and nothing but good music. Just like koi taza hua

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: कोई ताजा हवा रेडियो मस्ती जो आपको फिर से स्फूर्ति दे दे स्पेशली फॉर संडे आफ्टरनून। जारी रखते हैं प्रोग्राम को एक गेम के साथ। यस, लुकिंग फॉर द परफेक्ट गिफ्ट आइडिया मिस्टिक वर्ल्ड MU। यस, डिस्कवर अवर एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेकोर। mysticworld.mu has exactly what you are looking for. Visit our website today or call us on 5880-7652. 5880-7652. और Mystic World की ओर से आपको हासिल होने वाला है 500 रुपीस का एक गिफ्ट वाउचर। और गिफ्ट वाउचर अगर आपको जीत आपकी जीत होती है देन दिस 500 रुपीस गिफ्ट वाउचर विल बी पोस्टेड टू यू। सो आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस हमारे अगले सवाल का जवाब देना है बाय सेंडिंग ऑन व्हाट्सएप 5499124। और सवाल बहुत बहुत बहुत आसान, बस आपसे ये मांग है कि अगर आपकी अभी हाल में जीत हुई है प्लीज प्लीज गिव चांस टू अदर पीपल टू पार्टिसिपेट। ओके, आज की तारीख 14th of June और आज बॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर गायक अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सो इजी, इससे आसान हो ही नहीं सकता था। आप अपना नाम, अपना पता, गायक का नाम लिख भेजिए ऑन 5499124। क्विक क्विक क्विक

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: से कुछ समय पहले हमने आपसे सवाल किया था, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही जल्द, बहुत ही इंस्टेंटेनियसली जैसे कि आपके जवाब बरसने लगे on 549-9294। आज की तारीख 14 जून और आज टुडे इट्स अ बर्थडे ऑफ वन ग्रेट सिंगर ऑफ बॉलीवुड। इनका कभी हाल में वे मुशीस भी आए थे और उन्होंने एक कंसर्ट भी दिया था, बड़ी सक्सेसफुल कंसर्ट जो लोगों को बहुत ही पसंद आया। Yes, we are talking about Zubeen Nautiyal, born on 14th June 1989. Aaj ve 67 saal ke ho rahe hain. And a very happy birthday to Zubeen Nautiyal. Aur this game was sponsored is sponsored by Mystic World, जिनके ओर से 500 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर आपको मिलने वाला है। और किसके नाम जाने वाला है ये इनाम, इससे पहले हम सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इस खेल में भाग लिया। बट जस्ट आज आई सेड हम उन लोगों को मौका देते हैं जिन्होंने अभी तक इस रेडियो पर इनाम नहीं जीते। सो आफ्टर चेकिंग आउट ऑल द नेम्स जिनका नाम उभर कर आया, इट इज रेशमा बुलक जी फ्रॉम प्लेंडेगोश। बधाई रेशमा जी, यू आर विनिंग 500 रुपीज गिफ्ट वाउचर विच विल बी पोस्टेड टू यू थ्रू पोस्ट, और जिसके जरिए आप मिस्टिक वर्ल्ड से खरीद पाएंगे आपका ड्रीम गिफ्ट। बधाई आपको और जितने भी लोगों ने भाग लिया, बट लक नेक्स्ट टाइम।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस म्यूजिकल जर्नी। बेला से कविश भाई हमारा साथ निभा रहे हैं और उनकी ओर से खास तौर पर ये गाना गोइंग फॉर ब्रो अविनाश और संजीव जी के लिए।

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: रेडियो मस्ती के साथ
0: वर्ल्ड कप मैगजीन।
2: 11 जून से वर्ल्ड कप का बुखार तो चढ़ा हुआ है और एमबीसी प्ले के साथ जहां पर भी है इट्स फोमी लिटरली। इट्स काम पर भी, सफर में भी, वीकेंड में भी, इट्स वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड कप। जस्ट टू रिमेन एट पार कि क्या कुछ हो रहा है। जहां तक रिजल्ट का सवाल है, सभी लोग जानते हैं कि यूएसए ने पराग्वे को 4-1 के स्कोर पर हराकर बहुत गुड इंप्रेशन किया है ग्रुप डी। ग्रुप बी में कल इन एक्सट्रीमिस क्वाटा ने स्विट्जरलैंड के साथ मैच ड्रॉ किया 1-1। गुड रिजल्ट फॉर मोरक्को। मोरक्को जिसने पिछले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा, रीचिंग द क्वार्टर फाइनल्स। तो मोरक्को ने ब्राजील को 1-1 के स्कोर पर ड्रॉ किया। स्कॉटलैंड ने हाइची को 1-0 से हराया इन ग्रुप सी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से टर्की को हराया। टर्की वाज फेवरेट टू गो थ्रू और टर्की ने बहुत अच्छा भी खेला, बहुत ऑफेंसिव फुटबॉल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बहुत अच्छी तरह से रेजिस्ट किया एंड वेरी वेरी लीथल इन काउंटर अटैक, और ऑस्ट्रेलिया ने टर्की को 2-0 से हराया।

0: Everyone would be wishing to know Germany versus Curaçao. ये क्यूरासाओ देश कहां पर होता है और कैसे पहुंचा यहां पर? I suppose each and everyone, many of football प्रेमी जो हैं, would like to know कि ये देश कहां पर है और कैसे it forms part of this final World Cup tournament. इस टीम के बारे में आने वाले दिनों में बहुत चर्चा होगी. बस देखना है कि फील्ड पर उनका प्रेस्टेशन कैसे होने वाला है. इन ए ग्रुप जहां पर जर्मनी भी है, जहां पर आइवरी कोस्ट भी है और इक्वाडोर भी है. टू बिग टीम्स, जर्मनी एंड आइवरी कोस्ट. इक्वाडोर आल्सो गुड. अब ऐसे ग्रुप में क्यूरासाओ क्या करेगा? लेट्स होप एंड सी.
1: RM2, Radio Masti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: आपकी संडे शाम संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। थैंक यू फॉर योर न्यूमरस मैसेजेस नेशन, जो पोल्ट्री से हमारा साथ निभा रहे हैं, आपको हमारा सलाम राम। भाई संजय ही है, अंजू उनके पति संजय फ्रॉम नुवेल फ्रांस लिसनिंग टू द शो। कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द होल रेडियो मस्ती टीम, थैंक यू। नेक्स्ट सॉन्ग आल्सो गोइंग फॉर अनीता जी, जो फिकम फ्लक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड एंजॉयिंग ऑल द सॉन्ग्स। दिव्या जी जो बाकवा से हमारा साथ निभा रहे हैं, उनकी ओर से फॉर द होल जिबोट फैमिली। रेनू जी होशनुआ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको हमारा सलाम। हमारे दोस्त अलविन अलकागी जो लालमाचिक से हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। श्याम जी स्विट्जरलैंड से रेडियो मस्ती की का आनंद उठा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस वन आल्सो गोइंग उनके सभी दोस्तों के लिए, उनके साथ बहनों के लिए, दो भाइयों के लिए। ऑल विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू वैभव राम याद ऑफ लाफलोगा, शुभकामनाएं फ्रॉम पापा विशाल एंड मामा।

0: Setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: आइए जानते हैं MBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका. Step 1. सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में. अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल. स्टेप 2. अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस. एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना

0: प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Music, Tak Tak Tak. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 5:37 कुछ लोगों के लिए एक हैबिट एक रूटीन सा बन गया है, एक आदत सी बन गई है। संडे की शाम को व्हेन यू आर बिजी इन द किचन टू ट्यून इन एंड टू लिसन टू द वेरी गुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती, और कुछ ऐसा ही माहौल छाया हुआ है इन लोगों के यहाँ। और मैसेज है नीरू जी की ओर से और उनकी सिस्टर इन लॉ आरती, बोथ आर कुकिंग एंड एंजॉयिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। नेक्स्ट गोइंग फॉर हबी विशाल एंड ऑल द किड्स। ये मैसेज है विद्या जी की ओर से जो लिखते हैं, वन मंथ आई वाज ऑन क्रूज एंड आई वाज लिसनिंग टू रेडियो मस्ती ऑन माय फोन, नाइस अनफॉरगेटेबल मेमोरीज लिखते हैं विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सॉन्ग वाज गोइंग फॉर सोनम जी, उनकी ओर से फॉर द होल भोला फैमिली, स्पेशली एंजल अश्विनी एंड अविशा। साथ ही साथ नेक्स्ट वन गोइंग All those जो इस समय काम करते हुए हमारा साथ निभा रहे हैं और जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, For all the दीवाने and दीवानीज of Radio Mustang।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यस, टाइम फॉर आवर फैशन टिप्स। पिछले संडे को वी टॉक्ड अबाउट विंटर फैशन टिप्स और हमने द आर्ट ऑफ लेयरिंग की बात की थी, द बेस, द मिड लेयर एंड द आउटर वेयर। आज वी बी टॉकिंग अबाउट, वी फोकसिंग ऑन वार्म लुक्स फैब्रिक्स। और यहाँ पर भी तीन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। फर्स्ट वन इज टू अवॉइड सिंथेटिक्स, सेकंड वन इज टू प्रायोरिटाइज नेचुरल फाइबर्स, और तीसरा टू मिक्स टेक्सचर्स। So, avoid synthetics. क्यों? Stay away from acrylic blends that trap sweat and cause discomfort. जो synthetic होता है वो पसीने को trap करके रखता है और इसे बदबूदार महक आती है. Second, prioritize natural fibers. Merino wool, cashmere and alpaca are breathable, incredibly soft and itch free. यानी कि इससे irritation नहीं होता है. And then mixed textures, adept by pairing leather pieces with chunky knits and smooth wool. So these are the tips which are very important to look into during winter.
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हमारा आपका मिलना हर संडे की शाम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती एक आदत सी बन गई है और थैंक यू एवरीवन फॉर सेंडिंग मी सच नाइस मैसेजेस दिस वन कमिंग फ्रॉम नंदिनी जी शुक्रिया नंदिनी जी आपके मैसेजेस के लिए मारा जी हमारा साथ निभा रही हैं उनकी ओर से नेक्स्ट गोइंग फॉर द होल साई फैमिली एंजॉइंग इन द रीजन ऑफ बासन कैटरबोन अनिता जी के लिए नेक्स्ट सॉन्ग साथ ही साथ फो मामा शारदा बगन सुया बिहारी जी की ओर से फ्रॉम कोंगोमा इसमें हमारे तमाम सुनने वालों को हम करते हैं सलाम एंड दिस वन वाज गोइंग फॉर स्पेशल फ्रेंड इन नीतू ऑफ फार्मा रोड कैटरबोन एंड अ फैमिली विशिंग हर सेफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस राजीव जी की ओर से फ्रॉम सेंट पियर And this next one going for Habibi Vishal, her daughter Shriya, Betty Neil and Papa Satish Ramdin, Priya Apaduki Orse. I just love this one.

0: रविवार 14 जून 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेन कोपे मुटु के अनुसार अगले महीने से शुरू होने वाला एल नीनो लगभग 8 महीने तक मॉरिशस के मौसम को अप्रत्याशित बना सकता है। इसके कारण सूखा, भारी बारिश और कृषि, समुद्र और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है, जिससे निपटने के लिए उन्होंने समय रहते तैयारी करने पर दिया है जोर। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताहांत देश भर में कई रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। फिनिक्स, फ्लैक और मोका में बड़ी संख्या में लोगों ने किया है रक्तदान। यह एक छोटा परंतु जीवन बचाने वाला कदम है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 710 हो गई है विदेश स्तर पर, और अब तक इस बीमारी से 149 लोगों की हो गई है मौत, जबकि करीब 300 मरीज अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में उपचाराधीन है। और ट्रंप द्वारा रविवार को हस्ताक्षर किए गए अनुमान के बावजूद ईरान का कहना है कि अमेरिकी समझौते पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो बड़ी खबर है। एक महीने से कुछ अधिक समय में एल नीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर देगा, जो 8 महीने तक चल सकता है और इसका असर मॉरिशस पर भी पड़ेगा। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेन कोपे मुटु के अनुसार इस अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकता है, जिसमें लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक भारी बारिश और कृषि, समुद्र व खाद्य सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव शामिल है। उन्होंने कहा कि इस घटना का सामना करने की दिशा में हमें अपने संसाधनों को तैयार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही यह दूर की घटना लगे परंतु यह हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्रशांत महासागर में होने वाले उतार चढ़ाव का मॉरिशस की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमारा द्वीप एल नीनो घटना से प्रभावित हो सकता है। समुद्र वैज्ञानिक वासेन कोपे मुटु के अनुसार प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की इस घटना का प्रभाव जुलाई से शुरू होकर लगभग 8 महीनों तक बना रह सकता है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। जुलाई अगस्त तक इसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ेगा। संभव है कि गर्मी के पूरे सीजन में बारिश ही न हो। मॉरिशस में इस जलवायु परिवर्तन के दौर का पर्यावरण, कृषि और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी के कारण कोरल्स प्रभावित होंगे, तापमान ज्यादा होगा, सूखा होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकता है।
2: Et la sécheresse importante qui va être là va créer beaucoup d'impact sur notre sécurité alimentaire.
1: समुद्र वैज्ञानिक का कहना है कि इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गर्मी और नमी एक साथ होगी तो हमारा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
2: 45-50 degrés, donc l'effet ce qu'on appelle wet bulb. Donc notre pays sera grandement affecté.
1: वासेन कोपे मुटु के अनुसार एल नीनो कोई असाधारण या नई घटना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और तीव्रता में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इस पर पहले से कहीं अधिक सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता है।
2: Tous les services météorologiques internationaux sont en train de mettre en garde.
1: अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा हर जगह इसकी चेतावनी दी जा चुकी है। इस बार एल नीनो के कारण एक ही समय पर कई प्राकृतिक प्रकोप एक साथ होंगे, व्यवस्था करनी चाहिए। एल नीनो हमें याद दिलाता है कि हमारा छोटा टापू देश भी वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के बड़े प्रभावों से अछूता नहीं। इसकी अवधि लगभग 8 महीने तक रह सकती है, इसलिए इसके

0: संभावित प्रभावों का समय रहते आंकलन करने और उससे निपटने के लिए निरंतर निगरानी बेहद आवश्यक है।
1: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गैस गीजर से होने वाले हादसों और कार्बन मोनोक्साइड के जहर का खतरा बढ़ जाता है। गलत तरीके से इंस्टॉलेशन, वेंटिलेशन की कमी और पाइपों का सही रखरखाव न होना, बाथरूम जैसे बंद स्थानों में पलक झपकते ही कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सिंचा मधु की रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का।
2: साल की शुरुआत से अब तक देश में गैस वाटर हीटर के कारण कार्बन मोनोक्साइड इंटॉक्सिकेशन के 6 मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक प्रमुख गलती है उपकरण को बाथरूम के अंदर स्थापित करना। स्टेशन फायर ऑफिसर जोवानी गिजाना कहते
3: हैं,
2: इस उपकरण का इंस्टॉलेशन एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा किया जाना चाहिए। बाथरूम के अंदर कम से कम एक ओपनिंग और उचित वेंटिलेशन होना आवश्यक है, चाहे वो खिड़की के माध्यम से हो या दरवाजे के। कुछ लोग अपार्टमेंट्स में या ऊंची मंजिलों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर खिड़की लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में एक मैकेनिकल एक्सट्रैक्टर स्थापित करना चाहिए जो वायु को अंदर से बाहर भेजे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये उपकरण घर के बाहर लगवाना बेहतर समझा है। आंसोफी मारीजान कहती हैं, हमने हीटर बाहर लगवाया है ताकि जब गैस जले तो धुआं बाहर ही रहे और हम सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकें। कुछ दुकानें अब ज्यादा सुरक्षा की सुविधाओं वाले नए गैस वाटर हीटर के मॉडल प्रस्तावित कर रही हैं। व्यापारी शबनम बंधु कहती हैं, हमारे पास एक नया मॉडल है जिसमें मोनोक्साइड डिटेक्टर स्थापित हैं। इससे अगर मोनोक्साइड गैस की मात्रा बढ़े तो उपकरण अपने आप ही सप्लाई बंद कर देता है। कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसा गैस है जिसका कोई रंग या गंध नहीं है और इसे ज़्यादा सूंघने से चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी भी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये जानना आवश्यक है। जोवानी रजाना कहते हैं, सबसे पहले बाथरूम खोलकर व्यक्ति को घर के बाहर खुली हवा में लाना चाहिए, उसे वेंटिलेशन मिलना चाहिए और हमें 114 या 115 पर फोन करना चाहिए। वाटर हीटर की लौ के रंग पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर वो नीली है तो ठीक है, अगर पीली या ऑरेंज है तो ये खराबी का संकेत है। इसलिए हर साल किसी योग्य टेक्नीशियन द्वारा गैस वाटर हीटर का निरीक्षण और मेंटेनेंस करवाने की सलाह दी जाती है।
1: डिक्रिमिनलाइज करें या फिर लीगलाइज करें या फिर नहीं, कैनाबिस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। क्या यह वास्तव में अन्य नशीले पदार्थों की ओर ले जाने वाली एक शुरुआती ड्रग है जैसा कि कुछ लोगों का दावा है, या फिर उन लोगों की मदद करने का समाधान है जो हार्ड ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स की लत के दलदल में डूब चुके हैं। जो लोग पहले ही इस नर्क को झेल चुके हैं वे इस पर अपना नजरिया समझा रही है। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
2: गांजे से लेकर सिंथेटिक ड्रग तक शेरा ने हर तरह के नशीले पदार्थों का सेवन किया है, लेकिन आज 8 साल हो चुके हैं जब से 46 वर्षीय ये व्यक्ति पूरी तरह से नशे से मुक्त है। उसे ड्रग्स की दलदल से निकालने में कई अन्यों के साथ जोजे भी शामिल रहे। वो खुद पिछले 40 सालों से नशे से दूर हैं और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित किया है। मैंने कई लोगों की मदद की है, मैं समाधान देता हूँ जो एक मजबूत मेडिकल उपचार से गुजरता है, लेकिन साथ ही मनोवैज्ञानिक समर्थन जरूरी होता है। व्यक्ति को ट्रीटमेंट देकर छोड़ देना उचित नहीं होता। आज के तेज पदार्थों के कारण हमें नियमित फॉलोअप करना जरूरी होता है। सामने आने वाले सवालों में ये मुद्दा भी है कि क्या उसके द्वारा प्रस्तावित थेरेपी में गांजे का इस्तेमाल शामिल है। जोजे कहते हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सिंथेटिक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष के लिए गांजे का वैधीकरण आवश्यक है, लेकिन इस पर मेरा विचार अलग है, क्योंकि ड्रग्स का नशा करने वाले बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी थोड़े गांजे के साथ शुरू किया था। असल में यही लत की शुरुआत है, क्योंकि थोड़े नशे के बाद लोग ज्यादा की तलाश करने लगते हैं। कुछ लोगों का

मानना है कि गांजा एक गेटवे ड्रग की तरह है, यानी उसी से शुरू करके लोग ज्यादा खतरनाक मादक द्रव्यों के सेवन तक पहुंचते हैं, लेकिन इस मान्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। गेटवे ड्रग की थियोरी को लेकर ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम्स की तरफ से 2018 में प्रकाशित 23 अध्ययनों के अनुसार गांजे और तेज मादक पदार्थों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया।

0: प्राथमिकता देनी है, ये अभी देखना बाकी है। खुद ड्रग अधिक रह चुके इमानुएल के पास कुछ प्रस्ताव हैं। वे कहते हैं, मेरे हिसाब से बेहतर होता कि हर एक के यहाँ गांजे का एक पौधा होता, और दूसरी तरफ से मैं सरकार से मांग करूंगा कि गांजे को लेकर सभी नियंत्रण प्रणालियां लागू की जाए। इसका कंट्रोल एएमबी की तरह ही हो सकता है, जो लहसुन प्याज आदि का नियंत्रण करता है। स्थानीय कलाकार स्काई टूबी के शब्द भी दिल से निकली पुकार की तरह है, एक मदद की गुहार। हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। ड्रग्स के माहौल में रहकर उससे बचे रहना बहुत मुश्किल है। मेरी मांग यही है, मानसिकता बदल कर हमारी मदद कीजिए। सफर में कई रास्ते हैं तो कई दृष्टिकोण भी, सबका केंद्र एक है, ड्रग्स की दलदल और एक अनसुलझा सवाल, इस नर्क से कैसे छुटकारा पाया जाए।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि आज 14 जून को मनाए जा रहे विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश भर में कई रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। फिनिक्स, फ्लैक और मोका में बड़ी संख्या में मॉरिशनों ने इस नेक काम में हिस्सा लिया। यह एक सरल परंतु बेहद महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, विशेष रूप से कुछ दुर्लभ ब्लड ग्रुप्स और प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए। सगा उनो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
0: कई लोगों ने दूसरों की मदद के उत्साह में अपने दिन के कुछ मिनट रक्तदान के लिए समर्पित किए। विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में सप्ताहांत देश के कई इलाकों में रक्तदान अभियान आयोजित किए गए। देश के स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 140 पाइन खून की आवश्यकता पड़ती है। जमा किए जाने वाला खून किस समय किस मरीज या आम व्यक्ति के काम आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कभी दुर्घटना में घायल तो कभी सर्जरी करवा रहे मरीज या तो नियमित ट्रांसफ्यूजन करवाने वाले पीड़ित। सभी ब्लड ग्रुप्स की मांगे रहती हैं, लेकिन विशेष रूप से ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव की ज्यादा मांगे होती हैं, जिनका स्टॉक अक्सर कम रहता है। ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नलाया कहते हैं, सर्दियों के दौरान लोग घर पर रहते हैं और हमें तभी बड़े वृहद अभियान चलाने चाहिए। इन दिनों ही हमें भीड़ जमा करके जनता की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद करता है। हमें अभी ओ नेगेटिव तथा ग्रुप ए की जरूरत ज्यादा है। हमें प्लेटलेट्स तैयार करने के लिए ताजे खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स 5 दिन से ज्यादा नहीं रखे जा सकते। जहां देश के अस्पतालों में खून की मांगे हमेशा रहती हैं, वहीं अधिकारीगण मॉरिशन जनता से ब्लड डोनर्स बनकर दूसरों की मदद के लिए सक्रिय बनने की मांग करते हैं।
1: तेजी से बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के सामने मॉरिशस के कपरा क्षेत्र की एसएमई नए संतुलन की तलाश कर रही है। आर्थिक दबावों, जरूरी बदलावों और प्रतिस्पर्धा बने रहने की मजबूरी के बीच ये कंपनियां निर्यात बाजार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए विशेषज्ञता, लचीलेपन और विशिष्ट बाजारों पर दांव लगा रही हैं। इस वर्ष लकाज आ एनजीओ अपने अस्तित्व के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी वर्षगांठ को मनाने के लिए और ड्रग्स की बुराइयों का सामना कर रहे परिवारों के लिए किए गए कार्यों पर

0: प्रकाश डालने के वास्ते साल भर कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को एक गिरजाघर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं साल 2026 के विश्व कप प्रतियोगिता के बारे में, जहां पर ब्राजील और मोरक्को के बीच हुआ मुकाबला इस रविवार की सुबह न्यूयॉर्क में अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा। साल 2026 विश्व कप का यह पहला बड़ा और हाई प्रोफाइल मैच था, जिसने शुरुआत में ही रोमांच का एहसास करा दिया और इस दौरान दोनों टीमों के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसकी रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ी। अरविंद बिसेसो की रिपोर्ट।
1: ग्रुप सी वाला कांटेदार मैच ब्राजील और मोरक्को के बीच फुटबॉल के नजरिए से देखें तो बहुत बेहतरीन खेल देखने को मिले। मोरक्को की टीम ज्यादा आक्रामक रही। द एटलास लायंस की दमदार शुरुआत, जाज के पास पर इस्माइला साइबारी, गोलकीपर अलिसन को लॉब करके गोल स्कोर करता है। ब्राजील का रासिलेसाओ तुरंत उल्टा प्रहार करता है, विनिशियस जूनियर का इक्वलाइजिंग गोल। सेकंड हाफ में दोनों टीमों ने खेल का रफ्तार बढ़ाया, मोरक्को को काफी अच्छे मौके मिले, ब्राजील को भी, पर एक भी गोल नहीं बना। हिसाब बराबर। इस ग्रुप के दो फेवरेट के बीच स्कोर 1-1। इसी ग्रुप में स्कॉटलैंड ने आईजी को 1-0 से हराया।
2: I think in the end you would say a draw is a fair result.
0: और आज रात साल 2026 विश्व कप में हाई लेवल के मुकाबलों की एक श्रृंखला के साथ रोमांच और भी बढ़ने वाला है। दिग्गज टीमों और उलटफेर करने का दम रखने वाले बाहरी देशों के बीच अमरीकी मैदानों पर आज की शाम एक शानदार और रोमांचक तथा मनोरंजक खेल का वादा करती है। ज्यादा विस्तार अरविंद बिसे सर के साथ।
1: वर्ल्ड कप 2026 का पहला सप्ताहांत, जिसमें ग्रुप ई की बारी है। यहां पर जर्मनी के द नेशनल मैनचेस्टर मैदान में उतरेगी, उसके सामने है क्वासाओ। ह्यूस्टन स्टेडियम में ये मैच 9 बजे खेला जाएगा। 2018 और 2022 में जर्मनी की टीम ग्रुप स्टेज से ही रफा दफा हो गई थी। इस बार जूलियन नागेलस्मान के खिलाड़ी ऐसी गलती नहीं करना चाहते, मैच जीतकर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। सामने होगी कैरेबियन आइलैंड की टीम क्वासाओ, जो पहली बार विश्व मंच पर कदम रखेगी। फिर 12 बजे मिडनाइट किक ऑफ ग्रुप ई में नेदरलैंड्स का सामना जापान से होगा डलास में। नेदरलैंड्स के लिए जोरांज 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जा पाए हैं, पर वर्ल्ड टाइटल अभी तक हाथ नहीं लगा है। इस बार स्क्वाड में वर्जिल वान डाइक जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, तो ग्रेवेनबर्ग को दी गाकपो के जोश भी है। जापान को अब वर्ल्ड कप का छोटा बच्चा नहीं मानते, पिछले वर्ल्ड कप में जर्मनी और स्पेन को सबक सिखाया था। और कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट का सामना इक्वाटोर से होगा फिलाडेल्फिया में। 12 साल बाद आइवरी कोस्ट के हाथी वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं, पर उनके नामी खिलाड़ी बहुत हैं। टक्कर है एक ऐसी टीम से जो सॉलिड है, खासकर डिफेंस में। पिछले 19 मैचों में इस टीम की हार नहीं हुई है। दक्षिण अमरीकी क्वालिफिकेशन में इक्वाटोर की टीम दूसरे स्थान पर आई थी, अर्जेंटीना से पीछे पर ब्राजील से ऊपर। इन मैचों को आप देख पाएंगे स्पोर्ट्स 11 पर। मैच से पहले स्पेशल प्लाटू ऑन रूट वेर न्यूयॉर्क 9:30।
0: कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशल्स की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोत ने पिछले सप्ताह लातूकेनिक स्थित एनटीसी डिपो का दौरा किया। मॉरिशस के आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के साथ उन्होंने जनवरी में अपनी पिछली यात्रा के बाद से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हुई प्रगति का जायजा लिया। ये यात्रा टिकाऊ गतिशीलता के क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभवों से प्रेरणा लेने की सेशेल्स की इच्छा का हिस्सा है। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: अपने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर पहले से ही विचार कर रहा सेशल्स गणराज्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में मॉरिशस द्वारा की गई प्रगति पर करीब से नजर रख रहा है। ये तकनीकी दौरा दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता साझा करने और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। वेरोनिक लापोर्ट ने कहा, हम मूल ढांचे पर काम कर रहे हैं, हम आपके अनुभवों और चुनौतियों से सीखेंगे, हम ऑनलाइन सीखते रहते हैं। एनटीसी के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में सेवा में मौजूद बुनियादी ढांचा 63 इलेक्ट्रिक बसों तक को चार्ज करने की अनुमति देता है। कई चार्जिंग स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं, जबकि बेड़े और नेटवर्क के क्रमिक विस्तार के सहयोग के लिए अन्य स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इस परिवर्तन की लागत के सवाल के साथ साथ मॉरिशस के यात्रियों और बस कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर भी चर्चा की गई। अंदरूनी परिवहन मंत्री उस्मान माउमेद बताते हैं, डीजल के दाम बढ़ने पर बस कंपनियों ने हमें पत्र लिखा और बस टिकटों पर फिर से गौर करने का आग्रह किया। ये सरकार का एक फैसला होगा। चूंकि मॉरिशस अधिक हरित गतिशीलता की ओर अपना परिवर्तन जारी रख रहा है, मंत्री उस्मान माउमेद याद दिलाते हैं कि अकेले एनटीसी की बसें सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के कुल CO2 उत्सर्जन का 31.6% हिस्सा है। उनके अनुसार ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बसों के बेड़े के विद्युतीकरण में तेजी लाने के महत्व को दर्शाता है।
0: विदेश स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर युद्ध रोकने के समझौते पर रविवार को ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। तेहरान ने इस समय सीमा पर असहमति जताई और उसका कहना है कि आने वाले दिनों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उधर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनके आगमन को लेकर भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दूसरी ओर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 710 हो गई है। और अंत में मौसम का हाल।
4: पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद भी ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 18 से 20 और अधिकतम 24 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइट क्यूबिप में, लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइट क्यूबिप में 85 साल की 85 years old की मिसिस बीबी नसीसा करिम्बकसा, मिसिस बीबी नसीसा करिम्बकसा जिन्हें सब लोग नसीसा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज रात के सात बजे उन्हीं के मकान लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइट क्यूबिप से निकाल कर दफनाने के लिए बिगाह का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7। Prince of Wales सिनेमा कैसे त्रियोली में, Prince of Wales सिनेमा कैसे त्रियोली में 65 साल की 65 years old की श्रीमती जनेगी मुतु पैदाशी नाम पम्बियन्ना और जिन्हें सब लोग रागिनी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पति श्री रामास्वामी मुतु के घर प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। कॉम्बानन ग्रांबोआ में 46 साल के 46 years old के श्री महेश्वर नाथ सिंह सुंदर जिन्हें सब लोग सचिन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती लीलावती सुंदर के घर कॉम्बानन ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रॉबर्ट केनेडी स्ट्रीट रुन्यो मुरेल पेटी राफ्रेमें 81 साल के 81 years old के श्री भोरद्वाज सुकन जिन्हें सब लोग लाल सुकन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निशी सुकन के घर रॉबर्ट केनेडी स्ट्रीट रुन्यो मुरेल पेटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 49 साल के 49 years old के श्री विनय रघुबो जिन्हें सब लोग विकास के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर एस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉल रोड रोशतिया में 86 साल की 86 years old की श्रीमती परमावती पुरंग पैदाइशी नाम दुबरी और जिन्हें सब लोग परमावती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री तुलसी सीतल पुरंग के घर रॉयल रोड रोशतिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांगोप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। रॉयल रोड लावोंचिया में 43 साल की 43 years old की श्रीमती रमेश्वरी सीतल पैदाशी नाम जोहल और जिन्हें सब लोग मनीषा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनकी पति श्री मदन सीतल के घर रॉयल रोड लावोंचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। लापोत प्रोविडेंस पोज दे फ्लैक में 89 साल के 89 years old के श्री हरि सुकन जिन्हें सब लोग गंतो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री नितेश सुकन के घर लापोत प्रोविडेंस पोज दे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 2 PM। Remple-moi. Mandalbe mein Remple-moi, kshama karna, remple-moi. Mandalbe mein 59 saal ki, 59 years old ki, Shri Gopal Shyamlal, Shri Gopal Shyamlal, jinhen sab log Suraj ke naam se bhi jante the, unki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal sapahar ke 3 baje, kal sapahar ke 3 baje, unki patni Shrimati Devyani Shyamlal ke ghar Remple-moi मोंडालबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM. इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: आइए जानते हैं NBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका. स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले NBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में. अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल. स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस. एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा. ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी. यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे. और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा. ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन. तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC प्ले एप्लीकेशन. अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स. ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800.
3: Music, Tak Tak Tak.
4: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: शाम के 6:40 होने को हैं सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन द थर्ड एंड लास्ट आवर ऑफ म्यूजिक टक टक टक

0: छुपाने और जताने की का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे नेक्स्ट संडे को। फिर से आपका दिल लुभाने, आपका दिल बहलाने आएंगे ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। फिलहाल आपको छोड़े जाने हमारे दोस्त निखिल की के हाथों में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड।
1: Music, tuk-tuk-tuk.
2: RM2, Radio Musti.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं निखिल और अगले दो घंटों तक हम साथ लेकर आए हैं आपका संडे का फेवरेट म्यूजिकल अड्डा, आपका अपना बॉलीवुड सिज़लर, सिर्फ RM2 रेडियो मस्ती पर। चाहे आप घर पर फैमिली के साथ हो, रोड पर स्टीयरिंग संभाले हुए हो, या फिर ड्यूटी पर हो, या फिर वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में डूबे हुए हो, आज की शाम हम साथ बिताएंगे बॉलीवुड के बेहतरीन गीतों के साथ, आपके मैसेजेस और दिल से निकली बातों के साथ। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि ये दो घंटे हैं सिर्फ आपके नाम, खास बॉलीवुड सिलसिला शुरू करते हैं।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, अगर तुम साथ हो from तमाशा, one of the brilliant compositions by the genius यार रहमान. उनको genius क्यों कहा जाता है आपको पता है? क्योंकि वो emotions भी दिखाते हैं और music के साथ क्या-क्या experimentation हो सकता है वो भी दिखाते हैं. तो चलिए एक जीनियस से लेकर दूसरे जीनियस तक आते हैं जो अपना कमबैक करना चाहते हैं. यस यस, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा इस्माइल दरबार इज बैक विद अ न्यू प्रोजेक्ट. चलिए उनका ही एक गाना सुन लेते हैं फ्रॉम द मूवी तेरा जादू चल गया. अगर आपको भी अपना जादू चलाना है देन यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. इंतजार रहेगा आपका ओनली ऑन बॉलीवुड सिज़ला.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आज की शाम को और ख़ास करने ऐसे कई गाने हमारे पास हैं, लेकिन अभी के लिए मेरी उम्र के नौजवानों के लिए एक ऐसा गाना फ्रॉम द मूवी पाप, अली अजमत की आवाज़ में गरज बरस। आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ गरज रहा है या बरस रहा है। ओनली ऑन 5499-1294 आपके मैसेजेस का रहेगा इंतज़ार। तब तक के लिए ये गाना

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: रात थोड़ी गहरी होती जाती है, लेकिन अगर आप भी अभी रोड पर हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है हमारी, जल्दी पहुंचने से ज़्यादा सुरक्षित पहुंचना ज़रूरी है। इंडिकेटर दीजिए, स्पीड कंट्रोल में रखिए और दूसरों को भी स्पेस दीजिए। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम घटा दीजिए, ये बताने में थोड़ा सा दिल डूबा जा रहा है, लेकिन घटाना पड़ता है वो सिक्योरिटी पर्पसेस। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं देन प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज बी सेफ। हमारा अगला गाना खास आपके नाम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: ऊंचा लंबा कद रीमेक वर्शन फ्रॉम वेलकम थ्री. आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, नॉट नेसेसरी लगा, आप हमें बता सकते हो 5499-1294 पर. आपके काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, तो पढ़ लेते हैं भाई. कौन कौन है हमारे साथ आज? ये पहला मैसेज, हाय ब्रो, हाउ आर यू, लवली सॉन्ग्स एज यूजुअल, आरएम2 रॉक्स. जी हाँ, आरएम2 रॉक्स. कैन यू प्ले द सॉन्ग जहाँ तेरी ये नजर है? क्या बात, हम चला सकते हैं. वो देखेंगे अभी. फ्रॉम आशा, विश यू लवली गुड नाइट विद द होल आरएम2 टीम. जी हाँ, ये अगला गाना हम करेंगे साथ साथ for a special friend Neetu of Palma 4born and for her family on behalf of Rajiv of Saint-Pierre. Saath hi saath ye gana khas kar aapke liye bhai Kumar Devichan, jo ghar par baithe hamara program full volume par guitar ke saath sun rahe hain. Thank you very much for keeping us company. जी हाँ, ये अगला रिक्वेस्ट फ्रॉम द मूवी शक्ति, अदनान सामी की आवाज़ में, हम तुम मिले यूं प्यार में, अगर हो सके तो चला देना. ये कौन भेजा? रोशनी जी. जी हाँ, हो सके तो हम चला देंगे ख़ास आपके लिए रोशनी जी, लेकिन लेकिन लेकिन ये अगला गाना जो हम चलाने वाला है वो भी हम करेंगे आपके नाम, और साथ ही साथ हम करेंगे ये ललिता जीतन जी के नाम. एक आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं. हाय रोशन फ्रॉम काउंटी मस्पावी, डेडिकेटिंग मेरा चांद मुझे आया है नजर, टू लव सिमी, हैव अ लवली इवनिंग सिमी जी. सिमी जी, आपके पास एक चांद है, इसको खोना मत. और जी हाँ, ये अगला गाना हम करेंगे साथ ही साथ खुशनुआ के आपादी फैमिली के लिए, दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा एंड लविशा, हु आर एंजॉयिंग द लवली एंड मेलोडियस ट्रैक ऑन एयर. और लवली और मेलोडियस ट्रैक की बात चली है तो फिल्म फरेब से ये अगला गाना 1993, इट्स अ ट्रिप बैक मेमोरी लेन.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: वापस स्वागत करते हैं आपका दोस्तों आपके अपने बॉलीवुड सिज़ला की सेकंड आवर में। ये हो रहा है सिर्फ RM2 रेडियो मस्ती पर। जब लोग साथ आते हैं तो जादू सा हो जाता है। जी हाँ, अगले एक घंटे में और भी रिक्वेस्ट और भी आपके मैसेजेस और भी बहुत सारी यादें हम आपको पेश करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मैसेज भेजा नहीं है तो यही सही वक्त है। संडे रात को थोड़ा सा मैजिकल करते हैं, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी दोस्ती का रंग इसमें देते हैं। द नेक्स्ट सॉन्ग इज एग्जैक्टली अबाउट दैट, तेरा मेरा मिलना।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ सर, संडे की शाम है और संडे का मतलब वीकेंड भी होता है और नए हफ्ते की उम्मीद भी। कई बार हम संडे को बैठकर ये सोचते रहते हैं कि पिछले 7 दिनों में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगले 7 दिनों में हमारे साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा। अगर आप इन दो कैटेगरीज में बैठते हो तो हमको मैसेज करो 5499-1294। क्या पता आपके डर, आपके नुस्खे, आपके टिप्स किसी और का उजाला बन जाएं। बस हमें रहेगा आपके मैसेजेस का इंतजार। तब तक के लिए मेरा इंतजार करना इन द वॉइस ऑफ अमाल मलिक।
0: You're listening to a Radio Mastery.

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: पता है संडे को अक्सर जब लोग आराम कर रहे होते हैं तब भी कई लोग अपनी ड्यूटी पर होते हैं, नर्सेस, ड्राइवर्स, होटल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स और कई सारे लोग अभी भी दुनिया चलाने में लगे हैं, जबकि हमने दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। आपकी वजह से हम सबकी जिंदगी आसान बनती है, दिल से हम आपको शुक्रिया कहते हैं। अगर आपको पता है कि कोई अभी काम कर रहा है, कोई दुनिया चलाने में अभी तक संडे रात को बिजी है, तो आप भी हमको बता सकते हो 5499-1294 पर। आपका एक डेडिकेशन, एक छोटा सा मैसेज उनका पूरा दिन बदल सकता है। जी हाँ, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का हमें इंतजार। थोड़ी देर में आपके मैसेजेस भी पढ़े जाएंगे 5499-1294। अभी ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, तो आप अपनी फरमाइशें भेज दीजिए।

कभी कभी एक गाना वो कह देता है जो हम लफ्जों में नहीं कह पाते। उम्मीद करते हैं कि ये गाना हमारे दिल से आपके दिल तक बस बातें ही करता रहे।

0: referring to Radio Misty. Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, संडे की सर्द शाम में आपके गर्मा गर्म मैसेजेस पढ़ने का वक्त आ गया है. इट्स आवर लास्ट मैसेज रीडिंग सेगमेंट और काफ़ी सारे मैसेज हैं भाई. हाय आर जे निखिल, यू हैव अ वेरी नाइस प्लेलिस्ट, थैंक यू वेरी मच. जी हाँ, आपने सही पकड़ा. ए अविनाश जी बांट रहा था, इट्स अ सुनील शेट्टी मूवी एंड अ वेरी वेरी लवली सॉन्ग. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. ये अगला गाना हम करेंगे खास कर फॉर माय बूबू गानी श्वेता हुकुम फ्रॉम हबी रोशन. और ये गाना हम करेंगे उन सब के नाम जो अभी प्यार में पड़े हुए हैं या फिर अपने प्यार को मिस कर रहे हैं. दिस सॉन्ग ऑल्सो गोज आउट टू चर्वी, हवेश एंड विराज. और साथ ही साथ ये गाना हम करेंगे अक्षय जी के लिए जिन्होंने हमको मैसेज भेजा है. जी हाँ अक्षय जी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव ही कीजिए, मैसेज मत भेजिए. Yeah, next song from the movie Love Ratri in the voice of Atif Aslam, Tera Hua. Un sab ke naam, un sab pyar karne walon ke naam, jo abhi humare saath jude hue hain, humari radio masti ki masti mein masti zade bane phire hain.

जी हाँ, ये अगला गाना हम करेंगे सिमी जी फ्रॉम गोजिल के नाम, साथ ही साथ हम करेंगे ये सिमला का नाय फ्रॉम गुडलैंड्स के नाम, आपकी मम्मी अनीता, डैड संजय, ब्रदर अश्विन, सिस्टर इन लॉ आराधना, नीस आरायना, अरेलिया, उर्वशी, कजिन जोशन, निर्मल एंड चाची गायत्री एंड फॉर द होल आरएमटी टीम, थैंक यू वेरी मच।

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, लास्ट कपल ऑफ मैसेजेस करिश्मा की ओर से, करिश की ओर से, वो हबी रवि, ये गाना हम करेंगे साथ ही साथ गीता और सीता बाल।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, दो घंटे का ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आपने बॉलीवुड सिज़ल को अपनी संडे शाम में हिस्सा बनाया। मैं हूँ निखिल, मिलेंगे अगले संडे इसी वक्त इसी जगह। तब तक मुस्कुराए, प्यार बांटिए और जिंदगी की प्लेलिस्ट को कभी पॉज मत कीजिएगा।

0: RM2 रेडियो मस्ती लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती। अब वेरी गुड इवनिंग सभी को, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एंड रात अभी जवान है और बॉलीवुड के सुपर हिट गाने लेकर मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपका साथ निभाने के लिए कंटिन्यूस टिल 12 PM। भाई आज का दिन अगर थोड़ा टफ रहा और थोड़ी सी टेंशन, तो उसको साइड में रखिए क्योंकि हर नई सुबह की शुरुआत एक सुकून भरी रात से होती है। टेक योर टाइम, अनवाइंड और म्यूजिक दुनिया में आपका स्वागत है।
2: सही।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: हाँ, ये सच बात है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसमें छोटी छोटी खुशियां जरूर होती हैं। उन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे गानों का सिलेक्शन जिनसे आपका मूड बिल्कुल सेट हो जाएगा। चाहे कहीं भी हो, घर पर हो या फिर अभी काम पर या फिर कमिंग बैक या गोइंग टू वर्क, जो भी हो रास्ता अब पड़ गया जब हमसे वास्ता, तो म्यूजिक का आनंद तो लेना ही पड़ेगा।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

और भाई अगर म्यूजिक की बात करें तो हर एक गाना एक दूसरे से अलग होता है कंपैरिजन। वैसे कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस कम होता है अगर अपना कंपैरिजन किसी और से करें तो, और ग्रैटिट्यूड से हैप्पीनेस बढ़ती है। आज रात अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए और बॉलीवुड के बेस्ट मेलोडीज गानों के साथ जुड़ जाइए, मुस्कुराइए।

हमारी जिंदगी जैसे एक किताब, और हर किताब में अलग अलग चैप्टर्स तो होते ही हैं। कुछ चैप्टर्स मुश्किल होंगे, लेकिन याद रखिए, हीरो कभी हार नहीं मानता। तो चलिए फिल्मी अंदाज में रात को और खूबसूरत बनाते हैं। टू ऑल द वंस जो हमारा साथ दे रहे हैं दूर से, यानी कि सात समुद्र पार, आपकी जिंदगी में भी बॉलीवुड के स्टार को लेकर हम हो गए शामिल, आप ही वहीं पर। तो चलते हैं साथ।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: भाई कॉफी हो या चाय, बस खिड़की के पास बैठकर हवा का मजा लेते हुए वो लोग जिनको अभी फिलहाल नींद नहीं आ रही, जो भी आपका लेट नाइट रिचुअल है उसमें हम ऐड करें बॉलीवुड का तड़का। वैसे कल काम होने वाला है और जब नया हफ्ता शुरू हो रहा है तो नई एनर्जी के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ इट्स इम्पोर्टेंट कि सारी प्लानिंग अभी, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो लेकिन कर लीजिए अभी से कल के लिए।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: भाई जिंदगी में सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता, कुछ सपने वक्त लेते हैं। तो आज रात थोड़ा स्लो डाउन कीजिए और म्यूजिक के साथ हर पल को महसूस कीजिए, क्योंकि जब तक किसी चीज में आप फुल इन्वॉल्व नहीं होते तब तक उसका रिजल्ट भी आपके हिसाब से नहीं आ पाता।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: वीकेंड का दी एंड जरूर हो रहा है, लेकिन कल एक बार फिर से नई अपॉर्चुनिटी, एक नया दिन और 24 आवर्स आपके लिए बिल्कुल तिजोरी में सेफ और सुरक्षित। तो आज अगर कुछ मिस हो गया तो फिक्र मत कीजिए, अपनी कल की प्लानिंग रखिए और ये सोच लीजिए कि जो भी करेंगे अपनी मंजिल के पास पहुंचने के लिए, कल फिर एक नया चांस आपको मिलेगा, इंतजार कर रहा है एक्चुअली। बस ये रात कट जाए और यूं ही ये जो पल हैं म्यूजिक स्टाइल में बीत जाए।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है।

ये रात को जो ख्याल आते हैं ना, ये जो सपने आते हैं या थॉट्स आती हैं, ये बहुत ही स्पेशल होती है क्योंकि इस वक्त कोई रश नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं और काम आराम से आप कुछ सोच पा रहे हैं। ये लेट नाइट थॉट्स और बॉलीवुड के गाने।

इनका जो रिश्ता है ना वो भी बहुत कमाल का है। दोनों दिल को छू जाते हैं और कभी कभी वो बात कह देते हैं जो हम शब्दों में नहीं कह पाते, या फिर दिन के दौरान जैसे मैंने कहा भागदौड़ी में सोच नहीं पाते। ये वक्त है अपना मी टाइम, म्यूजिक टाइम।

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: ऐसे ही बैठे बैठे कभी किसी की याद आती है या फिर लगता है कि आज मुझे कर देना चाहिए था, या फिर एक मैसेज तो हर वक्त है ना। अगर आज किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं या सॉरी भी, तो एक छोटी सी अप्रिसिएशन या एक छोटा सा मैसेज पूरा दिन सेट कर सकता है। और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम तैयार हैं गानों के साथ, लेकिन ये जरूर सोच लीजिए कि आज अगर कुछ करना था नहीं कर पाए तो मन में वो बात ना रह जाए कि काश ऐसा होता। अरे वक्त अभी बाकी है, संडे अभी बाकी है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ डेस्टिनेशन मंजिल में नहीं, एक जर्नी है, और इस जर्नी में जिसका साथ मिल जाए और उसके मिलने से चेहरा खिल जाए तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं। तो अगर आप रस्ते में हैं अभी भी तो बस ये अपने भरोसा कीजिए कि आपके कदम जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन मंजिल और करीब और पास धीरे धीरे ही सही आती चली आ रही है। अगर मन में विश्वास रखेंगे, अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो फिर रोकेगा कौन। म्यूजिक आपके साथ 24/7 साथ देता हुआ।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.

0: You're listening to RM2, a radio musty.
1: भाई रात थोड़ी गहरी हो रही है और उम्मीद की रोशनी कभी कम नहीं होती। फिर चाहे रात गहरी हो, कल का दिन नए मौके लेकर आएगा। और ये हम जरूर जानते हैं कि आज अगर आपने फैसला कर लिया कि कल एक नई शुरुआत होगी और शुरुआत में कोई नई बात होगी तो फिर यही होगा। ये बस माइंड की कंडीशनिंग है, माइंड की कंडीशनिंग। कैसे आप एक सिचुएशन को बहुत स्ट्रेसफुल पाते हैं और कभी आप उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से सोल्यूशन निकाल भी पाते हैं, तो बस यही है दिमाग की कहानी। कभी यादें और कभी कुछ बातें, और उनके बीच में शामिल होते हुए ये बॉलीवुड के ट्रैक्स।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखाती हैं। अभी भी सच है कि हर दिन कुछ अलग, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, यही तो है जिंदगी का असली खेल। वैसे हर एक सिचुएशन में अपने आप को आप कैसे ढालते हैं, हर एक सिचुएशन को आप कैसे संभालते हैं, ये जज्बा हमेशा दिल में रखना चाहिए। और फिर देखिए साहब, जिंदगी की पिक्चर कितनी रंगीन, बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है, जैसे हमारे गाने।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: हर इंसान की लाइफ में एक साउंड ट्रैक होता है। शायद अभी जो गाना बजने वाला है वो आपकी किसी याद, किसी सपने को या किसी खास पल से आपको जोड़ दे, और अगर ऐसा हो तो आप हैं ट्रू म्यूजिक लवर, जो हर एक गाने को, लिरिक्स को महसूस करते हैं। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने एक बंद कमरे के अंदर अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर और दिमाग खोलकर ये लिरिक्स पेन डाउन कर दी, कॉम्पोजिशन ऐसी डाल दी कि आज भी वो गाने उस बंद कमरे से हमारे दिमाग के कमरों को खोलते चले जा रहे हैं। Enjoy the music, enjoy the best of musical times, RM2.

भाई मिडनाइट के करीब पहुंचते हुए एक बात याद रखिए, खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ नहीं, पॉजिटिव नजरिया चाहिए, और साथ में थोड़ा सा बॉलीवुड का म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: चलिए, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है कि आप और हम इस म्यूजिकल सफर में यहीं तक चले, लेकिन भूले मत 24/7 म्यूजिक आपके लिए साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी ऑन RM2। अब बस जल्दी यानी कि अगली सुबह भाई मंडे मॉर्निंग आपसे जल्दी मुलाकात होगी और म्यूजिक साथ होगा तो जिंदगी में यही बात होगी, मैजिकल और म्यूजिकल। अभी के लिए इजाजत, गुड नाइट।

0: कर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
2: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
2: जाए।
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मन, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
2: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: ओके दैट्स इट।
3: RM2 Radio Masti.

0: क्यों मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती। RM2, रेडियो मस्ती।